मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, बहुत बार जेब में कुछ नहीं होता, लेकिन मन में आत्मविश्वास, धैर्य और संतुष्टि हो तो इंसान के दिन अच्छे निकल जाते हैं। तब ऐसे गीत ही हमारी जिंदगी में जीने के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं।

दोस्तों, सूरज की किरणें आशा की उमंग जगा रही हैं एक अच्छी सुबह के साथ, और आपकी दिनचर्या की शुरुआत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए।

दोस्तों, इस रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये रचना थी उस्तादी उस्ताद से, फिल्म से, उषा मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे वंदे मातरम।

नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून 2026 सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा अर्पण 6:10 पर। श्री रामचरित मानस आप सुनेंगे 6:44 पर। 6:55 पर संस्कृत में समाचार होंगे, 7 हिंदी में समाचार सुनेंगे आप, और अंग्रेजी में समाचार होंगे 7:05 पर।

7:10 से 7:30 तक आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम योग पर आधारित में विशेष श्रृंखला आज का आसन उष्ट्रासन।

7:30 पर कार्यक्रम होगा आज सवेरे। आठ बजे समाचार होंगे हिंदी में और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।

8:30 पर उर्दू में समाचार होंगे और म्यूजिकल दिल लगी कार्यक्रम में आज प्रस्तुति रहेगी पूनम आहूजा की 8:45 से। नौ बजे हिंदी में समाचार होंगे और 9:05 पर अंग्रेजी में। नौ बजकर 10 पर म्यूजिकल दिल लगी कार्यक्रम में नीतू शर्मा होंगी आपके साथ। ये था झरोखा आज सुबह के कुछ कार्यक्रमों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, यूक्रेन

0: यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

11:11 और ठीक 56 सेकेंड। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और ये है भक्ति रस से भरपूर अर्पण, जिसमें आज आप हैं पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। और इस सुप्रभात में बहुत सारी चीजें हम करते हैं। सुबह उठते ही हमारे दिमाग में शुरू हो जाती हैं, या तो एक चाय का कप चाहिए होता है सुबह उठते ही, या फिर हम अखबार ढूंढते हैं या अपना मोबाइल उठा लेते हैं और बस दिनचर्या शुरू हो जाती है। लेकिन सुबह का समय सिर्फ सुबह नहीं होता, बल्कि ये आत्म जागरण का, आत्म साक्षात्कार का समय होता है, अपने आप से मिलने का समय होता है, अपने मन को टटोलने का समय होता है, ये जानने का समय होता है कि मन क्यों अशांत है, क्यों कल की बातें अभी तक हम भूले नहीं, क्यों आज की शुरुआत में भी वो चिंताएं अभी तक हैं, क्यों इस अशांत मन के साथ एक नए दिन की शुरुआत हम फिर से कर रहे हैं। और सच कहें तो अगर मन शांत होता है ना, तो सारा संसार शांत लगता है। लेकिन अगर सुबह सुबह मन ही अशांत हो, तो फिर लगता है कि सब कुछ ही बिखरा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, और पता नहीं आज फिर वैसा ही ना हो। तो ऐसा क्यों होता है और क्यों हमारा मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का कारण? मन को उठाते हैं तो हम उठ जाते हैं, और मन को बांधते हैं तो हम भी बंध जाते हैं। इसीलिए अपने आप को मुक्त करना है, फ्रीडम देनी है, स्वतंत्रता देनी है, तो मन को मुक्त करना होगा। कैसे करें, क्या करें, क्यों करें, कब करें, कैसे करें, सब बात करेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआत एक प्यारे से भजन के साथ।

जी हाँ, तो बात हो रही थी कि हम शुरुआत करें सुबह की तो अपने मन को शांत करके करें, क्योंकि मन शांत होता है तो संसार शांत लगता है। तो ये तो एक कारण हुआ मन को शांत रखने का, लेकिन और क्या हो सकता है? तो दूसरा कारण मन को शांत रख के शुरुआत करने का ये है कि अगर मन चंचल होता है तो जो काम हम सही कर रहे होते हैं ना, वो भी उलझ जाते हैं। एक बार एक संत ने कहा था कि मन एक तालाब है और विचार लहरें, तो तालाब जितना शांत होगा प्रतिबिंब उतना स्पष्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन को अगर शांत रखना है, वो अगर एक तालाब है और विचार लहरें हैं, तो जितनी लहरें कम होंगी उतना मन शांत होगा। इसका मतलब बहुत सारी चीजें जब हम सोच रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, तो कभी भी मन शांत रह नहीं पाता। इसलिए सबसे जरूरी बात ये कि हम अपने विचारों को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें, ये समझें कि क्यों इतना हम सोच रहे हैं। और हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, वो जुड़े होते हैं हमारी इच्छाओं से, यानी मेरे डिजायर से, हमारे अतीत के पछतावे से या भविष्य की चिंता से। तो इतने सारे चिंता करने की क्या जरूरत है? इच्छाएं भी अगर थोड़ी सी कम हो तो भी जीवन बहुत अच्छी तरह से जिया जा सकता है। बस हम क्योंकि इसके बारे में प्रेजेंट नहीं होते, इसके बारे में सोचते नहीं हैं, इसीलिए शायद इस बात पे ध्यान ही नहीं दे पाते कि मन अशांत है तो क्यों है। और जितना वो अशांत रहता है उतना ही बाहर की तरफ दौड़ता रहता है, जबकि शांति

अंदर सेंटर करने से यानी अंदर केंद्रित करने से मिलेगी और इसी को कहते हैं ऑब्जर्वर स्टेट यानी साक्षी भाव कि जब हम अपने शरीर या मन नहीं बल्कि अपने आप को एक दृष्टा की तरह देखते हैं जब अपने आप को अपने विचारों से अलग कर लेते हैं तो जब अपने लिए ही दर्शक बन जाते हैं अपने मन के उठे विचारों के लिए ही एक साक्षी भाव रख लेते हैं जैसे अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो खुद से ही पूछे कि अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है और फिर अपने आप को ऑब्जर्व करें कि किस किस वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता या कर सकती। तो जब ऐसा साक्षी भाव होता है तो बहुत आसान हो जाता है मन को कंट्रोल करना मन को नियमित करना रेगुलेट करना शांत करना। बस ऐसा करके देखें और ऐसा करने में अगर आप इसे लिख लें कि किस किस सिचुएशन में किस किस परिस्थिति में आपको बहुत गुस्सा आता है कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आप शांत नहीं रह पाते तो भी बहुत सारी चीजें सुलझ जाएंगी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

6:30 और ठीक 24 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और ये है भक्ति रस से भरपूर अर्पण, जिसमें आज आप है पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। और इसी प्रभात की हम बात कर रहे थे कि सुबह सुबह अगर मन बेचैन हो जाए तो फिर पूरा दिन ही ऐसे ही बीतता है। हम किसी न किसी पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं या हम वो काम ठीक से नहीं कर पाते जो हमें करना था। इसीलिए ये समय अपने मन को शांत करने का होता है, यानी अपने आप से बात करने का, साक्षी भाव का, ये समझने का कि क्या ऐसा है जिसकी वजह से मन अशांत है, कौन से विचार ऐसे हैं जो परेशान कर रहे हैं, अतीत की यादें हैं या वर्तमान की कोई चिंता है या भविष्य के बारे में कुछ है, कुछ ना कुछ तो है। वैसे श्रीमद् भगवद गीता के 6:34 में अर्जुन भी यही बात भगवान कृष्ण से पूछ रहे थे, उनके मन में भी बेचैनी थी, वो भी उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा, चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तास्यम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। कि हे कृष्ण, मन को वश में करना बहुत ही मुश्किल है, मन का स्वभाव बहुत ही चंचल है, अशांत है, ये बहुत शक्तिशाली है, हठी है। मैं हवा को मुट्ठी में कैद कर सकता हूं, तूफान को रोक सकता हूं, लेकिन मन को नहीं रोक पा रहा हूं। सोचिए, अर्जुन जो इतने शक्तिशाली थे कि हवा को

मुट्ठी में कैद कर सकते थे। वो ये कहते हैं कि वो अपने मन को वश में नहीं कर पा रहे। तो हम और आप जब बात करते हैं कि हम अपने मन को शांत रखें, वश में करें, कंट्रोल में रखें, कैसे ये संभव है? तो ये संभव है सिर्फ दो चीजों से। अब वो दो चीजें कौन सी हैं ये भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये भजन सुनते हैं।

जी हाँ, तो बात हो रही थी मन को शांत रखने की कि कैसे हम इस चंचल मन को शांत रखें, क्या ऐसा करें जिसकी वजह से ये जो परेशानियां हैं हमारे जीवन की ये कम हो पाए, क्योंकि मन ही तो इन परेशानियों का कारण है। अब बहुत सारी चीजें हम इसके बारे में सुनते हैं, करते हैं, लेकिन

भगवद गीता में जब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने यही बात पूछी तो उन्होंने कहा कि सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जिनको करके तुम अपने मन को वश में करने की कोशिश कर सकते हो, और वो हैं अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी लगातार कोशिश, और वैराग्य यानी थोड़ा बहुत डिटैचमेंट करना सीखो। अब कहने के लिए बहुत इजी है कि हम अभ्यास करें और डिटैचमेंट सीखें। डिटैचमेंट आएगा कैसे? तो डिटैचमेंट या वैराग्य तब आता है जब हम इस बात को समझ पाते हैं कि जो परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है उन्हें स्वीकार करें, और सब कुछ टेम्परेरी है, यहीं रह जाएगा, इस बात को हर रोज याद करें। जब ऐसा लगता है कि जो चीज हमारे पास है ये पहले किसी और की थी और बाद में किसी और की हो जाएगी, हम यहां सिर्फ एक 100 साल के लीज पीरियड पर हैं, इतनी सी बात समझ में आ जाए तो वैराग्य अपने आप आने लगता है। तो ये एक्सेप्टेंस और सरेंडर जरूरी है, यानी स्वीकार्यता और समर्पण जरूरी है कि जो कुछ हो रहा है उसका कोई कारण है, उसमें हमारा कोई वश नहीं। कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। छोटी सी बात है, लेकिन इसे समझते समझते या इसे अपने जीवन में लागू करते करते, अप्लाई करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। पर कोशिश और अभ्यास तो जरूरी है ना।

जी हाँ, तो बात हो रही थी मन को शांत रखने की, और सुबह का समय इसके लिए सबसे अच्छा होता है, यही तो हम आपसे कह रहे थे। लेकिन परेशानी यह है कि सुबह हो तो भी हम इतनी भागदौड़ में रहते हैं, तो सबसे जरूरी तो यह है कि सुबह समय निकालने के लिए आप रात को थोड़ा सा जल्दी सोने की कोशिश करें, ताकि सुबह जल्दी जाग सकें। जल्दी जागेंगे तभी तो समय लगेगा अपने लिए, मिलेगा अपने लिए। तो जब आप रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और अपने लिए समय निकालते हैं, तो पूरा दिन एक्सपैंड हो जाता है, यानी वो 24 घंटे 48 घंटे जितने बड़े लगने लगते हैं। और सुबह उठकर आप जब बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनसे मन शांत हो, जैसे नाम जप या मंत्रों का उच्चारण या फिर सिमरन करना या इबादत करना या प्रार्थना करना, ये भी बहुत शक्तिशाली उपाय माने गए हैं जो हमारे अंदर एक अलग तरह की वाइब्रेशन या कंपन पैदा करते हैं, उससे हमारा मस्तिष्क शांत होता है। तो आप इसे अप्लाई करके देखिए, सोचिए कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको ऐसे करने से रोकती हैं। बस जब आप ऐसा सोचेंगे समझेंगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा मन को शांत रखना। फिलहाल अर्पण यहीं तक, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस।

राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्री राम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा।

0: भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिसायाः च पञ्चदिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिसायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति। सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थदिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति। सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा ख्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्यां खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटम् अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं सम्प्रति जगति 66.2 कोटि जनाः तीव्र खाद्यासुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिन्ता प्रदर्शिता यत् 20-22 परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति

श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता सीईटीए इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाखड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देशभर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देशभर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 7:55 आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इस वक्त हम सुनते हैं, आपको सुनाते हैं योग पर आधारित हमारी विशेष श्रृंखला, आज का आसन उष्ट्रासन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति से लिया गया है। योग जीवन जीने की एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को खुशहाल और निरोगी बना सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं, यानी अपनी आई साइट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आई साइट की प्रॉब्लम के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपके आहार में विटामिन ए की मात्रा की कमी होना, ज्यादा समय तक टीवी या कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, डिम लाइट में पढ़ाई करना, कुछ केसेस में बाय बर्थ यानी जन्म से भी आई साइट में कमी पाई जाती है। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार उष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी उष्ट्रासन की स्थिति होती है।

0: बहुत लोगों में देखा गया है कि वह उष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्धउष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्धउष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाए। तो यह अर्धउष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। उष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको उष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप उष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। उष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन उष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे योग पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आज का आसन। सात बजकर 15 मिनट और ठीक 40 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और ये समय तय रहता है गोल्ड सुप्रभात के लिए। गोल्ड सुप्रभात जो आपकी सुबह को खूबसूरत बनाने का, उसे संगीत से भरने का एक छोटा सा प्रयास होता है। लेकिन सुबह फुर्सत कहाँ आके बैठ के कुछ सुन सकें, क्योंकि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कर भी ये सोच सकूं, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला। लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय अगर हम निकालें तो दिन की एक सकारात्मक शुरुआत हो सकती है, यानी पॉजिटिविटी के साथ हम शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी ही शुरुआत हमारी भी आपके साथ। फिलहाल एक प्यारा सा गाना आपके लिए फिल्म बंदिनी से। और हाँ, मैं हूँ पूनम आपके साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम गोल्ड, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और बात हो रही थी गोल्ड सुप्रभात की। अब बात सुबह की हो, गोल्ड सुप्रभात की हो, लेकिन मौसम की ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले मौसम का हाल जान लेते हैं कि सूर्य देवता सुबह सुबह कितने बजे आ गए थे, जो हमें उठाने के लिए बार बार नॉक किए जा रहे हैं, और हम हैं कि स्नूज बटन ऑन करके और बार बार सोते जा रहे हैं। तो ये तो आ गए थे 5:23 के आसपास, हो जाएंगे 7:21 के आसपास। और बात करें तापमान की, तो अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। वैसे बाहर का तापमान कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो, अगर मन का मौसम खुश है ना, अच्छा है ना, तो फिर बाहर की कोई चीज बुरी नहीं लगती। और मन का मौसम खुश रखने के लिए जरूरी है कि सुबह सुबह आप शुरुआत करें तो मुस्कुराहट के साथ करें।

0: थोड़े से योगा के साथ करें, थोड़े से व्यायाम के साथ करें। जब अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो सारी दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है। तो ये एक छोटी सी कोशिश अगर की जाए तो बात ही क्या।
1: आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं।
0: आज ये गाना आप सिर्फ अपने लिए गा के देखिए,

जी हाँ, वैसे तो बहुत सारी बातें आपसे और करने की हैं, लेकिन क्या करें, समय का तकाजा है कि जाना होगा। तो एक प्यारा सा गाना आपके लिए है जिसका थोड़ा सा अंतर आप सुन पाएंगे, लेकिन आपको ये याद दिला दें कि एक रिसर्च में ये पाया गया है कि दिन की शुरुआत अगर 20 मिनट व्यायाम के साथ आप करते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी और मेंटल अलर्टनेस 40% तक बढ़ जाती है। तो चाहे छत हो, बालकनी हो, पार्क हो, कोई भी आप तरीका ढूंढिए, लेकिन सुबह सुबह अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि एक घंटे का पसीना सुबह की कई बीमारियों से बचा सकता है। अब एक घंटे नहीं, 20 मिनट ही कीजिए, उससे भी बहुत कुछ बदल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत की बात है।

जी हाँ, बातें कभी खत्म नहीं होती और दिल कभी भरता नहीं, लेकिन फिलहाल समय का तकाजा है कि गोल्ड सुप्रभात यहीं तक। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे, तो पूनम को दीजिए इजाजत, लेकिन आपको ही मचाइए, आप जानिए देश और दुनिया का हाल, और प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।

0: नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
1: ऊंचे नीचे रास्ते पर मंजिल तेरी, राह में राहे रुक ना जाना।
0: छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं, बस रुकना मत। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
2: नमस्कार मनोज एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग, ग्रेट थिंग्स हैपन टू दोज हु डोंट स्टॉप बिलीविंग, ट्राइंग, लर्निंग एंड बीइंग ग्रेटफुल,
0: जी,
2: व्हिच इज द एसेंस ऑफ आवर लाइफ। So with that, let's begin our program. We are delving into the freshness of the morning today. Well, first we'll begin with the national, international news, Metro City update. There is so much that we will cover and unfold today. We'll also discuss the historical information. Today it's 18th of June 2026. So with this beautiful track, we are beginning our program.
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भारतीय समुदाय में उत्साह का माहौल है। प्रवासी भारतीय बड़ी संख्या में उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। पेरिस से हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेरिस आगमन से पहले यहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पिछले 15 वर्षों से फ्रांस में रह रहे रमेश भावसार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारत में हुए बदलावों को देखकर उन्हें गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि फ्रांस के लोगों के बीच भी उनके प्रति सकारात्मक सोच देखने को मिलती है। भावसार जी ने आकाशवाणी से कहा,
4: यहां पे 15 साल से ऊपर हो गए और मोदी जी के लिए तो क्या बताएं, शब्द नहीं मिलते उनके व्यक्तित्व को लेकर। 2014 से जो उन्होंने कार्यभार संभाला है, और भारत में तो मैं अभी हाल ही में गया था, तो भारत में देखा कि कितने सारे बदलाव आए और देख के बहुत खुशी मिलती है।
3: रमेश भावसार के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में बसे भारतीय समुदाय से जुड़ाव मजबूत किया है, जिससे प्रवासी भारतीय स्वयं को भारत के और अधिक निकट महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहले से ही एकत्र होने लगे हैं और सभी उनके आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज सवेरे के लिए महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और

0: She will participate in the International Sickle Cell Day celebrations at Omkareshwar in Madhya Pradesh. Later, the same day, the President will inaugurate a medical camp organized by AIIMS Bhubaneswar and dedicate a mega integrated rural piped water supply project for mining affected villages under Kusumi block at Rairangpur in Odisha. On 21st of this month, the President will participate in the International Day of Yoga celebrations at Jabalpur in Madhya Pradesh. Later, she will preside over the 36th convocation ceremony of Rani Durgavati University. On the final day of her visit, President Murmu will interact with members of the Saharia tribe, cheetah trackers, tourist guides and Kuno field team at Kuno National Park in Madhya Pradesh.
1: पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। अफगानिस्तान की टीम 232 रन पर आउट हो गई। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और गुरुनूर बराड़ ने तीन तीन विकेट लिए जबकि प्रिंस यादव ने 2 विकेट हासिल किए। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा।
0: In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated the Netherlands by 95 runs in a Group A match at Headingley in Leeds last night. Batting first, India posted a formidable 209 for 5 in their allotted 20 overs, powered by Smriti Mandhana's 74 and Shefali Verma's 55. In reply, the Netherlands were bowled out for 114 in 17.3 overs. For India, Sri Charani starred with a 4-wicket haul, while Shefali Verma picked up 3 wickets and Nandini Sharma claimed 2. Smriti Mandhana was adjudged player of the match. I have another story. This is hockey. Indian men's team stunned reigning world champions Germany with a 3-1 victory in the FIH Pro League in Rotterdam, the Netherlands, last night. 33-year-old Manpreet Singh became India's most capped hockey player during the match, making his 413th appearance for the country. Now, India will face Germany again today in the second leg of the fixture before taking on the Netherlands on Sunday. And in the following week, India will play Pakistan and England twice to conclude their Pro League campaign. And these were the national and international updates.
1: एक और खबर
0: जी
1: स्पोर्ट्स की। चीन के गुयांग में चल रहे विश्व मुक्केबाजी कप में भारत के निखिल, दीपक और स्नेह ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। निखिल ने पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग में ब्राजील के केल्वी ट्रिनडाडेड को जबकि दीपक ने 70 किलोग्राम वर्ग में जापान के सेवान ओकाजावा को 5-0 से हराया। महिला 65 किलोग्राम वर्ग में स्नेह ने दक्षिण कोरिया की सियोन सुजिन को 4-1 से मात दी। आज भारत की मीनाक्षी और अभिनव श जामवाल अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। विश्व मुक्केबाजी का समापन रविवार को होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली में आज से 20 जून तक शहर भर में 39 जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। शिविरों में नागरिकों को केंद्र और दिल्ली सरकार की योजनाओं की जानकारी, सेवाएं तथा सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य शहरवासियों को केंद्र और दिल्ली सरकार की जन योजनाओं से जोड़ना है। श्री सिंह ने दिल्ली वासियों से अपने नजदीकी जन कल्याण शिविर में पहुंचकर उपलब्ध योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस महीने की 22 तारीख से एक पेड़ मां के नाम दिल्ली विशाल वृक्षारोपण अभियान 2026 की शुरुआत की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि 70 लाख पौधे लगाने के साथ इस पहल का लक्ष्य दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाना, प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूत करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार द्वारा पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे ग्रीन वॉरियर्स के रूप में इस पहल से जुड़ें और हरित दिल्ली के निर्माण में अपना योगदान दें।
0: We'll now, Manoj, we'll now head to Chennai. The first update. The Enforcement Directorate conducted searches at six locations linked to film producer C. Alakappan.

0: in Chennai and Madurai in connection with a cheating case involving actor-turned-politician Gautami Thadimala. The investigation was taken over by the ED last year to probe the money angle based on seven FIRs registered by the Tamil Nadu police. Another update, the National School of Drama, along with Indian Oil Corporation Limited and the Ministry of Culture, successfully presented the play Kalam, The Journey. This event was held at Raja's Higher Secondary School in Thanjavur. The performance marked the grand ending of a 30-day National Children's Summer Theatre Workshop. This is the first time that the School of Drama held an event at a school in Chennai. Now we'll head to Mumbai.
1: Ji. केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C ने साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और पीड़ितों को समय पर राहत प्रदान करने के लिए दो नए पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुंबई पुलिस के साइबर अपराध के उपायुक्त DCP बजरंग बनसोड़े ने बताया कि शिकायत निवारण तंत्र GRM और धन बहाली मॉड्यूल MRM नामक ये दो पोर्टल पुलिस बैंकों और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP के बीच सीधा समन्वय स्थापित करेंगे। शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल साइबर अपराध जांच के दौरान फ्रीज किए गए, गिरवी रखे गए या जब्त किए गए बैंक खातों से संबंधित शिकायतों का समाधान करेगा और खाताधारकों को ऐसी कार्रवाइयों की समीक्षा करने में सक्षम बनाएगा। धन बहाली मॉड्यूल को साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों को शिकायत दर्ज करने के बाद फ्रीज या बरामद की गई राशि की वापसी प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। DCP बनसोड़े ने साइबर धोखाधड़ी से प्रभावित नागरिकों से आग्रह किया कि वे तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। मुंबई की एक और खबर, महाराष्ट्र खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग और पुलिस के संयुक्त अभियान के बाद मुंबई के वडाला इलाके में चोरी के डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन से लदे दो टैंकर जब्त किए गए जिनकी कीमत लगभग 1,31,00,000 रुपए थी। अधिकारियों ने बताया कि ये छापेमारी मंगलवार को गोपनीय सूचना के आधार पर की गई थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों को टैंकरों से ईंधन निकालते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और चोरी का ईंधन कथित तौर पर कालाबाजारी के लिए था। आगे की जांच जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
0: Now we'll turn our attention to Bengaluru. The first update from Bengaluru, Karnataka has unveiled an ambitious roadmap to transform the Bengaluru metropolitan region into a global hub for technology, AI, innovation and advanced manufacturing by 2037. So to promote balanced regional development, the government proposes new growth centres within and beyond Bengaluru, integrating industry, housing and commercial activities. The final economic master plan is expected to be submitted to the Chief Minister and Deputy Chief Minister in September 2026. Another update. Gati Shakti Vishwavidyalaya, India's premier university for transportation and logistics, has signed an MOU with CSIR, National Aerospace Laboratories, Bengaluru, to strengthen collaboration in aviation, education, research, innovation and capacity building. The partnership will focus on curriculum development, advanced laboratories, faculty, capacity building programs and joint R&D initiatives in the aviation sector.
1: Ji. अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की खबर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का पहला सत्र आज सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। कार्यक्रम के अनुसार 19 जून को शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा जिसके बाद 22 जून को नई सरकार का पहला राज्य बजट प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर 23 जून को 6 घंटे की चर्चा होगी जबकि 24 और 25 जून को बजट पर चर्चा के लिए कुल 10 घंटे आवंटित किए गए हैं। इसके बाद लगातार छुट्टियों और धार्मिक कार्यक्रमों के कारण विधानसभा को जून के अंतिम सप्ताह में अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाएगा और सत्र का दूसरा चरण 6 जुलाई से फिर शुरू होगा।
0: Now we'll talk about Hyderabad. Chief Minister A. Revanth Reddy inaugurated the Telangana Public School at Arutla and announced plans to establish similar institutions in every assembly constituency to deliver quality education and sports training. He said the state's future depends on classrooms rather than buildings and that 1,814 students have already enrolled at Arutla, leading to competition for admissions. The Chief Minister noted that the government is strengthening schools based on Education Commission recommendations to benefit 27 lakh students in government schools. He emphasized the importance of sports and skills through Young India Residential Schools and a sports university aimed at producing Olympic gold medalists.
1: और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यहां का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज दोपहर बाद या शाम को बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
0: मनोज, आई एम अगेन बिगिनिंग विद चेन्नई। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और इवन थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 29 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 39 डिग्रीज। बेंगलुरु इज expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 32 degrees. Hyderabad again expected to have partly cloudy sky and there is possibility of development of thunder lightning there. The minimum temperature will be around 27 degrees and maximum temperature will be around 40 degrees Celsius there in Hyderabad. Manoj
1: ji, aur ab itihas ki mahatvapurn ghatnaon ke zikr se pehle कुछ और विशेष दिन के बारे में बात करते हैं। आज गोवा क्रांति दिवस है। ये दिवस 18 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है क्योंकि 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। 18 जून गोवा की आजादी की लड़ाई के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को एकजुट होने और पुर्तगाली शासन के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया था। 18 जून को हुई इस क्रांति के जोशीले भाषण ने आजादी की लड़ाई को मजबूत किया और आगे बढ़ाया। गोवा की मुक्ति के लिए एक लंबा आंदोलन चला। अंततः 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने यहां आक्रमण कर इस क्षेत्र को पुर्तगाली आधिपत्य से मुक्त करवाया और गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया।
0: हाउ ग्रेट, दिस हैपेंड ऑन 18 जून। टुडे इट्स आल्सो इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। वेल, दिस डे रिमाइंड्स अस दैट हेट स्पीच इज अ ह्यूमन इश्यू। So creating safe and inclusive spaces from community meetings to online chat groups, this means making sure the voices that are usually ignored, they are heard and they are included. Today's day also marks the Sustainable Gastronomy Day. Gastronomy is sometimes called the art of food. It can refer to a style of cooking from a particular region as well. In other words, gastronomy refers to local food, the local cuisine. So the UN General Assembly adopted its resolution in December 2016 and designated 18th of June as International Observance Sustainable Gastronomy Day. And there are different ways for us, you know, to preserve ecosystems and culinary traditions. This is one of them. This acknowledges gastronomy as a cultural expression related to the natural and cultural diversity of the world.
1: जी, और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 18 जून है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 1979 में आज ही के दिन अमरीकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव द्वारा साल्ट द्वितीय समझौते पर वियना में हस्ताक्षर किए गए।
0: वी आर टेकिंग यू बैक इन टाइम। इन 1815 मनोज, एट वॉटरलू इन बेल्जियम, नेपोलियन बोनापार्ट सफर्ड डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ब्रिंगिंग एन एंड टू द नेपोलियनिक एरा ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। In 1934, United States President Franklin D. Roosevelt signed the Indian Reorganization Act into a law. In 1946, Manoj told us the Goa Liberation Movement's final and organized phase began with Dr. Ram Manohar Lohia's public address in Madgaon against the Portuguese colonial rule. In 1983, Dr. Sally K. Ride, mission specialist, became the first American woman to travel into space. She was part of the space shuttle Challenger, launched into space on its second mission, Manoj.
1: 1999 में आज ही के दिन 35 यूरोपीय देशों के बीच लंदन में पेयजल समझौते पर हस्ताक्षर हुए और

0: लातविया में वाइके फ्रेब्रेमा को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। 2008 में आज ही के दिन केंद्र सरकार ने गुर्जरों को ओबीसी कोटे में 5% आरक्षण देने की घोषणा की। 2008 में आज ही के दिन भारत यात्रा पर आए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के बीच 3 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 2008 में आज ही के दिन फार्मा कंपनी रेनबैक्सी ने अमरीकी फार्मा कंपनी फाइजर के साथ पेटेंट विवाद को एक समझौते के तहत समाप्त किया। और अब समय है इतिहास याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
1: वेल, फर्स्ट वी विल टेल यू अबाउट म्यूजिशियन पीटर एलन। Well, the singer-songwriter, musician and entertainer known for his flamboyant stage persona, energetic performances and lavish costumes. Well, the song which we have chosen for you to listen to, listeners, this is Glittering Zero. Let's listen in.

0: आज पुण्यतिथि है मिल्खा सिंह की। उनका जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पंजाब अविभाजित भारत में हुआ था। वे देश के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में एक जाना पहचाना नाम है। सन 1956 में मेलबर्न में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में उन्होंने पहली बार 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में भाग लिया था। मिल्खा सिंह ने 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाए। इसके बाद उसी साल टोक्यो में आयोजित हुए एशियन गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 1958 में ही इंग्लैंड के कार्डिफ में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 400 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उस समय आजाद भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले वे पहले भारतीय थे। पद्मश्री से सम्मानित मिल्खा सिंह का गौरवपूर्ण खेल जीवन सदैव युवा खिलाड़ियों को अधिक से अधिक शानदार प्रदर्शन के लिए प्रेरणा देता है। उन्हें लोग फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं।
1: मैंने 1952 में दौड़ना शुरू किया। 70,000 किलोमीटर के करीब मैं दौड़ा होऊंगा, जो कि एक रिकॉर्ड है। जो आदमी कंपटीशन लड़ता है और जब तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो स्पोर्ट्समैन नहीं बन जाता, मैं समझता हूं कि उसे प्रैक्टिस जो है पूरे साल ही करनी चाहिए। कोई भी दिन जो है प्रैक्टिस जो है वो बंद नहीं करनी चाहिए।
2: आज तुम जैसे दौड़े हो, ऐसा दौड़ते हमने किसी इंसान को कभी पहले नहीं देखा। बेटा, तू दौड़ा नहीं, उड़ा है। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी।
3: Well, Milkha Singh, pioneering icon of Indian athletics, whose journey from surviving the partition to becoming the first Indian male to win Commonwealth gold, dominating the 1958 Asian Games, setting a long-standing Olympic record in 1960s. Well, he dominated Indian track and field for over a decade with his speed, spirit and creating multiple records and winning numerous medals as well in his career. Well, such a great, it was there that he sharpened his running skills. Milkha Singh was introduced to the sport only after he had fled to India post the partition and joined the Indian Army then. After he finished sixth in a cross-country race that had around 400 more soldiers running, he was handpicked for further training and this laid the foundation for what would be an impressive career.
0: Jee. आज जन्मदिन है अरविंद स्वामी का। उनका जन्म 18 जून 1970 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ है। वे एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और उद्यमी हैं, जो तमिल सिनेमा और कुछ हिंदी, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मणि रत्नम की फिल्म थलपति के साथ शुरुआत की। बाद में उन्होंने रोजा और बॉम्बे जैसी फिल्मों में अभिनय किया।

आज पुण्यतिथि है उस्ताद अली अकबर खां की। उनका जन्म 14 अप्रैल 1922 को शिवपुर गांव अविभाजित भारत में हुआ था। वे संगीतकार और सरोद वादक थे। उस्ताद खां पश्चिमी श्रोताओं के समक्ष भारतीय संगीत प्रस्तुत करने में सक्रिय रहे। इनके संगीत की जड़ें भारतीय संगीत की हिंदुस्तानी उत्तरी परंपरा में जमी है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनयिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
6: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
2: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
7: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
2: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
8: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
9: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।

0: बनी है, तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
1: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है, तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
3: We have a huge pool of talent.
4: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमरीका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
5: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक एक,

0: रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड विवाटेक समिट इन पेरिस विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों। पीएम मोदी टू ऑल्सो एड्रेस मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन फ्रेंच कैपिटल। President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
3: I feel India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
4: So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
2: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We have more from our correspondent.
5: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi, alongside French President Emmanuel Macron, will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. The intensive diplomatic trip will wind down with a major community outreach initiative. The Prime Minister is slated to attend a massive diaspora reception featuring vibrant cultural performances that celebrate India's heritage. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
2: The Paris leg of PM Modi's visit is expected to further strengthen India-France relations, particularly in technology, innovation and people-to-people ties.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के हमराह पेरिस में वीवाटेक समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज पोलिंग होगी। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती मुआहिदा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के आखिरी मरहले में कल रात पेरिस पहुंचे। फ्रांस की राजधानी पहुंचने पर होटल में जमा हुए भारतीय बिरादरी के अफराद ने जनाब मोदी का पुरतपा इस्तकबाल किया। पुरजोश हामियों ने वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत का इजहार करते हुए नारों के साथ उनका खैर मकदम किया। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने पेरिस में अपनी सरगर्मियों का आगाज किया। पेरिस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के हमराह वीवाटेक 2026 में शिरकत करेंगे। वीवाटेक समिट यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप प्रोग्राम है, जहां तवक्को है कि जनाब मोदी भारत के फरोग पाते हुए जिद्दत तराजी के निजाम और तकनीकी तरक्यात को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म एक खसूसी तकरीब में भारतीय बिरादरी के अफराद से खिताब करेंगे। तफसील हमारे निमानीगर से।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी आज दो तरफा तजारत और इख्तराई शराकत दारियों को मजीद मजबूत बनाने की गरज से अपनी मसरूफियात को जारी रखेंगे। वो फ्रांस और यूरोप के कारोबारी रहनुमाओं के साथ एक खसूसी गोलमेज इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें भारत के तेजी से फैलते हुए सनअती और टेक्नोलॉजी शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस दौरे का मरकजी हिस्सा आज बाद में वीवाटेक होगा, जो यूरोप की मुमताज टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों समिट में आला सतह की सरगर्मियों की क्यादत करेंगे। इन सरगर्मियों का इख्तिताम एक अहम कलीदी खिताब से होगा, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते हुए आलमी डिजिटल असर व रसूख को उजागर किया जाएगा। यह वसी सफारती दौरा एक बड़े अवामी राबते के प्रोग्राम के साथ इख्तिताम पजीर होगा। वज़ीर-ए-आज़म वसी पैमाने पर मुनक़िद होने वाली भारतीय बिरादरी की तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जिसमें रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और भारत की तहजीबी विरासत को उजागर किया जाएगा। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट।

8:45 और ठीक 56 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है म्यूजिकल दिल्लगी। म्यूजिकल दिल्लगी और ऐसा वक्त जब मन हल्का होता है, दिन की जिम्मेदारियां सामने खड़ी होती हैं, और ऐसे में कुछ संगीत हो, एक मुस्कान हो, कुछ नया ख्याल हो, तो फिर दिन खूबसूरत बन ही जाता है। बस यही छोटी सी कोशिश हमारी भी होती है म्यूजिकल दिल्लगी में कि ऐसी ही शुरुआत आपके दिन की करवाई जाए। बेशक आप अभी रास्ते में हैं या ऑफिस के गेट पर पहुंचे हैं या फिर घर के काम खत्म करके बस इत्मीनान से एक चाय का कप लेकर बैठे हैं या फिर अखबार के पन्नों को पलट रहे हैं, कुछ भी, लेकिन रेडियो साथ है तो बस इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने मन को हल्का करने के लिए भरपूर कोशिश करने की कगार पर हैं, क्योंकि म्यूजिक ऐसा होता है ना जो उस मन को अपने आप खुशी देता है और हल्का रखता है।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख।

0: लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

जी आकाशवाणी एफएम गोल्ड और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम यानी म्यूजिकल दिल लगी। और म्यूजिकल दिल लगी जिस समय आप सुन रहे होते हैं ना उस समय आप या तो ऑफिस पहुंचने के जल्दी में होते हैं या फिर घर में होते हैं। लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया है कि ये जो समय होता है इसमें हम बिल्कुल भी अपने आप को एक्सपोजर नहीं देते या बाहर नहीं निकलते, धूप में नहीं निकलते। ऑफिस में होते तो भी अंदर समय बिताते हैं और घर में होते हैं तो भी, लेकिन ये जो समय होता है सुबह का समय 9 से 11 के बीच का समय या 12 बजे तक का समय, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम विटामिन डी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कुछ करें, यानी थोड़ी देर धूप में बिताएं। और ये बिताने के लिए आप 15-20 मिनट धूप में बैठ सकते हैं, अपने फेस को ढक के बैठ सकते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम है ना विटामिन डी की, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, थकान रहने लगती है और हमें समझ भी नहीं आ रहा होता कि कारण क्या है। तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि पर्याप्त धूप लें, दूसरा आप खाने पीने में जो विटामिन डी से भरपूर चीजें हैं जैसे कि दूध है, दही है, ये सब आप शामिल कर सकते हैं। और अगर इनके अलावा भी आपको जरूरत है तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि धूप जो है वो प्राकृतिक और बेहतरीन स्रोत है, इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोजर सुबह सुबह जरूर दें, थोड़ी देर धूप में बैठने की कोशिश जरूर करें।

जी हाँ, बहुत सी बातें हैं आपसे करने को, बहुत कुछ बताने को, लेकिन क्या करें, समय का तगाजा है जो ये कह रहा है कि कुछ ही देर में आप जानेंगे देश और दुनिया का हाल, यानी सुनेंगे समाचार। और फिलहाल पूनम को दीजिए इजाजत, पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि समाचार के बाद म्यूजिकल दिल लगी का सफर जारी रहेगा। नीतू होंगी आपके साथ, बहुत सारी बातें लेकर आई हैं आपको बताने के लिए, आप बहुत प्यारे प्यारे गाने भी लेकर आई हैं, तो सुनिएगा और साथ साथ एफएम गोल्ड को अपना साथी बना के पूरा दिन रखिएगा। फिलहाल सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री की यात्रा से विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत फ्रांस संबंध और मजबूत होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगे। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। झारखंड में से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। मिजोरम में सत्तारूढ़ जोराम पीपल्स मूवमेंट और विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिशकियन ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल

रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते सहित प्रतिबंध हटाने पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। अमरीका की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि श्री ट्रंप ने कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान व्यक्तिगत रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति तथा 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर वार्ता पूरी करने का वायदा भी शामिल है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। अफगानिस्तान की टीम 232 रन पर आउट हो गई। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड ने 3-3 विकेट लिए, जबकि प्रिंस यादव ने 2 विकेट हासिल किए। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप ए के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। कल ऑस्ट्रेलिया ने 36 साल बाद विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जिंदगी में तरक्की पाने के लिए ना सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे बिल्कुल नए नजरिए से करें। हर बार चाहे आप उसे 10 साल पहले से कर रहे हो, 15 साल पहले से, 20 साल पहले से, आपके अंदर ये वाला एक जो ईगो है वो नहीं होना चाहिए कि मैं मुझे सब आता है, क्योंकि हम में से किसी को भी सब कुछ नहीं आता। हाँ, कुछ आता है जो किसी दूसरे को नहीं आ सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो अहंकार आ जाता है ना हमारे अंदर, यही है हमारी तरक्की में रुकावट कि हमें सब आता है। तो ये सोच ना आजकल के युवाओं में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है और इस सोच को नाम दिया गया है शोशीन। तो आप भी शोशीन के साथ शाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल नीतू है आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर और ये है म्यूजिकल दिल लगी।

प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए ना आम से लेकर खास लोग सभी प्रयत्न कर रहे हैं। आप भी अगर थोड़े से भी जागरूक हैं तो आप भी कोशिश तो करते ही होंगे ना कि प्लास्टिक का यूज कम से कम करें। हाल ही में मेघालय के वैज्ञानिकों ने केले के छिलकों का इस्तेमाल करके एक ऐसा बायो प्लास्टिक बनाया है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जो प्लास्टिक बना है ये सैकड़ों सालों तक जीवित नहीं रहता है, क्योंकि बायो प्लास्टिक है इसलिए पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, और इसे ना सामान्य प्लास्टिक के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

0: एक नजर ना हमें उन लोगों पर भी डालनी चाहिए जिन्होंने हमारे लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया और सारी जिंदगी उन्होंने देश सेवा में बिता दी। ऐसे ही एक अग्रणी नेता, स्वतंत्रता आंदोलन के एक अग्रणी नेता और समाज सुधारक थे सलेम विजय राघवाचार्य जी, जिनकी आज जयंती है। सत्य, न्याय और राष्ट्रीय चेतना के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने उन्हें दक्षिण भारत में विशेष सम्मान दिलाया था। उनका जीवन हमेशा राष्ट्र सेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनहित के लिए समर्पित कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते रहिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम लौट कर आते हैं। म्यूजिकल दिल लगी सुन रहे हैं आप।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
0: आज है 18 जून और हर साल 18 जून को मनाया जाता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस। इसका अर्थ यह है कि ऐसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन और उपभोग जो स्थानीय संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता का सम्मान करते हुए पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव डालें। ये दिन हमें स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को अपनाने, भोजन की बर्बादी कम करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, हम आगे आने से ज्यादा तो अभी हम इस वक्त की भी सोच लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस वक्त हम जी रहे हैं उस वक्त हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारे शरीर में क्या जा रहा है, ये जानना भी तो बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी अगर खाद्य आदतें जो हैं, खाने पीने की आदतें हैं, वो खराब होंगी तो आगे आने वाली पीढ़ी की तो ऑटोमेटिकली खराब हो जाएंगी। तो बेहतर ये है कि इस गाने पर जरा गौर कीजिए।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत।

सियासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। सोच के देखिए, एक ऐसा घर जहां खुली हवा भी हो, रोशनी भी हो, पर मच्छर एक भी ना हो, कितना सुकून देता है ना ये ख्याल। क्योंकि हम इंसान जो हैं वो मच्छरों से सबसे ज्यादा त्रस्त हैं, खासतौर पर जब मानसून शुरू हो जाता है तब तो मच्छरों की भरमार हो जाती है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और न जाने कौन कौन सी बीमारियों की सौगात इन मच्छरों से हमें मिलती है। इन्हीं से बचने के लिए तंजानिया के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा घर तैयार किया है और इस दो मंजिला घर को उन्होंने स्टार होम का नाम दिया है। इन घरों की वजह से वहां पर मलेरिया के मामलों में 44% की कमी आई है, क्योंकि इन घरों के जो खिड़की दरवाजे हैं उन्हें इस तरह से बनाया गया है कि मच्छर चाह कर भी अंदर नहीं घुस सकते, लेकिन अंदर किचन का धुआं आसानी से बाहर निकल जाता है, जिससे सांस की बीमारियों से भी बचाव होता है। लेकिन ऐसे घर जो हैं वो अभी तंजानिया में हैं, तो आप मच्छरों से बचकर रहिएगा क्योंकि मच्छर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं।

साथ ये वादा ये रहा, तेरे घर लेके मैं बारात, कभी आऊ तेरा पीछा ना ना।

घर की बात कर रहे थे हम, तो आजकल लोगों को ना घरों में सुकून नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो काल्पनिक जगहों पर सुकून तलाश रहे हैं। और ये काल्पनिक जगह है कहाँ? इंटरनेट पर। इन्हें कहा जाता है बैक रूम, जो खाली और रहस्यमय जगहों का ऑनलाइन संग्रह है और पूरी तरह डिजिटल स्पेस है। अनजान ऑफिस के खाली ब्लॉक, लंबे सुनसान गलियारे, पीली दीवारों वाले कमरे या ऐसी कोई जगह जहां सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आप अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकते हो। ये सब सुनने के बाद ही डिप्रेशन सा फीलिंग हो रहा है। तो सच में अगर आप वहां जाते होंगे तो ऐसा ही होता है, ये विशेषज्ञों का कहना भी है कि अगर आप लंबे समय तक इस तरह की काल्पनिक जगहों पर विचरण करते हैं ना, तो आप डिप्रेशन, स्ट्रेस और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। मुझे ये समझ में ही नहीं आता कि जिस दुनिया में इतनी खूबसूरत कुदरत है, वहां आपको ऐसी जगहों की क्या जरूरत पड़ गई है, क्योंकि इतना खूबसूरत माहौल रहता है। आप अपने पार्क में घूमिए, बाहर आसपास जाइए, लोगों से मिलिए, लोगों से नहीं भी मिलना है तो कुदरत के साथ बैठ जाइए, एक पेड़ के नीचे बैठ जाइए, वहीं आपको सुकून मिल जाएगा। पता नहीं लोग असल दुनिया को छोड़कर काल्पनिक जगहों पर जाना क्यों चाहते हैं। इंटरनेट तो वैसे भी पता ही नहीं चलता है वहां पर क्या सच है क्या झूठ है, कौन सी चीज से आपका फायदा उठाया जा रहा है, कौन सी चीज आपके फायदे की है, क्या असली है क्या नकली है, कुछ पता नहीं चलता। तो इंटरनेट को छोड़िए और असली दुनिया में वापस आइए।

देश के सभी भूमिधारक लघु एवं सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इन किसानों के पास या तो कोई बचत होती नहीं है या फिर बहुत कम बचत होती है और बुढ़ापे में जीवन यापन करने का कोई जरिया नहीं रहता। इस योजना के तहत सभी पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को 3,000 रूपये की निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। किसानों को सेवानिवृत्ति की तिथि यानी 60 वर्ष की आयु तक पेंशन कोष में 55 रूपये से 200 रूपये प्रतिमाह के बीच राशि का योगदान करना होगा, जिसमें केंद्र सरकार भी पेंशन फंड में समान राशि का बराबर योगदान देगी। अगर कोई किसान बीच में किसी वजह से योजना को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, तब तक की जमा राशि उन्हें ब्याज समेत वापस कर दी जाएगी और इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले किसान शामिल हो सकते हैं।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट। क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: आज है सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस। उन्होंने मानवता, समानता और धर्म निष्ठा का संदेश दिया और गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्य और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत सी यातनाएं सही, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। आज ही हम याद कर रहे हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष करके अपने अदम्य पराक्रम से भारतीय इतिहास में अमिट स्थान बनाया। अपनी झांसी को अंग्रेजों की बुरी नजर से बचाने के लिए उन्होंने आखिर तक संघर्ष किया और लड़ते लड़ते आज ही के दिन अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे लोग जो है ना इतिहास में अमर हो जाते हैं और एक मिसाल कायम करते हैं, जिनको हमें हमेशा जो हमें याद दिलाती है कि जो आजादी हमें मिली है वो उसकी एक बहुत भारी कीमत लोगों ने चुकाई है। तो हमें उन सबको याद करना है और अपनी आजादी को कायम रखना है और उस रास्ते पर चलना है जिससे कि हम सब खुशी से जी सकें। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप नीतू के साथ, ये है म्यूजिकल दिल्ली। और अब अगला गाना आप तक पहुंच

100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ ये है म्यूजिकल दिल लगी। लेकिन अब म्यूजिकल दिल लगी का वक्त बस सिमट गया है, तो नीतू इजाजत चाहती है आपसे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आप अभी समाचार सुनेंगे और समाचार सुनने के बाद आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपकी फरमाइशें पूरी की जाएंगी। तो भूलिएगा मत, उसका ईमेल आईडी fmgoldairdelhi@gmail.com, यहां पर आपको अपना मैसेज भेजना है, अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है। फिलहाल एक गाना आपके लिए छोड़े जा रही हूं, उसके बाद समाचार और फिर दिल का मेल बॉक्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौ वहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। मिजोरम में सत्तारूढ़ जोराम पीपुल्स मूवमेंट और विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति तथा 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते

0: Sub-Himalayan West Bengal today. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for today. The Met Department has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh and Uttarakhand during the next 2 days. In FIFA World Cup, Yerenki's last-minute goal helped Ghana secure victory over Panama by 1-0 in Group L clash at Toronto Stadium. Earlier, England opened their Group L campaign with a 4-2 victory over Croatia at Dallas Stadium in Arlington, USA. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar, Akashwani se Vishv Darpan ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अमेरिका और ईरान ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप एल में ब्रिटेन ने अपने आरंभिक मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हराया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने लीड्स में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
2: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
3: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
1: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
4: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
5: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। AI को सुरक्षित, तेजी से और कुशलता से लागू करने पर सत्र में श्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मानव मस्तिष्क के हर पहलुओं को बदलने की क्षमता है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि इस प्रौद्योगिकी को जीवन मूल्यों, जिम्मेदार डिजाइन और असरदार शासन के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया।

0: इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। वहीं लिथियम, निकेल और दुर्लभ खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए G7 क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस बनाने की घोषणा की गई है। नेताओं ने AI और क्वांटम तकनीक से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के लिए भी वैश्विक तैयारी बढ़ाने का आह्वान किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिशकियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक रूप जारी कर दिया है।
1: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम $300 अरब के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
2: We have a huge pool of talent.
3: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। और अब समाचार खेल जगत के।
3: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। लीड्स में ग्रुप ए के मैच में भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। नीदरलैंड्स की टीम 114 रन पर आउट हो गई। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराया। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्र दराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हरा दिया। विश्व दर्पण के लिए मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि संघर्ष, जलवायु संकट और धन की कमी के कारण आने वाले महीनों में दुनिया के 13 क्षेत्रों में भूखमरी की स्थिति और गंभीर हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार करीब 26 करोड़ 60 लाख लोग पहले ही गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। सूडान, दक्षिण सूडान, यमन और फलिस्तीन सबसे अधिक चिंता वाले क्षेत्रों में शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खाद्य सहायता के लिए वित्तीय सहयोग में कमी आई है, जिससे हालात और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को योग संगम कार्यक्रम के लिए देशभर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराए हैं। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवरटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय

को भी संबोधित करेंगे। अमेरिका और ईरान ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप एल में ब्रिटेन ने अपने आरंभिक मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हराया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने लीड्स में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दिल का मेल बॉक्स शुरू हो गया है आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। मैं हूं आपके साथ नीतू। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें गाने की तरफ, आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूं कि ये है रिक्वेस्ट बेस्ड शो और इसमें आप अपनी पसंद के गीतों की फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। तो बस जल्दी से अपना फोन उठाइए, वैसे फोन तो हाथ में ही होता है, तो आप अपने फोन में ईमेल खोलिए और ये अपनी पसंद का गाना लिखकर हम तक पहुंचा दीजिए। पहला गाना एक बड़ा ही नॉटी सा गाना है जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूं। दिग्दर्शन गौड़, कविता राधा नामदेव, रानी शर्मा, संजय ढींगिया, अनिल जैन, संदीप मक्कर, दर्शन भाई की पसंद का। फिल्म है हाफ टिकट और किशोर कुमार अपने नॉटीएस्ट वर्जन में है इस गाने में।

0: गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार क्यों न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

बालों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ तोरे नैना ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: सवरिया
1: ओ गुजरिया ओ गुजरिया ओ
2: ये गाना अगर आपने देखा होगा ना स्क्रीन पे तो आपको मजा आया होगा सुनने में भी, क्योंकि इसमें प्राण हैं और किशोर कुमार हैं, जो कि लड़की की आवाज में भी किशोर कुमार ने गाया है और प्राण को इतना तंग कर रहे हैं वो गाने में कि बस पूछे मत। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला गाना जो सुनना चाहा है बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या ने सुनना चाहा है गीत फिल्म से।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: 1 दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर, वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

ताजमहल फिल्म से था ये कलाम और इसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई थी अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदा फारजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद और आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद और सभी फूल वाले फैमिली ने। ताजमहल फिल्म का कोई गीत सुनना चाहा था तो उम्मीद करते हैं आपने अपनी पसंद का गीत सुन लिया होगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आज याद किया जाएगा अब दान सिंह जी को। दान सिंह जी के बारे में शायद आप जानते ना हो, उनका एक गाना अगर आप सुन लेंगे ना तो आप पहचान जाएंगे। वो संगीतकार जिनका ये गाना आज तक फेमस है और इस गाने को सुनना चाहा है मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और बाकी सभी परिवार के सदस्यों ने। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, गाना सुन लेते हैं। मुकेश जी की आवाज में है ये गाना, माय लव फिल्म से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आंख मिचोली तो इन साहब ने खेली है, जिनको जिनकी पसंद पर ये गाना आपको सुनाया गया है, अजीत भावसार और प्रमिला भावसार। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप कोई गाने की फरमाइश भेजते हैं तो बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप उसे लिख दीजिए, आप ज्यादा कारीगरी मत कीजिए। ब्लैक सरफेस पे आपने जो भी लिखा ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो तो बाई चांस मैंने उसको सेलेक्ट किया तो मुझे नजर आया कि उसमें गाना है। और इतना टाइम होता नहीं है रेडियो पर ना, जब आप लाइव शो करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी है कि सिंपल शब्दों में अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दीजिए। अब इस प्रोग्राम का आखिरी गाना जो है वो आप तक पहुंच रहा है, सुनील सुषमा राजवीर अनन्या गायकवाड़ की पसंद पर। आप इस गाने का आनंद उठाइए और नीतू को इजाजत दीजिए। मैं तस्वीर में मिलती हूं आपसे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें भी करेंगे। इससे पहले कल G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए डिजिटल तकनीक तक सुरक्षित पहुंच से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। इन घोषणाओं का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओमकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे से होगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्री शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की है। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरूआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सत्य निष्ठा से धन प्राप्त होता है और निस्वार्थ सेवा से प्रसिद्धि मिलती है। निरंतर अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और कर्म से बुद्धिमत्ता आती है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत के सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महान योद्धा रानी लक्ष्मीबाई को

श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के वीर नेतृत्व ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। घरेलू शेयर बाजार आज शुरुआती कारोबार में लगभग सपाट कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स करीब 60 अंक गिरकर 77,096 पर और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 24,077 के आसपास कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सतपुड़ा की रानी के नाम से मशहूर है पंचमणि, जो कि है हमारी आज की मंजिल, जो प्रकृति की गोद में बसी एक ऐसी जगह है जो मेट्रो सिटीज की हलचल से दूर आपको एक सुकून की दुनिया मिली जाती है और छुट्टियां मनाने के लिए तो एकदम परफेक्ट है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप नीतू के साथ। ये है तस्वीर जिसमें आज हम बात करेंगे सतपुड़ा की रानी के नाम से मशहूर पंचमणि की।

सांस दिलाती है जब नीचे घना जंगल और आसमान पर बादलों का वास होता है। ऐसे में जब कभी सूरज बादलों की ओर से झांकता है ना, तो कमाल का नजारा होता है। वैसे यहाँ का धूपगढ़ सूर्यास्त के लिए ही मशहूर है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कहा जाता है।

मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बसा हिल स्टेशन है पंचमणि, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। यूं तो ये एक प्राकृतिक स्थल है, मगर यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। मॉनसून में तो ये जगह एकदम जादुई है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी FM गोल्ड पर तस्वीर सुन रहे हैं आप और हम बातें कर रहे हैं पंचमणि की। पंचमणि का बाइसन लॉज एंड म्यूजियम जो है वो कैप्टन फोर्सिथ से जुड़ा हुआ है, जिन्हें पंचमणि खोजने का श्रेय दिया जाता है। ये लॉज उनका निवास स्थान हुआ करता था, जिसे अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। यहां पर आप सतपुड़ा पहाड़ियों के वनस्पति और जीवों के चित्र, मॉडल मानचित्र यानी कि मैप वगैरह सब देख सकते हैं और उनके बारे में ढेर सारी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहां एक ओपन थिएटर भी है जिनमें वन्य जीवों पर फिल्में, वृत्तचित्र और प्रस्तुतियां जो हैं वो दिखाई जाती हैं। पंचमणि के इंटरप्रिटेशन सेंटर में आप पंचमणि और उसके आसपास की खूबसूरत तस्वीरें देख सकते हैं और खोरकू जनजातियों की जीवन शैली की एक झलक भी पा सकते हैं, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बसे गांव में रहते हैं।

पंचमणि नाम जो है वो दो शब्दों से बना है, पंच और मणि, यानी पांच गुफाएं जो पांडव गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। किंवदंती कहती है कि इन गुफाओं का निर्माण महाभारत काल के पांच पांडव भाइयों ने अपने 13 साल के वनवास के दौरान किया था। पंचमणि के आसपास की कई दूसरी गुफाओं में भी कई प्राचीन कहानियां शैल चित्रों के रूप में उकेरी गई हैं, जिनमें से कुछ तो 10,000 साल पुरानी हैं। पंचमणि में आप पत्थर से बनी जटा जो है शंकर गुफा भी देख सकते हैं। यहां ये गुफाएं जहां पर हैं वहां पर वो चट्टान दिखने में भगवान शंकर की उलझी हुई जटाओं जैसी दिखती है, इसलिए इसे जटा शंकर गुफा कहते हैं। लोक कथा के अनुसार भगवान शंकर राक्षस भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए इसी गुफा में छिपे थे। इस गुफा के अंत में एक अनोखी चट्टान भी है जो नाग के तने हुए फन की तरह दिखती है, और इसीलिए लोग जो हैं यहां जो रहने वाले लोग हैं वो इसे शेषनाग कहते हैं, इस चट्टान को। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और ये है तस्वीर जिसमें बातें हो रही हैं पंचमणि की।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
6: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
7: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
6: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
7: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और आज हम बातें कर रहे हैं पंचमणि की। पंचमणि पर प्रकृति की भरपूर कृपा है और इस प्राकृतिक स्थल की हर प्राकृतिक स्थल की तरह यहां भी कुदरत ने अपनी खूबसूरती का खजाना लुटाया हुआ है। खासकर झरनों की बात करें ना तो ऐसी भरमार है यहां पर, बहुत सारे झरने हैं। बी फॉल्स, अप्सरा विहार फॉल्स, सिल्वर फॉल्स, ये सब आपकी यात्रा को ना यादगार बना देंगे। बी फॉल्स को जमुना प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे शानदार झरना है और पंचमणि बस स्टैंड से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। दूर से चट्टानों पर बहता इसका पानी मधुमक्खी की तरह बिन बनाने की आवाज करता है, इसीलिए इसे बी फॉल्स कहा जाता है। सिल्वर फॉल्स में पानी 150 फीट की ऊंचाई से गिरता है और अप्सरा विहार फॉल्स 10 मिनट की डाउनहिल ट्रेल है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश महिलाएं यहां स्नान करती थीं। उनके गोरे रंग के कारण स्थानीय लोग उन्हें अप्सरा मानते थे और इसीलिए इस कुंड का नाम अप्सरा विहार हो गया।
1: गोरे गोरे ओ बाके छो

आपको वन्य जीवों को देखना और उनके जीवन को करीब से देखना पसंद है तो आप सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं। जानवरों, सरीसृपों और पक्षियों के अनेक प्रजातियां यहां पाई जाती हैं, जिनमें से कई तो लुप्त प्राय हैं। आप पंचमणी में थोड़ा सा रोमांच अगर ढूंढ रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं पैरा मोटरिंग, एटीवी बाइक राइड, पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज। और अगर आप इनमें से कुछ नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप साइकिलिंग, किनोइंग और ट्रैकिंग

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है।

0: से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ, और हम तस्वीर में बातें कर रहे हैं पंचमणि की। औपनिवेशिक काल का क्राइस्ट चर्च जो यहां पर है वो वास्तुकला के लिहाज से अतुलनीय है, और इसे देखते ही ना आपको वो पुराना समय याद आ जाएगा। बड़े पेड़ों से घिरा ये चर्च एक अद्भुत एहसास कराता है। पंचमणि की तीसरी सबसे ऊंची चोटी चौरागढ़ पहाड़ी है। सदियों पुराना शिव, भगवान शिव का मंदिर जो है वो यहां पर है, जिसे चौरागढ़ मंदिर कहते हैं या फिर छोटा महादेव का मंदिर कहा जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको 1300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, ये ध्यान में रखिएगा, 1300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। चौरागढ़ तक जाने वाले रास्ते में पड़ेगा बड़ा महादेव मंदिर, जो कि 60 फीट लंबी गुफा में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बड़ा महादेव गुफा मंदिर जो है वो स्थान है, वो गुफा जहां भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धर कर राक्षस भस्मासुर का वध किया था। इसी के पास है गुप्त महादेव गुफा, जो भगवान शिव को समर्पित 40 फीट लंबी गुफा है। इसके प्रवेश द्वार पर भी आप जब जाएंगे तो आपको कई और मूर्तियां वहां दिखेंगी, और अंदर जाने का जो रास्ता है ना वो बहुत ही सकरा और घुमावदार है। तो आप जब पंचमणि जाएं तो इन सभी जगहों पर जाने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही वहां का जो एक खासियत है। वहां जाएंगे तो बहुत सारी चीजों से आप रूबरू होंगे, प्रकृति के साथ साथ ये सब भी देखिएगा, और बस वहां जाके एंजॉय कीजिएगा, यादें बना के लौटिएगा। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और ये है तस्वीर।

आप भी एक गाना गाएंगे जब आप पंचमढ़ी पहुंच जाएंगे और वहां का जो पूरा मौसम है वो देखेंगे। तो पंचमढ़ी घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से अप्रैल के बीच। जाने के लिए जबलपुर और भोपाल नजदीकी हवाई अड्डे हैं और निकटतम रेलवे स्टेशन है पिपरिया। दोनों ही जगह से आपको पंचमढ़ी तक जाने के लिए मिल जाएगी सड़क, जो भी टैक्सी है वो आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको सड़क मार्ग का इस्तेमाल वहां से आप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में आप किसी भी बड़े शहर से जाएंगे तो आपको टैक्सी से या बस से आप वहां पहुंच सकते हैं। इस यात्रा में बस अपने साथ कुछ चीजें जरूर रख लीजिएगा, जैसे कि धूप से बचने के लिए टोपी, धूप का चश्मा, पानी की बॉटल और एक कैमरा। चाहे तो एक हल्का रेनकोट या छाता ले जाने के बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम ना काफी अनप्रडिक्टेबल है, जैसे दिल्ली का होता जा रहा है वैसे ही। यात्रा करते समय छोटी मोटी दवाइयां तो आप रखते ही होंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं, मुझे सब कुछ बताने की जरूरत है नहीं।

इसी के साथ वक्त हो गया है कि तस्वीर को यहीं समेट लिया जाए। तो नीतू चलती है, आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं इसी चैनल पर, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। नीतू को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंधबोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंच के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपरे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 당근.
1: एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं घर आंगन कार्यक्रम और घर आंगन कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त अमित कमल आपका स्वागत करती हूं। कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। और दोस्तों इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रेस चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर भी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव से बड़ा शिक्षक इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आप भी अपने अनुभव से सीखिए और तरक्की कीजिए। और ये जो कार्यक्रम है घर आंगन कार्यक्रम, जिसमें हम आपके घर की और आपके हित की बात करते हैं।

चरित्रहीन से। घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, और घर आंगन कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए योग से जुड़ी हुई बातें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करीब ही है। और दोस्तों, ऑफिस में काम कर करके हम थक जाते हैं, पर समझ में नहीं आता कि हम समय कैसे निकालें। उसी पर आज हम बात करेंगे कि आप ऑफिस में योगा कैसे कर सकते हैं। ऑफिस में योगा करना ऊर्जा बढ़ाने, कमर दर्द या कंधे के दर्द से राहत पाने का एक फायदेमंद तरीका हो सकता है। जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं और थोड़ा आराम करना चाहते हैं, तो आप वहीं बैठकर कई तरह के योगासन कर सकते हैं। आज हम आपके साथ कुछ योगासन साझा कर रहे हैं जो आपके ऑफिस में काम करने वालों के लिए एकदम सही है, ताकि वो आप अपने ब्रेक टाइम का भरपूर फायदा उठा सकें। सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कपड़े बदलने की भी जरूरत नहीं है। जो आपने ऑफिस के कपड़े पहने हैं, उन्हीं में आप ये आसन कर सकते हैं। और ऑफिस में किए जाने वाले इन योगासन में से किसी को भी करने से पहले दोस्तों, कुछ सेकंड के लिए आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आप इसके लिए कर सकते हैं बैठे बैठे ट्विस्ट। जी हाँ, डेस्क पर बैठकर योगाभ्यास करने का एक बेहतरीन तरीका क्या है दोस्तों, एक साधारण बैठे हुए ट्विस्ट से शुरुआत करें। सबसे पहले आपको कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठना है। सांस लेते हुए अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाएं और सांस लेते हुए दाईं ओर मुड़ें। सहारा लेने के लिए दोनों हाथों को दाईं ओर की ओर आर्म रेस्ट पर रखें। अगर कुर्सी में आर्म रेस्ट नहीं है, तो आप दाहिना हाथ सीट पर अपने कूल्हे के पीछे रखें और बायां हाथ अपनी दाहिनी जांघ पर रखें। हर सांस के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, जिससे आपका शरीर आसन में और गहराई तक खिंच सके। प्रत्येक तरफ 60 सेकंड तक आसन को रोकें और फिर दूसरी तरफ दोहराएं। और एक और आसन है दोस्तों, कंधे को ऊपर नीचे करना। सांस लेते समय अपने कंधों को कानों की ओर ऊपर उठाएं और फिर नीचे लेकर जाएं। सांस छोड़ते समय उन्हें नीचे और आगे की ओर ले जाएं। इस क्रिया को इसी दिशा में दो बार दोहराएं और फिर विपरीत दिशा में करें। बैठकर पीठ झुकाने वाला आसन भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए टीम के साथ आपको कई बार ऐसा होता है कि लर्निंग सेशन के बाद थोड़ी बदहजमी महसूस होती है, तो फैन पोज पेट को हल्का सा स्ट्रेच देता है। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अपने कुर्सी के अगले किनारे पर बैठें और अपने पैरों को फर्श पर रख लें। अपनी पीठ कुर्सी से ऊपर उठी हुई होनी चाहिए और आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं। आगे की ओर झुकें और अपनी बाहों को पीछे की ओर ले जाकर कुर्सी को पकड़ लें। अपनी कोहनियों को यथासंभव सीधा करने का प्रयास करें। तो है ना ये आसान से आसन जिन्हें आप ऑफिस में कर सकते हैं।

0: हेमलता की आवाज में ये गीत आपने सुना, आप तो ऐसे ना थे। घनांगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रवि

घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। और दोस्तों, भारत की आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 है, लेकिन आजाद भारत का एक हिस्सा ऐसा भी था जहां आजादी के बाद भी कई बरस तक विदेशियों का शासन रहा और इसे आजाद होने में 14 बरस और लगे। ये हिस्सा था देश का तटीय इलाका गोवा, जो उस समय पुर्तगालियों के कब्जे में था। दरअसल सन 1946 में जब ये साफ हो गया कि अंग्रेज अब भारत में अधिक समय तक अपना शासन नहीं चला पाएंगे, तब राष्ट्रीय नेता ये मानकर चल रहे थे कि अंग्रेजों के साथ साथ पुर्तगाली भी गोवा छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी विचारधारा में यकीन रखने वाले राम मनोहर लोहिया इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। यही वजह है कि लोहिया ने 18 जून सन 1946 को गोवा पहुंचकर पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में हजारों गोवा वासियों ने शामिल हुए और आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। हालांकि कई साल के संघर्ष के बाद गोवा को सन 1961 में आजादी मिली। 18 जून को गोवा की आजादी के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी वजह से हर साल 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आज है गोवा क्रांति दिवस।

सन 1971 में आई फिल्म पराया धन से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे डेज ऑफ द डे की और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में अक्सर लोग पिकनिक पर जाना पसंद करते हैं और प्रकृति के बीचों बीच बैठकर उस समय का आनंद उठाते हैं। इतना ही नहीं, अपने साथ बहुत सारे आउटडोर गेम्स भी लेकर जाते हैं। करीब एक सप्ताह पहले ही सभी जोरों शोरों से इसकी तैयारी करते हैं, पर आपको पता है इसके लिए भी एक खास दिन है जो है आज यानी 18 जून को। जी हाँ दोस्तों, 18 जून को हर साल विश्व पिकनिक दिवस मनाया जाता है और पिकनिक का नाम सुनते ही बच्चों और बड़ों के चेहरे पर बहुत सी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन एक सवाल जरूर सबके मन में आता है, वो ये कि पिकनिक शब्द आया कहाँ से। दोस्तों, कहा जाता है कि पिकनिक शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति के बीच में बैठकर भोजन या नाश्ता करना। ऐसा भी कहा जाता है कि फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद ही ये ट्रेंड काफी पॉपुलर हुआ और पूरी दुनिया में इसे अपना लिया गया। आधुनिक पिकनिक का श्रेय फ्रांसीसियों को दिया जाता है, लेकिन वैश्वीकरण और व्यक्तिगत संस्कृतियों का भी इस पर व्यापक असर हुआ और लोकप्रियता भी हुई। जैसे जैसे पिकनिक की अवधारणा फैली, विभिन्न स्थानों पर अनेकों परंपराएं विकसित हुई। विश्व भर में शायद ही कोई ऐसी संस्कृति हो जो अपने तरीके से पिकनिक ना मनाती हो। और पिकनिक की इतनी अच्छी सी जानकारी के साथ आपके लिए है एक प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज है आशा जी, दिलराज कौर व साथियों की। फिल्म का नाम है सत्य पे सत्ता।

एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन, और घर आंगन में घर के सभी विषयों पर बात हो और बच्चों पर बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, मेरठ के मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश पंजीकरण 10 जून से शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 350 छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा गया है। यूनिवर्सिटी भारतीय सेना के साथ मिलकर घुड़सवारी में एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा कोर्स भी इस बार शुरू कर रहे हैं। ये देश में अपनी तरह का पहला कोर्स होगा। विश्वविद्यालय ने अपना प्रवेश प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है और इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और आपको बता दें दोस्तों, आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है। इस बार यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी बड़ी राहत देते हुए विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की व्यवस्था की है। इसके साथ ही स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को शैक्षणिक शुल्क में 100% तक छूट देने का प्रावधान भी रखा गया है। खेल यूनिवर्सिटी की ओर से पहली बार सेना के घुड़सवारों को भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। घुड़सवारी में प्रवेश और प्रशिक्षण के मानक सेना के अनुरूप ही होंगे। और आपको बता दें, राष्ट्रीय पदक विजेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य उच्च स्तरीय प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों को तैयार करना है। ये पाठ्यक्रम राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। आवेदन करने के बाद यहां संभावित रूप से दोस्तों 20 जुलाई से 30 जुलाई के बीच फिजिकल फिटनेस टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, जबकि अंतिम मेरिट सूची अगस्त में जारी की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट sportsuniup.com पर विजिट कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, sportsuniup.com।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना, मेरे हमदम मेरे दोस्त से। दोस्तों, हौसले बुलंद हों और मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पहचान बन चुकी लीला खटीक आज आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। पिछले 25-26 सालों से

उनकी उसी जगह पर फलों की दुकान लगाने वाली लीला ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो समाज की हर महिला को प्रेरित करता है। एक समय था जब लीला के सामने परिवार का पालन पोषण और दो वक्त की रोटी का बड़ा संकट था। उन्होंने बेहद कम लागत के साथ फ्रूट बेचना शुरू किया, लेकिन उनकी मेहनत और सही समय पर मिली सरकारी मदद ने उनकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दी। लीला खटीक की इस कामयाबी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत के साथ साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM का बड़ा योगदान रहा। लीला क्षेत्र की 10 महिलाओं के साथ मिलकर मधुर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। इस समूह के जरिए उन्हें बैंक से आर्थिक मदद मिलने शुरू हुई। लीला को शुरुआत में बैंक से बहुत छोटी राशि मिली, पहले 7,000 रुपए मिले, फिर 30,000 और फिर 60,000 रुपए की मदद मिली। इसके बाद धीरे धीरे ये मदद 8,00,000 रुपए तक पहुंच गई। दोस्तों, नियम ये है कि आप जैसे जैसे ईमानदारी से लोन की किश्त जमा करते जाते हैं, आपका क्रेडिट बढ़ता जाता है और बैंक आगे और भी मदद करता है। फलों के इस कारोबार और बैंक से मिली मदद के बूते लीला ने न सिर्फ आजादी पाई बल्कि एक मां के रूप में अपने सारे कर्तव्यों को निभाया। उन्होंने अकेले अपने दम पर अपने 5 बच्चों की परवरिश की। आज उनके बच्चे सेटल हैं और फल बेचकर ही लीला ने अपना खुद का घर और मकान भी बनवाया है। उम्र के इस पड़ाव पर जब लीला को ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, लीला की ये कहानी संदेश देती है कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अगर जज्बा हो तो आप किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

आशा जी की आवाज में ये गीत आपने सुना खुशबू फिल्म से। दोस्तों, एक समय था जब छुट्टियां शुरू होते ही सभी को नानी दादी के घर जाने की बड़ी दिलचस्पी होती थी।

रूप से मजबूत हों ताकि वो आने वाले समय में तकनीक की दुनिया में पीछे ना रहें। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि कोडिंग और रोबोटिक्स से बच्चों की तार्किक क्षमता यानी लॉजिकल थिंकिंग और समस्या सुलझाने का जो कौशल है वो बढ़ता है। इसलिए भी माता पिता बच्चों को इन कैंप्स में भेजना ज्यादा पसंद करते हैं और साथ ही माता पिता चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल पर गेम खेलने या टीवी देखने की बजाय कुछ नया और प्रोडक्टिव सीखें जिससे वो उनके भविष्य में काम भी आए। दोस्तों इन कैंप्स में बच्चे खुद से वीडियो गेम वेबसाइट या छोटे रोबोट्स बनाना सीखते हैं और कैंप के आखिर में इन्हें सर्टिफिकेट भी मिलता है जो उनके बायोडाटा और भविष्य के लिए काम आता है। है ना फायदे का सौदा।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम में हर चीज की बात हो और आपकी सुंदरता की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे घर पर लौंग का मॉइस्चराइजर बनाना। जी हाँ, लौंग मॉइस्चराइजर बनाने के लिए आप जो है बताने से पहले उसके फायदे आपको बता देते हैं। लौंग मॉइस्चराइजर मुहासों, दाग धब्बों और झुर्रियों को दूर करने के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है। इसे बनाने का सबसे आसान और असरदार जो तरीका है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके लिए एक छोटे बाउल में एलोवेरा जेल और गुलाब जल को अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें 6 या 8 लौंग को साबुत डाल दें और इसे अच्छे से मिलाएं और इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल निचोड़ लें। फिर इसे किसी शीशी या एयरटाइट कंटेनर में भरकर 24 से 48 घंटे के लिए रख दें। ध्यान रहे कंटेनर या शीशी कांच की होनी चाहिए ताकि लौंग के सभी पोषक तत्व जेल में आ जाएं। 24 या 48 घंटों बाद लौंग को इसमें से बाहर निकाल लें और अब आपका मॉइस्चराइजर तैयार है। इसे इस्तेमाल करने के लिए रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धो लें। अब इस मॉइस्चराइजर को थोड़ा सा हाथ पर लेकर चेहरे और गर्दन की अच्छे से मसाज करें और उसे रात भर लगा रहने दें और सुबह उठकर सामान्य पानी से चेहरा धो लें। और दोस्तों आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। नोट कर सकते हैं आप हमारा मेल आईडी fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं हाथ की सफाई फिल्म से। और स्टूडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है, तो मेल आईडी एक बार फिर से नोट करें fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतजार। इसी के साथ घर आंगन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हर आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का यह सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंधगोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस, फ्रांस से महेश सोपरे।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित

0: लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्वकप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरूआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is set to hold a series of high-level meetings with leading French business leaders in Paris today as part of efforts to deepen the India-France economic and industrial cooperation. The Prime Minister will also attend the Viva Tech Summit alongside French President Emmanuel Macron. The summit is Europe's largest technology and startup event, where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation ecosystem and technological advancements. India will have the largest national pavilion at this edition of Viva Tech Summit, a fitting symbol of the enormous potential for partnership between the Indian and European innovation ecosystem. Union Home Minister Amit Shah has said the past 12 years of Prime Minister Narendra Modi's government have been a golden era of confluence of development and heritage. In a social media post today, Mr. Shah said in these 12 years, the construction of Sri Ram Janmabhoomi Mandir, Kashi Vishwanath Corridor and Ujjain Mahakal Lok took place, while world-class connectivity, infrastructure projects and initiatives like Make in India have given unprecedented momentum to the country's development journey. Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu today informed that the first cargo flight has landed at Noida International Airport, carrying multiple goods including leather goods and auto parts from Chennai. In a social media post, the minister said that Made in India mobile phones, auto parts and accessories were dispatched from the Chennai airport, strengthening supply chains and creating new opportunities for local industries. The airport began commercial operations 2 days ago. The Calcutta High Court today declined to grant any interim relief on West Bengal Assembly Speaker Rathindra Bose's decision to appoint breakaway Trinamool Congress MLA Ritabrata Banerjee as the leader of opposition in the Assembly. Hearing a petition filed by TMC MLA Shobhandeep Chattopadhyay challenging the rejection of his nomination and Banerjee's appointment, Justice Krishna Rao refused to stay.

यही वजह रही उन्होंने इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट नंबर वन के रूप में अपनी जगह बनाई। खोया पाया फॉर्मूला अपनाकर उन्होंने अनेक हिट्स, सुपर हिट्स मूवीज फिल्म इंडस्ट्री को दी। मनमोहन देसाई जिन्होंने सिनेमा का दुखों से राहत और जिंदगी से प्यार करने का जरिया बनाया, उनकी फिल्म्स सिनेमा के जरिए सिर्फ कहानी कहना नहीं था बल्कि त्योहार, सपना और उम्मीद लिए होती थी। मनमोहन देसाई जो मनोरंजन को मेन मुद्दा बनाकर फिल्म्स रचते थे, बनाते थे, उनके अनुसार लोग अपना गम भूलने के लिए सिनेमा घरों में जाते हैं और वो इस बात का फिल्म निर्माण में पूरा ख्याल रखते थे। बस इसी दिग्गज महान निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई की बातें साझा होती रहेंगी इस पूरे सफर में। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड, अंजलि है आपके साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1, कलाकार बेमिसाल का ये सफर में और आप तय कर रहे हैं यहाँ पर, और बातें हो रही हैं महान निर्देशक मनमोहन देसाई साहब की। 26 फरवरी 1937 को मनमोहन देसाई का जन्म हुआ मुंबई के एक गुजराती परिवार में। इनके पिता किक्कू देसाई फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम रहे, वो पैरामाउंट स्टूडियो के मालिक थे, इसलिए मनमोहन देसाई के लिए सिनेमा कोई दूर की दुनिया नहीं थी। इनका बचपन कैमरा, लाइट्स और रीलों के बीच ही बीता। घर में पूरा माहौल ही फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ रहा, इसलिए इन्होंने भी बहुत ही कम उम्र में तय कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी फिल्मों को ही समर्पित करेंगे। मंची के नाम से वो इंडस्ट्री में जाने जाते रहे।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड।

100.1 मेगाहर्ट्ज और इस वक्त कलाकार बेमिसाल का यह सफर तय करते हुए बातें हो रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम, दिग्गज महान निर्देशक मनमोहन देसाई की। साल 1960, जब मनमोहन देसाई मात्र 24 साल के थे, उन्हें अपने भाई सुभाष देसाई द्वारा निर्मित फिल्म छलिया डायरेक्ट करने का मौका मिला। हालांकि फिल्म में दिग्गज राज कपूर नूतन के होते हुए भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, पर इसका संगीत लोगों ने खूब पसंद किया। डग डम डम डिगा डिगा और छलिया मेरा नाम जैसे गीत। इसके बाद साल 1964, इस साल मनमोहन देसाई को राजकुमार फिल्म का डायरेक्शन करने का मौका मिला। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई, फिल्म भी काफी सफल रही और उन्हें भी इंडस्ट्री में पैर जमाने में मदद मिली।

साल 1970 जब मनमोहन देसाई ने राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म सच्चा झूठा का निर्देशन किया। सुपरस्टार राजेश खन्ना की दोहरी भूमिका रही इस फिल्म में और मंजी का कसा हुआ डायरेक्शन फिल्म दर्शकों के बीच काफी पसंद की गई। बस इसके बाद उनके करियर ग्राफ जैसे उनका करियर ग्राफ ऊपर ही उठता चला गया। सुपरहिट इस फिल्म में उन्होंने अपनी निर्देशन प्रतिभा का लोहा मनवाया। ये फिल्म भी खोया पाया फॉर्मूले पर आधारित रही। इसके बाद तो इसी आधार को लेकर उन्होंने अनेक सुपरहिट फिल्म्स हमें सौंपी, भाई हो तो ऐसा, रामपुर का लक्ष्मण, आग गली लग जा और रोटी जैसी फिल्में।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और कलाकार बेमिसाल का ये सफर, हसीन सा सफर, डायरेक्टर मनमोहन देसाई की बातें करते हुए, उनकी करियर के बारे में जानकारी साझा करते हुए आपके साथ बीत रहा है। वर्ष 1977 की अब बात करते हैं उनके करियर का, जो कि अहम साल रहा। इस साल उनकी परवरिश, धर्मवीर, चाचा भतीजा, अमर अकबर, एंथनी जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई। उनका सपना ही यही था कि वो दर्शकों के लिए बड़े पैमाने पर मनोरंजक फिल्मों का निर्माण करें। अपने इसी ख्वाब के लिए उन्होंने अमर अकबर एंथनी के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और AMKD बैनर की स्थापना की। इस फिल्म के बाद से मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन साहब के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग कायम हो गई थी। परवरिश फिल्म का ये गीत सुन लेते हैं मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार, शैलेंद्र सिंह की आवाज में।

हमेशा अपने दर्शकों को कुछ नया देने वाले मनमोहन देसाई ने 1981 में फिल्म नसीब का निर्माण किया। इस फिल्म के गाने जॉन जानी जनार्दन में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के नामी सितारों की पूरी फौज ही खड़ी कर दी थी। इंडस्ट्री के इतिहास में यह पहला मौका रहा जब एक गाने में फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गजों की उपस्थिति रही। कह सकते हैं मनमोहन देसाई अपनी तरह के एक अलग ही निर्देशक रहे, जिन्होंने फिल्म में मनोरंजन की एक खास अहमियत दिखाई। उसी को ध्यान में रखते हुए वो फिल्म बनाते चले गए। 1983 में मनमोहन देसाई निर्मित एक और फिल्म प्रदर्शित हुई, कुली, जो हिंदी फिल्म जगत में अपना नाम दर्ज करा गई। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अमिताभ साहब के ठीक होने के बाद मनमोहन देसाई ने उन्हें लेकर कई फिल्म

का निर्माण किया। 1985 में अमिताभ अभिनीत फिल्म मर्द, 1988 में गंगा जमुना सरस्वती और इसके बाद फिल्म तूफान। मर्द फिल्म के बाद उनकी बाकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई, इसी के चलते उनके निर्देशन से कुछ दूरी सी बन गई।

0: बहुमुखी प्रतिभा के धनी मनमोहन देसाई ने अपने करियर के शुरुआत में राजकुमार और किस्मत फिल्मों का इन फिल्मों की कहानी भी लिखी थी। इसके अलावा 1963 में प्रदर्शित ब्लफ मास्टर का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा था। अपने 3 दशक से भी ज्यादा लंबे सिने करियर में मनमोहन देसाई ने लगभग 20 फिल्मों का निर्देशन किया। मनमोहन देसाई का सिनेमा मसाला सिनेमा रहा। वो दूसरे फिल्म मेकर्स की तुलना में डबल तड़का लगाकर अपनी फिल्में परोसते थे। उन्होंने फिल्म समीक्षकों की कभी परवाह नहीं की। जो रास्ता उन्होंने एक बार चुन लिया, आखिर तक उसी पर चलते रहे। उनका सीधा सा तर्क रहा, सिनेमा मेरे लिए शिक्षा या कला बिल्कुल नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और अभावों के बीच रहने वाला आदमी जब फिल्म देखने जाता है तो उसे मनोरंजन और सिर्फ मनोरंजन चाहिए होता है। मैं हमेशा मनोरंजन प्रधान फिल्में बनाता रहूंगा और यही उन्होंने किया भी। मनमोहन देसाई मिलनसार और हसमुख स्वभाव के व्यक्ति रहे। हिंदी सिनेमा के लिए उनका अतुलनीय योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहे हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। कुछ ही देर में सुनिएगा उर्दू खबरें, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ आला सतह की कई मीटिंग्स करेंगे। वो वीवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। मरकज माली साल 2026-27 में 26 किलोमीटर देही सड़कों की तामीर करेगा, जिस पर 18,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऋतव्रत बनर्जी को असेंबली में अपोजिशन रहनुमा मुकर्रर करने के फैसले पर कोई उबूरी हुक्म देने से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक सड़क हादसे में एक ही गांव के 7 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुफाहमतनामा पर अमल शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अमन मुजाकरात की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। और हॉकी में भारत ने उरुग्वे को 3-2 से हराया, जिसके बाद वो न्यूजीलैंड में FIH खवातीन के नेशंस कप में सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ बहुत सी आला सतह की मीटिंगें करेंगे।

0: ये मीटिंगें वो भारत फ्रांस इकतसादी और सनती तआवुन को गहरा करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: वजीर आजम सेंट गोबेन के चेयरमैन और सीईओ बेनोइट बेजीन के साथ बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि इसमें माहौल के लिए साजगार मैन्युफैक्चरिंग और मुस्तकबिल बुनियादी ढांचे पर तवज्जो दी जाएगी। वो स्मार्ट मोबिलिटी और रेल जदीदकारी में तआवुन के मौके तलाश करने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। टेक्नोलॉजी के शोबे में वजीर आजम मसनूई जहानत इख्तरा और जिम्मेदार एआई हुक्मरानी के बारे में मिस्टर एआई के बानी साथी और सीईओ आर्थर मेंच के साथ बातचीत करेंगे। मीटिंगों का यह सिलसिला सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोडोल्फ साडे की मीटिंग के साथ खत्म हो जाएगा, जिसमें उम्मीद है कि वो समुद्र के रास्ते तिजारत बंदरगाहों को जदीद शक्ल दिए जाने और मुस्तहकम आलमी सप्लाई चेन पर तबादला ख्याल करेंगे। इन सरगर्मियों से भारत और फ्रांस के दरमियान बढ़ती हुई इक्तिसादी शराकतदारी की अहमियत का इजहार होता है। महेश चौबाडे की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: वजीर आजम फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। ये समिट टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की यूरोप की सबसे बड़ी तकरीब है, जिसमें उम्मीद है कि जनाब मोदी भारत के इख्तरा से मुतालिक तरक्की पाते हुए इको निजाम और टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त को उजागर करेंगे। वीवा टेक समिट में भारत का सबसे बड़ा पवेलियन है, जो भारत और यूरोप के दरमियान इख्तरा से मुतालिक इको निजाम की शराकत दारी के बड़े इम्कान की अलामत है। मरकज 2026-27 के माली साल के दौरान देही इलाकों में 26,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तामीर करेगा। देही तरक्की की वजारत के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और देही इलाकों में मुतल्लिका सरगर्मियों के लिए 18,900 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। आला सतह की एक मीटिंग में देही इलाकों में सड़कों से मुतल्लिक प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा और मध्य प्रदेश के 5 रोजा दौरे पर आज सुबह इंदौर पहुंची। उनका देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर गवर्नर मंगूभाई पटेल और वजीर आला मोहन यादव और आला हुक्काम ने शानदार इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू बैतूल में रूहानी बेदारी के जरिए कबायली मुआशरे को बाइख्तियार बनाने के एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। झारखंड में आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और आजाद उम्मीदवार परिमल नाथवानी मैदान में हैं। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगी, जबकि वोटों की गिनती शाम 5 बजे शुरू होगी और इसके बाद नतीज का ऐलान किया जाएगा। असेंबली के तमाम 81 अरकान के अपना वोट डालने का इम्कान है। मिजोरम में राज्यसभा की वाहिद सीट के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में हुक्मरान जोराम पीपल्स मूवमेंट और अपोजिशन मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवारों के दरमियान सीधा मुकाबला है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में अवामी बहबूद के 3 रोजा कैंपों का इफ्तिताह किया। ये कैंप वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के मुहिम से तरगीब हासिल करके शुरू किए गए हैं। कैंप के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि हुकूमत ने कौमी राजधानी के 42 मकामात पर इन कैंपों का इनेकाद किया है। उन्होंने यह भी कहा कि शहरी मरकजी और दिल्ली हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
2: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज तृणमूल कांग्रेस के एमएलए ऋतब्रता बनर्जी, जो इस पार्टी से अलग हो गए हैं, उन्हें असेंबली में अपोजिशन रहनुमा के तौर पर मुकर्रर करने से मुतालिक मगरबी बंगाल के असेंबली के स्पीकर रथिंद्रा बोस के फैसले के बारे में कोई उबूरी राहत देने से इनकार कर दिया है। टीएमसी एमएलए सुभान देव चट्टोपाध्याय की तरफ से दाखिल की गई एक दरखास्त की समाअत करते हुए, जिसमें बनर्जी की नामजदगी और तकर्रुर को रद्द किए जाने को चैलेंज किया गया है, जस्टिस कृष्ण राव ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मुद्दा अलह को 3 हफ्ते के अंदर अंदर अपने हलफनामे दाखिल करने की हिदायत दी है, जबकि दरखास्त दहिंदा को मजीद 2 हफ्ते का वक्त दिया है कि वह अपना जवाब दाखिल करे। इस मामले की अगली समाअत 28 जुलाई को होगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक

ये सभी लोग एक ही गांव के थे। इनमें तीन सगे भाई और एक शादीशुदा जोड़ा था। यह हादसा चुराह असेंबली हल्के की पुखरी मसरूंद सड़क पर मानी जीरो के करीब पेश आया, जब एक बोलेरो गाड़ी काबू से बाहर हो गई और तकरीबन 500 मीटर दूर गहरी खाई में जा गिरी। चंबा के सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने अमृतसर में एक घर को कुर्क किया है जिसका ताल्लुक लश्करे तैयबा के एक कारिंदे से है। यह शख्स सरहद पार मनुष्यात और दहशतगर्दी के नेटवर्क के एक केस में मुलविस है। यह नेटवर्क पाकिस्तान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, थाईलैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर मुल्कों में फैला हुआ है। सरकारी जराये के मुताबिक ये कारिंदा अंकुश कपूर इस नेटवर्क का भारत में एक बुनियादी कारिंदा है। एनआईए की तफ्तीश से इंकशाफ हुआ है कि अंकुश के राबते दुबई में मुकीम एक मुलजिम से हैं जिसका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर ए तैयबा से है। अंकुश को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था जिसकी शिनाख्त एक साजिश तैयार करने वाले एक बहुत ही अहम कारिंदे के तौर पर की गई है जिसका ताल्लुक नशीले मादों की स्मगलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और तकसीम से था। अमरीका और ईरान के दरमियान एक अहम मुफाहमतनामा लागू हो गया है जिसके तहत लगभग 4 महीने से जारी लड़ाई फौरी तौर पर खत्म हो गई है। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान एक जामे अमन समझौते के खातिर 60 दिन तक गुफ्तगू जारी रहने की भी गुंजाइश रखी गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान स्विट्जरलैंड में तयशुदा मीटिंग से पहले 14 निकाती समझौते पर इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत किए गए हैं। समझौते के तहत फौरी तौर पर लड़ाई बंद कर दी जाएगी, दोनों मुल्क दुश्मनाना कार्रवाइयों से गुरेज करेंगे, इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तवील अरसे से जारी तनाजे को हल करने के लिए एक खाका तय करेंगे। मुफाहमतनामे के तहत अमरीका ईरान के गिर्दोनवाह में बहरी नाकाबंदी खत्म करना शुरू कर देगा और आबनाए हुर्मुस के रास्ते बहरी जहाजों की आमद रफ्त को 30 दिन के अंदर अंदर मामूल पर लाने के लिए काम करेगा। न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के एफआईएच हॉकी कप में पूल ए में भारत ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो पूल ए में सरफहरिस्त आ गया है। शुरू में भारत पर एक गोल किया था जिसके बाद दीपिका ने 2 और दीपिका सोरेंग ने उरुग्वे पर एक गोल किया। फुटबॉल में कोलंबिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप के में एक मैच में उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर अपनी मुहिम का आगाज किया। यह मैच आज सुबह मेक्सिको शहर के स्टादियो एस्तिका में खेला गया। इससे पहले ग्रुप एल में घाना ने पनामा पर 1-0 से जीत हासिल की थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ आला सतह की कई मीटिंग्स कर रहे हैं। वो वीवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। मरकज माली साल 2026-27 में 26,000 किलोमीटर देही सड़कों की तामीर करेगा जिस पर 18,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट में रतव्रत बनर्जी को असेंबली में अपोजिशन रहनुमा मुकर्रर करने के फैसले पर कोई उबूरी हुक्म देने से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक सड़क हादसे में एक ही गांव के 7 अफराद हलाक हो गए। और अमरीका और ईरान के दरमियान एक मुफाहमतनामे पर अमल दरामद शुरू हो गया है जिसकी वजह से अमन मुजाकरात की उम्मीदें पैदा हुई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्चस्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण

0: विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा

0: परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमरीका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमरीका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना

वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व

आज न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया

मंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, समय हो गया है कार्यक्रम किसान की बात का। स्वागत करती हूं, आज मैं हूं आपके साथ आरती,
2: और मैं अमित तेवतिया।
1: बिल्कुल, कार्यक्रम किसान की बात जिसमें हमारे किसानों के लिए कुछ ऐसी जानकारियां हम लेकर आते हैं जो उनकी खेती को एक कदम आगे की ओर लेकर जाती है, और कहीं कुछ अगर परेशानियां उनको महसूस हो रही होती हैं खेती करने के दौरान, तो उनका भी समाधान कोशिश करते हैं हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसान मित्रों तक, या जो भी खेती से, कृषि से थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं उन तक पहुंचा दी जाए।
2: बिल्कुल आरती, आपने सही कहा, क्योंकि भाई अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं, जहां एक और जलवायु परिवर्तन या जल की कमी, वर्षा का असमय हो जाना, इन सब बातों से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में एक विशेष हमारे लिए कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है कि हम जल संरक्षण करें, क्योंकि जल के बिना न जीवन है, न कृषि है, न हम एक प्रकृति के विषय में सोच सकते हैं। लेकिन जल संरक्षण शब्द जितना हमें बोलने में आसान लगता है या आए दिन हमारे सामने आता है, वहीं कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि इसकी आवश्यकता को जब हम ध्यान में रखते हैं तो लगता है कि जल नहीं तो कुछ नहीं।
1: जी बिल्कुल,
2: इस विषय को गहनता के साथ और गूढ़ता के साथ लेकर के आज एफएम गोल्ड पर हमारे सभी किसान भाई बहन हमारे साथ हैं। लेकिन वहीं इस पर विशेष जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर आर एस बाना को। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: जी साथियों, और हमारे सभी किसान मित्रों से, या फिर जो भी हमारे मित्र कार्यक्रम इस वक्त सुन रहे हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप भी जल संरक्षण कर रहे हो, किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, जानना चाहते कि और क्या प्रयास कर सकते हैं, या फिर इस दिशा में और क्या कदम आपको उठाने चाहिए, ऐसा कुछ भी आप आज के इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 011 दिल्ली का सिटी कोड है, इसके बाद आप नंबर डायल करें 2342108 1। एक और फोन नंबर है आपके लिए 2342108 3। इस पे आप कॉल करके सीधे जान सकते हैं जल संरक्षण से जुड़ा, और विशेष तौर पर जो कृषि के विकास के लिए उपयोगी हो, क्या क्या ऐसी चीजें जो आप कर सकते हैं।
2: बिल्कुल आरती, क्योंकि सतत कृषि विकास के लिए जल संरक्षण की प्रभावी रणनीतियां, इस विषय को लेकर के डॉक्टर आर एस बाना है। बात हुई कि शब्द जितना सुनने में हल्का है, उतना ही गहराइयों से कहीं ना कहीं हमें इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। प्रश्न आज हमारे सामने जरूर होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके बिना हम आगे के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, इस विषय को जितनी गंभीरता के साथ हमें लेना चाहिए
3: जी,
2: उतनी गंभीरता के साथ हम नहीं ले पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात होती है, केवल या अध्यापन की बात करें या शिक्षा की बात करें या चर्चा की बात करें, बातचीत की बात, तो बातचीत में रहेगा कि हाँ हम जल संरक्षण पर बात कर रहे हैं, लेकिन जब अमूमन हम देखते हैं तो उतना फील्ड वर्क नहीं होता है या ग्राउंड पर नहीं होता है। तो ये जल संरक्षण के विषय में सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि इस विषय को आप और गंभीरता के साथ लेकर के हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं कि कितना जरूरी है और क्यों।
3: जी, जल संरक्षण, देखो जल है तो कल है और जल ही जीवन है, ये बात जीवन में भी उतनी ही चरितार्थ है, और जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं।

0: मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी कि हर बूंद का अपना महत्व है और बूंद बूंद बचाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अमूमन देखने में आता है कि मेरा एक आदमी के बचाने से कितना जल बच जाएगा, पर खराब भी तो एक एक आदमी कर रहा है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर हम सब इसके प्रति जागरूक होंगे और बूंद बूंद बचाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। और चूंकि आज का विषय है सतत कृषि का, तो कृषि एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है जल का, और देश के आजाद होने के बाद योजनागत कृषि विकास के बावजूद अब भी हमारा करीब करीब 45% कृषि क्षेत्र ऐसा है जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध है ही नहीं, और बारानी खेती करते हैं, असिंचित खेती करते हैं, वर्षा आधारित खेती करते हैं। इसके अलावा जो बचा हुआ 55% जिसमें हमने सिंचाई की व्यवस्था कर भी दी है, उसमें भी बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पे सिंचाई की कहीं ना कहीं पानी की उपलब्धता की कमी रहती है, और सुचारू रूप से जो जिसको बोलते हैं वो सप्लाई नहीं हो पाती है। ऐसी परिस्थिति में बात आ जाती है जल संरक्षण करना
1: जी।
0: और उसका सबसे मूल मंत्र यही है कि आपका जो खेत का पानी है वो खेत से बाहर बहकर नहीं जाना चाहिए। खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे, तभी हम खेती अच्छे से कर पाएंगे। अब ऐसा हम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि मेड़बंदी और ऐसी बहुत आसान तकनीकियां हैं जिनसे हम खेत का पानी खेत में रोक लेते हैं, पर अतिवृष्टि की भी समस्या आ जाती है और पानी खेत में ज्यादा भर जाता है, तो तब क्या करें। तो इन सब चीजों का समाधान के लिए ICAR और जो पूसा संस्थान है हमारा, और इसके अतिरिक्त भी ICAR के हमारे संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय रोज अनुसंधान करते हैं, और उसमें जो बेड प्लांटिंग है, ब्रॉड बेड और फर्रो आधारित जो ऊपर फसल को उठी हुई क्यारी में बिजाई कर देते हैं, उससे क्या होता है कि जो भी बरसात का पानी होता है वो जो साइड में नालियां बनी होती है वहां पर इकट्ठा होकर बहकर नहीं जाता है, और जब ज्यादा अतिवृष्टि होती है उस दशा में भी पौधों तक वो पानी नहीं पहुंच पाता है, तो जो एनएरोबिक कंडीशन होती है यानी कि जो वायु का संचार पौधों की जड़ों तक रुक जाता है पानी भरने से, वो समस्या भी नहीं रहती। तो जो इस तरह की छोटी छोटे परिवर्तन करके जो सस्य प्रौद्योगिकियां हैं उनको अपना करके आप मृदा नमी को संरक्षित रख सकते हैं, और इस तरह से आप जल संरक्षण में एक अपना बड़ा योगदान दे सकते हैं कृषि क्षेत्र में। जी
1: डॉक्टर साहब, एक बात है कि मानसून को सबसे अच्छा समय कहा जाता है कि जल संरक्षण के लिए, ये समय बहुत उपयुक्त माना जाता है
0: जी।
1: और मानसून से जुड़ा देखा जाए तो इस वर्ष को एल नीनो वर्ष कहा जा रहा है
0: जी।
1: तो एक तो इसको इस शब्द को भी समझना चाहेंगे और आसान भाषा में, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि मानसून पे इसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है
0: जी। एल नीनो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब तो वैसे होता है शाब्दिक अर्थ तो छोटा बच्चा, क्योंकि ये क्रिसमस के समय आता है और जो पेरू और बोलिविया का जो तट है यानी कि जो पूर्वी प्रशांत महासागर है उस क्षेत्र में, उसको नीनो 1, 2, 3, 4 ऐसे डिवाइड किया गया है, तो जो नीनो 3.4 क्षेत्र है वहां पर लगातार 3 महीनों का सी सरफेस टेम्परेचर बोलते हैं, समुद्र के सतह का जो तापमान होता है वो 28 डिग्री से 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाए, यानी कि उन क्षेत्र में ठंडी जलधाराएं आती है और उसकी जगह जो धाराएं हैं वो गर्म जलधाराएं होती है, उससे पूरा प्रशांत महासागर का जो करंट सिस्टम है वो तब्दील हो जाता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर उससे जुड़ा हुआ है
2: जी।
0: तो वो प्रभावित होता है, और प्रशांत महासागर सुनने में तो नक्शे में जब हम देखते हैं वो बहुत दूर दिखाई देता है, परंतु वो हमारे हिंद महासागर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत जुड़ा हुआ है
1: जी।
0: तो जो प्रशांत महासागर का जब सर्कुलेशन सिस्टम और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो एसोसिएटेड सिस्टम है उसमें परिवर्तन आता है, तो वो हिंद महासागर का भी सर्कुलेशन सिस्टम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो पद्धति है प्रणाली है उसको प्रभावित करता है, और उससे जो प्रशांत महासागर की तरफ से हर वर्ष जो उत्तर की तरफ हवाएं आती है और वो हवाएं काफी बड़े क्षेत्र पे महासागर पे बरसात जो पानी पर यात्रा करती है वो हवाएं तो अपने साथ काफी सारी नमी लेके आती है, और जो लगातार गर्मी की वजह से जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी जमीन गर्म होके और ऊपर हवा बनकर चली जाती है, तो एक लो प्रेशर

0: एरिया, कम दबाव का क्षेत्र का निर्माण होता है और हर वर्ष जो हवा आती है वो सर्कुलेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की संभावना होती है
1: जी।
0: बहुत सारे अध्ययनों में पाया कि जो पिछले 21 बड़े ड्राउट थे उनमें से 11 ड्राउट जो सूखे पड़े वो एलनिनो वर्ष में थे, पर ऐसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जो IMD का फोरकास्ट आया है वो है कि दीर्घकालिक औसत का 90% तक औसत वर्षा होने की संभावना है, यानी कि 10% की ही कमी रहने की संभावना है। तो एक तो डरना वैसे भी नहीं है, दूसरा ये है कि जरूरी नहीं कि एलनिनो वर्ष है तो सूखा पड़ेगा ही। 1953, 1998, 1997 और 2023 भी, ये वर्षों में 1997 इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत स्ट्रांग एलनिनो था परंतु सूखा नहीं पड़ा था, तो क्योंकि एक इंडियन ओशियन डाइपोल भी ऐसा सिस्टम है, तो इससे घबराना नहीं है, बस सतर्क रहना है, सावधान रहना है और कृषि तकनीकियां अपनानी है, जल संरक्षण अपनाना है।
1: जी बिल्कुल, कृषि तकनीकियां जल संरक्षण में अपनाने की बहुत जरूरत है। और मानसून जो जहां तक है कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा समय होता है कि आप जल संरक्षण कर लें। अब कई किसान मित्रों को या कई लोगों को ये होता है कि अब जल संरक्षण सुनते बहुत है, करना कैसा है, सारी विधि भी तो पता होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इसकी कुछ अगर विधियां जो हमारे किसान मित्र अपना सके और अपनी खेती को एकदम अच्छा कर सके, आप बताएं।
0: जी, एक तो गर्मी के मौसम में गहरी जुताई कर लें, अभी भी खेतों में जुताई कर लेंगे तो बरसात जो भी होगी वो खेत में रुक जाएगी
1: जी।
0: जुताई और यदि शून्य जुताई करते हैं तो उस दशा में तो और भी अच्छा है, और खेतों में मेड़बंदी करके रखें। मैं जैसे अभी पूर्व में भी बताया कि खेत का पानी खेत में ही रखना है। फार्म पौंडों का निर्माण करें, जो 45% हमारा कृषि क्षेत्र असिंचित है उसमें, तो ये बड़ा वरदान सिद्ध हो सकता है। खेत में छोटा तालाब बनाएं, बहुत सारी राज्य सरकार की योजनाएं भी है। राजस्थान चूंकि हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है और बहुत बड़ा असिंचित क्षेत्र है, वहां पर राज्य सरकार की योजना है, फार्म पॉन्ड पे काफी अनुदान मिलते हैं। तो आप अपना जो कृषि विशेषज्ञ होते हैं, जो गांव के और जिले के कृषि अधिकारी होते हैं आपके, उनसे आप निरंतर संपर्क में रहें और उन योजनाओं का लाभ उठाते हुए फार्म पॉन्ड का निर्माण करें। और जो फार्म पॉन्ड बना भी लिया तो उसके पानी को बिगाड़ना नहीं है, उसकी एक एक बूंद को सही से सदुपयोग करना है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई विधि अपनानी है। रेनगन आजकल आता है, एक काफी दूर में सिंचाई कर देता है और उस पर अनुदान की व्यवस्थाएं भी मौजूद है। विभिन्न विभिन्न राज्यों में अलग अलग स्कीम्स है, सरकार आपके साथ खड़ी है, तो उसका आप फायदा लें। मल्चिंग कर सकते हैं खेतों में ताकि भाप बनकर मृदा की नमी उड़े नहीं, तो वो भी एक नमी संरक्षण का तरीका है। पूरे के पूरे गंगा सिंधु के मैदानों में जो धान की पराली को जला देते हैं वो मल्चिंग का बहुत ही उपयोगी तरीका हो सकता है। आपके खेत में जो उर्वरता है वो भी बढ़ेगी और मृदा नमी भाप बनकर नहीं उड़ेगी। और एक ये है कि फसल प्रणाली सही अपनाएं, कम पानी चाहने वाली किस्में और कम पानी चाहने वाली फसलों की बिजाई करें ताकि आप नमी संरक्षण में योगदान दे सकें।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे प्रमुख तकनीकियों में आपने बूंद बूंद सिंचाई की बात करी
0: जी,
2: स्प्रिंकलर फव्वारा विधि से भी हम सिंचाई करते हैं, तो कौन कौन सी हमें फसलें ऐसी चुननी चाहिए कि जिनमें ये विधियां काम करती हैं और किस प्रकार से किसान भाई इनकी सहायता ले सकते हैं?
0: जी, आजकल तो सभी फसलों में ड्रिप और स्प्रिंकलर इरीगेशन, जो बूंद बूंद सिंचाई और स्प्रिंकलर काम में आ रही है। धान जैसी फसल में भी बहुत सारे किसान अब ड्रिप सिंचाई की तरफ जा रहे हैं, सब सरफेस ड्रिप, पानी भरकर नहीं रखना है और सीधी बिजाई धान ज्यादा अच्छा है, जल संरक्षण होता है। यदि समय पर खरपतवारों का नियंत्रण कर लेते हैं आप, और कुछ जगह पर आयरन की कमी हो जाती है यदि सही पोषक तत्व प्रबंधन कर लेते हैं, तो निश्चित तौर से सीधी बिजाई वाले धान में 25-30% कम पानी में आप उतना ही उत्पादन ले सकते हैं। और सीधी बिजाई वाले धान का ये फायदा है कि जो जहरीली गैसें हम उत्सर्जित करते हैं
2: जी,
0: मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जो जहरीली मीथेन का जो एमिशन है वो सीधी बिजाई वाले धान में काफी कम होता है। ये एक अपना सकते हैं, नमी जो जल संरक्षण में तो साथ में इसकी मदद मिली ही है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको अपना सकते हैं। आजकल जो किस्म विकास है, जैसे पूसा संस्थान की पूसा बासमती 1979-1985 ऐसी किस्में हैं जो सीधी बिजाई वाले धान के लिए बड़ी उपयोगी है। ये हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप है, जिनमें इमेजतापायर नाम का एक हर्बिसाइड आता है, उसका स्प्रे करके वीड कंट्रोल में भी फायदेमंद रहता है और

0: उसमें सीधी बिजाई वाले धान में भी इसकी इसका लाभ लिया जा सकता है, तो नमी संरक्षण हो जाती है। और सरकार आजकल खेत बचाओ अभियान चला रही है, जिसमें आईसीएआर, केवीकेज और एक देश एक कृषि और एक टीम की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रयासरत है। तो सही से संतुलित पोषक तत्व तो प्रबंधन करें, मिट्टी में जैविक खादें हैं उनकी उनका उपयोग बड़ा कम हो गया है, तो वो जल धारण क्षमता होती है फसल की, जो मिट्टी की, वो बढ़ाती है। तो इन चीजों को यदि हम फसल प्रबंधन में समावेश करेंगे तो निश्चित तौर से हमारी जो जल धारण क्षमता है उसमें विकास होगा। सूखे की जो समस्या आती है, स्थिति आती है, तो लगातार पौधों को नमी मिलती रहती है।
1: जी साथियों, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, जिसके अंतर्गत आज बात हो रही है कि किस तरह से कृषि विकास के लिए जल संरक्षण की प्रभावी रणनीतियां बना सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए हमारे किसान मित्रों को। डॉक्टर आर एस बानाजी इस विषय पर सारी जानकारी हम

0: प्रबंधन में समावेश करेंगे तो निश्चित तौर से हमारी जो जल धारण क्षमता है उसमें विकास होगा। सूखे की जो समस्या आती है, स्थिति आती है, तो लगातार पौधों को नमी मिलती रहती है।
1: जी साथियों, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, जिसके अंतर्गत आज बात हो रही है कि किस तरह से कृषि विकास के लिए जल संरक्षण की प्रभावी रणनीति आप बना सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए हमारे किसान मित्रों को। डॉक्टर आर एस बाना जी इस विषय पर सारी जानकारी हम तक एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: साथ एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। आज बात चल रही है कि किस तरह से आप कृषि विकास के लिए जल संरक्षण की जो भी प्रभावी रणनीतियां हैं हमारे किसान में, तो उसे अपना सकते हैं, किस तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर आर एस बाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें चल रही है, आपने काफी कुछ बताया भी कि किस तरह से हमारे किसान मित्र जो कृषि विकास के लिए जो अगर चाहते हैं तो जल संरक्षण की तकनीक जो है उनको अपना सकते हैं, बहुत सी चीजें। डॉक्टर साहब, एक चीज और, जैविक खेती की अगर हम बात करते हैं, आपने कुछ बताया भी इसके बारे में, तो किस हद तक ये प्रभावी है जल संरक्षण को लेकर?
0: जी, जो जैविक उर्वरक हैं, उर्वरक नहीं कहूंगा, ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि जैविक खादें होती है वो, तो उनसे क्या होता है, उनका जो कणों का आकार होता है वो काफी छोटा होता है, मिट्टी के कणों के आकार से छोटा होता है। तो जैसे ही छोटे कणाकार की खाद आप मिट्टी में मिलाते हैं तो जो मिट्टी का जो पूरा सरफेस एरिया है, सतही क्षेत्र जिससे जल चिपक कर रह सकता है, वो बढ़ जाता है काफी ज्यादा। और छोटे कणों से जो मिट्टी जब चिपकती है तो मिट्टी के कणों का जो जुड़ने का जो एग्रीगेशन बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, वो अच्छा होता है। तो जो मृदा की भौतिक दशा है उसमें सुधार होता है। जैविक खादों और जैविक कृषि से, जैविक खादों से सभी प्रकार के पोषक तत्व और संतुलित मात्रा में मिलते हैं। जो इस समय समस्या आ रही है हमारे जो अत्यधिक उर्वरकों के उपयोग का, 100 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो आवश्यकता से काफी अधिक उर्वरक उपयोग करते हैं, वो सारी समस्या का समाधान जैविक खादों में निहित है। जो जलवायु परिवर्तन की समस्या आ रही है, 2070 तक देश को नेट जीरो एमिशन की तरफ जाना है और 2047 में विकसित भारत के लिए हम प्रयासरत हैं, उसमें जो जैविक खादें हैं वो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जहरीली गैसें हैं जो वायुमंडल को नुकसान करती है, उसमें तो कमी करती है, मृदा नमी को संरक्षित रखती है, फसलों का उत्पादन अच्छा करती है, और जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स की बात चल रही है उसमें कमी करती है, और जो किसानों की आय है उसको सुनिश्चित करती है। और एल नीनो जैसे वर्ष में जब वर्षा का असमान वितरण होने की संभावना बनी रहती है, तो ऐसी दशा में एक लचीलापन जो लाती है खेती में, यानी कि सूखा भी पड़ गया तो काफी दिन तक पौधों को नमी लगातार मिलती रहेगी, तो इसमें जैविक खादों की काफी योगदान है। और जैविक कृषि वाले किसान है उनको इन चीजों का नुकसान कम होता है। हमारे जो दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें हमने देखा है कि कीटों और रोगों का प्रकोप भी जैविक खेती वाले जो खेत हैं उनमें कम होता है, क्योंकि सभी प्रकार के पोषक तत्व और भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाओं में सुधार होता है, तो उस वजह से रोग और कीटों का भी प्रकोप कम होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए जान लेते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
3: हेलो
1: जी, नमस्कार सर।
3: हाँ नमस्कार मैम।
1: जी नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं और प्रश्न भी पूछिए।
3: मैं विकास बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी प्रश्न पूछिए अपना सर।
3: ये पूछा था, ये बोरिंग था पुराना वो हमारे वहाँ गांव में
1: जी,
3: उसको मतलब अब तो काम में नहीं आ रहा, पहले पानी था उसमें, अब तो क्या उसके माध्यम से उसको दोबारा वाटर रिचार्ज के माध्यम से दोबारा चालू कर सकते हैं क्या उसको?
0: जी
3: टेक्नोलॉजी है क्या?
0: जी जो पुराने बोरिंग है उसको एक तो ये रखें कि ढककर रखें, उनके

0: ढक्कन जरूर लगा दें, क्योंकि कई बार इसमें हादसे होने की संभावना बनी रहती है, परंतु वो वाटर रिचार्ज के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। यदि उसमें बिल्कुल पानी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से वाटर आ जाएगा, पर उसके आसपास आजकल तो ऐसी संरचनाएं बनती है और उस पर सरकार की का वो योगदान भी रहता है, तो जिससे कि पानी मिट्टी छनके नहीं जाए, आपका जो बोरिंग है पूरा भरे भी नहीं पर पानी हर साल जाता रहे, तो उसको एक वाटर रिचार्ज पॉइंट बना सकते हैं। और ये एक बड़ी क्रांतिकारी पहल हो सकती है, गांवों में बहुत सारे ऐसे बोरिंग हैं जो पड़े हैं और उनको वाटर रिचार्ज पॉइंट बनाएं और सावधानी पूर्वक बनाएं, किसी तरह के हादसे भी रुक जाएंगे और ये वाटर रिचार्ज के लिए भी बड़ा योगदान होगा। और जल संरक्षण के बहुत सारे योग जैसे रालेगण सिद्धि वाला उदाहरण है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे उदाहरण है जहां पे जल संरक्षण अपनाया, कृषि वानिकी साथ में करते गए तो जो जल स्तर है वो काफी ऊपर आया। जैसे पंजाब के गांवों में जल स्तर ज्यादातर जिलों में कम जा चुका है, साथ में जुड़े हुए हरियाणा वाले क्षेत्र हैं वहां पर भी जल स्तर विकराल रूप से नीचे जा रहा है, भूजल स्तर। तो कारण क्या है? जल संरक्षण के उपाय नहीं अपनाए, कृषि वानिकी हमने अपनाई नहीं और लगातार जल का दोहन करते रहे, धान गेहूं फसल प्रणाली, उसके अलावा फसल विविधीकरण हमने अपनाया नहीं। तो ऐसे में आपको फसल विविधीकरण अपनाना है, कम पानी चाहने वाली फसलों को तो लगाना ही है, साथ में जल संरक्षण की तकनीकें अपनाते हैं। फार्म पॉन्ड बनाने को लेकर कुछ किसान ऐसे सोचते हैं कि ये जमीन उतने क्षेत्र खराब हो जाएगा, पर आपका ये देखो ना उत्पादन भी तो बढ़ जाएगा, तो आप जो आपकी बची हुई खेत है उसका उत्पादन लगातार लेते रहेंगे, नहीं तो ये पानी आप जो भूजल है और ज्यादा जितना गहरा जा रहे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में उसमें सेलिनिटी की और जो हैवी मेटल्स की काफी समस्याएं देखने को मिल रही है, तो उन सारी समस्याओं से मुक्ति मिलकर आपको एक शुद्ध पानी फसलों को मिलेगा। और जब शुद्ध पानी बिना जो हैवी मेटल्स वाला पानी मिलेगा तो जो फसल की गुणवत्ता है उसमें भी सुधार होगा। तो इस तरह की जो तकनीकियां हैं और ये जो रिचार्ज है उसका तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हो सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। बहुत सारे ऐसे समरसेबल हैं या बोरिंग हैं जो गांव में बंद पड़े हुए हैं। लगातार आपसे बातचीत जारी रखेंगे जल संरक्षण के विषय में, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: जी, प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40

0: वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मित्रों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और बात चल रही है सतत कृषि विकास के लिए जल संरक्षण की प्रभावी रणनीतियां। डॉक्टर आर एस बाना हमारे साथ लगातार बने हुए हैं स्टूडियो में। जब बात जल संरक्षण की होती है तो विशेषतः हम जितनी भी बातों को करते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक साथ हो तो वैज्ञानिक अनुसंधान की जो सोच है वो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी होती है। कई बार डॉक्टर साहब देखते हैं कि सूखे की संभावना बन जाती है, किसान भाई बहन कहीं ना कहीं उसको लेके भय बना रहता है, तो इस सूखे की संभावना को लेके जो आकस्मिक फसल योजना है, किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन उसको लागू कर सकते हैं और क्या विशेष टिप्पणी आप इस पर करेंगे?
7: जी देखो, सूखे की संभावना, देश में 100 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पे सूखे की संभावना निरंतर बनी रहती है। करीब करीब हर बार वहां पे या हर 2 से 3 साल में सूखा की संभावना रहती है।
6: जी,
7: उन क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाएं बनी है, और उसका आपको यह ध्यान रखना है कि एक तो सूखा आता है शुरुआती अवस्था में, बीच में सूखा आ जाए तो क्या करें और अंत में सूखा आ जाए तो क्या करें, तो उसकी रणनीति किसान को पहले ही बना के रखनी है। शुरुआत में सूखा आ जाता है यानी कि मानसून में देरी हो सकती है आने में, तो उस दशा में आपको कम अवधि वाली किस्में और कम अवधि वाली फसलें लगानी है। मान लिया आपके क्षेत्र में जुलाई के महीने में अंत में जाके मानसून आता है या अगस्त में जाके मानसून आता है, तो उसके लिए हमारे पास ऐसी किस्में हैं जैसे मूंग की फसल है, उसमें पूसा विशाल किस्म है, विराट एक किस्म है, तो ये किस्में लगा सकते हैं। ऐसे ही मोट एक सूखा वाले क्षेत्रों के लिए एक अच्छी किस्म है, दलहनी फसल है, किस्म नहीं फसल है, RMO 40 है, और जो बहुत सारी मोट की किस्में हैं, काजरी जो हमारा संस्थान है ICAR का, और जो राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा विकसित कई सारी जड़िया, ज्वाला, जोबनेर से विकसित किस्में हैं, वो लगा सकते हैं। इसके अलावा अरहर की हमारी कम अवधि वाली किस्में हैं जैसे कि Pusa 16 है, वो आप देरी की अवस्था में बिजाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, मध्य में सूखा पड़ गया तो क्या करना है, बहुत ज्यादा प्लांट पॉपुलेशन है, पौधे ज्यादा हैं, तो उखाड़ कर वहीं मल्च या आवरण बना दें। यदि पहले बिजाई कर दी और फिर सूखा आ गया हो तो ये देखें कि कितना अंकुरण बचा है, यदि अंकुरण 50-60% या 70% से अधिक हो रखा है तो उन पौधों को बचाना है कैसे भी करके। जीवन रक्षक सिंचाई की अगर व्यवस्था हो सके तो वो करनी है, नहीं तो पोटेशियम उर्वरक का उपयोग करें ताकि जो सूखा की सहन करने की क्षमता है उसको बढ़ा देता है, और साथ ही जैविक खादों का उपयोग तो करना ही करना है। अंत में सूखा आ जाता है तो फिर उसको चारे के लिए काटने का ही एक उपाय बचता है, या फिर जैसे पूसा हाइड्रोजेल है, IRI ने विकसित किया है, वो यदि सूखा संभावना है इस बार तो बिजाई के समय ही आप जैसे DAP की साथ में उर्वरक देते हैं उस समय यदि हाइड्रोजेल डाल देते हैं तो वो क्या करता है, नमी की अवस्था में पानी को सोख लेता है और फिर धीरे धीरे फसल को रिलीज करता है। तो जो सूखे की स्थितियों में इस तरह से यदि योजनाबद्ध तरीके से हम खेती करेंगे तो आपको कोई समस्या का सामना है वो कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से रणनीति पूर्वक चलते हैं तो हम नुकसान को कम से कम कर सकते हैं।
8: डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि शुष्क खेती के बारे भी हमने सुना है, तो शुष्क खेती और अगर देखिए कि किस तरह से उससे जल संरक्षण की हम तरफ जा सकते हैं, तो इनको समझाइए आप।
7: जी, शुष्क खेती हमारे देश का लगभग 45% एरिया है जहां पे शुष्क खेती ही होती है, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, तो उन क्षेत्रों के लिए एक तो हमें किस्में

0: ऐसी चयन करनी चाहिए जो कम पानी में पककर तैयार हो जाए। जैसे कि
1: हम्म,
0: बाजरा की बात करें तो बाजरा की जो MPMH 17 और MPMH 21 किस्म है वो पश्चिमी राजस्थान वाले जो क्षेत्र हैं, शुष्क खेती वाले क्षेत्र हैं, उनके लिए संस्तुत किस्में हैं। हाइब्रिड किस्में वाला जो क्षेत्र है, जो जोन ए बोलते हैं, यानी कि पूर्वी राजस्थान और ये क्षेत्र हरियाणा का, तो उनके लिए जो संस्तुत किस्में हैं, जैसे
1: जी
0: HHB 67 इम्प्रूवड और ऐसी किस्मों का उपयोग करते
1: जल
0: हुए
1: संरक्षण
0: आप
1: में किस तरह से लाभकारी
0: जल संरक्षण में ब्रॉड बेड एंड फर्रो और मल्चिंग
1: है?
0: करके और जो सही प्लांट पॉपुलेशन रख के आप जो फसल है उसका उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आपने किस तरह से हमारे किसान मित्र कृषि विकास के लिए जल संरक्षण कर जो रणनीतियां उसे अपनाकर काफी कुछ कर सकते हैं, और इससे बहुत हमारे पूरे कहें पूरे भारत को बहुत एक फायदा होने वाला है, आर्थिक रूप से भी फायदा होगा और खेती उन्नत होगी तो हर किसी को फायदा होगा। डॉक्टर आरएस बानर्जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के
0: जी,
1: लिए।
0: नमस्कार।
1: साथ ही उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद भी आया होगा, साथ ही साथ इसका लाभ भी आप पूरा पूरा उठाएंगे। फिलहाल आपको

0: ले सकते हैं।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आपने किस तरह से हमारे किसान मित्र कृषि विकास के लिए जल संरक्षण कर जो रणनीतियां उसे अपनाकर काफी कुछ कर सकते हैं और इससे बहुत हमारे पूरे कहें पूरे भारत को बहुत एक फायदा होने वाला है, आर्थिक रूप से भी फायदा होगा और खेती उन्नत होगी तो हर किसी को फायदा होगा। डॉक्टर आर एस बनर्जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए।
0: नमस्कार।
1: साथ ही उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद भी आया होगा, साथ ही साथ इसका लाभ भी आप पूरा उठाएंगे। फिलहाल आपको

0: भगवती
1: नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा की 5 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले दिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर में उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुई। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विकास की यात्रा में समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे।
1: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की यात्रा पर रहेंगी। केंद्र सरकार वित्त वर्ष

के लिए अतिरिक्त दो सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और दोपहर का वक्त है, गर्मी काफी ज्यादा है, तो जब तक बहुत जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलें, जब निकलें तो ढेर सारा पानी पीकर या कुछ भी तरल पदार्थ लेकर ही निकलें, और अपना खूब ख्याल रखें। और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए आपके मन को भाने वाले प्यारे प्यारे गीत संगीत की ये महफिल, जिसका नाम है मन भावन, और मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। आप अपनी पसंद अपने संदेश के जरिए हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है fmgoldairdelhi@gmail.com, और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868867533। तो जनाब, बहुत सारे संदेश जो हमारे पुराने श्रोता हैं उनके हमारे पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला

गोरांश मायरा रेनू, ये कहते हैं कि कोई भी अपनी पसंद का नगमा आप हमें सुनवा दीजिए। तो चलिए जी, इनके साथ ही जुड़े हुए हैं कैलाश चंद जी कोटपुतली राजस्थान से, और साथ ही हमारे पास किशन वजनानी, नीलम स्वाति और किशु का रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से ये पैगाम आया हुआ है। और उसके अलावा हमारे पास बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन का भी पैगाम आया हुआ है। और तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, ये जुड़े हुए हैं शाहदरा बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमसे जुड़े हुए हैं। और सनावत से शेख मूसा मोहसिन का हमारे पास पैगाम आया हुआ है, और साथ ही हमारे पास गरिमा का नई दिल्ली से ये पैगाम आया हुआ है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव भी जुड़े हुए हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे पैगाम हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। और एक बीच में आपसे गुजारिश है कि आप लोग बार बार पैगाम ना भेजें, अगर आपका पैगाम शामिल हो गया है तो अपने दूसरे साथियों को भी मौका दें कि उनका भी पैगाम शामिल हो जाए। गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी का भी हमारे पास पैगाम आया हुआ है। तो चलिए जनाब, बहुत ही प्यारा सा नगमा फिल्म आपकी कसम से, फिल्म मेरा साया से मोहम्मद रफी की आवाज में आप सबके लिए।

तो जी हाँ जनाब, आपके बहुत सारे पैगाम हमारे सामने हैं और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे पास एक पैगाम आया हुआ है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष का ये पैगाम है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे पास ऊपर कोट मोहल्ला चौक खुंटी बुलंदशहर से ये पैगाम आया हुआ है, मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और तमाम अब्बासी परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है, कोशिश रहेगी और आगे बढ़ते हैं, आपकी कुछ और फरमाइशें हम शामिल कर लेते हैं। इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू देवांगन, नेहा जगदीश देवांगन जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे पास और भी पैगाम है, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओम सुरलकर का भी पैगाम आया हुआ है। और अहमद भाई फूल वाले, दुखना रानी, जूही इकबाल, इमरान अहमद, कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, ये सब तो जुड़े हुए हैं, छोटी बलिया करजत मुंबई से, और इनके अलावा कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से जुड़े हुए आमना नसरीन बागवान, आमना परी और राबिया मंताशा, आशु अहमद भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे पास रामगढ़ कैंट से ये पैगाम आया हुआ है, महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिकलानी, बबीता मिकलानी, सुभाष योगी, डब्बू बब्बू का भी ये पैगाम आया हुआ है। और छत्तीसगढ़ पलारी से जुड़े हुए हैं प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा भी हमारे साथ। और गांव चौहल्दा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद भारती, सूफिया नवाब बलीमारान से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक बहुत ही प्यारा सा नगमा आप लोगों की फरमाइश में से ही लिया है मैंने, फिल्म काला पत्थर है, लता जी और रफी साहब की आवाज़ में।

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आप सुन रहे मन भवन। मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। आपके जो पैगाम आ रहे हैं उनमें हमारे पास पैगाम आया है अनीता वर्मा जी का पीतमपुरा दिल्ली से, और इन्होंने एक फरमाइश भेजी है, फिल्म महुआ का गाना सुनना चाहती हैं। तो ये गाना हमने ले लिया है और कुछ पैगाम हम शामिल कर लेते हैं, उसके बाद ये गाना आप तक जरूर पहुंचेगा। और चाणक्य चौक गाजियाबाद से जुड़े हुए मनोहर लाल गांधी साहब, ये विजयनगर में ये जगह है, ये बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल भी जुड़े हुए हैं। और राठगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर, रामेकर परिवार के तमाम सदस्य जुड़े हुए हैं। और भी हमारे पास कई सारे पैगाम हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जुड़े हुए हैं, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी हमारे पास इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, अब आप जब अपना नाम लिखेंगे तो आपका पैगाम भी हम शामिल कर लेंगे। और भी कुछ पैगाम है हमारे सामने, तो हम सुधाकर राजे जाधव, ये ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से जुड़े हुए हैं, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित, वायाल कुमार, प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख भी हमारे से जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे जो पैगाम हमारे सामने हैं, ये है इम्तियाज अंसारी सहारनपुर से, और ये कह रहे हैं कि जी कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

मोनू पराशर अलीपुर दिल्ली से जुड़े हुए हैं और इन्होंने हमें एक फरमाइश भेजी है। हम भी कोशिश में हैं कि आप सभी लोगों की फरमाइश पूरी करें। और बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिश्ता मोहम्मद नबीस, पलक लुबना और यश मंसूरी जुड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और दिग्दर्शन गौड़ शोभापुर मेरठ कैंट से जुड़े हुए, कविता, राधा नामदेव, रानी झा, संजय ढींगिया, अनिल जैन, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। और खयाला से जुड़े हुए हैं राजेश कुमार, मनीष कुमार, उमेश कुमार, विष्णु गार्डन से भी जुड़े हुए हैं ये लोग, सोनित कुमार भी हैं इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो आप तक आपका वो नगमा पहुंचा देते हैं, रफी साहब की आवाज में, मखमली आवाज है इनकी, और फिल्म है महुआ आप सबके लिए।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं हूँ आपके साथ शिव प्रकाश और आप सुन रहे हैं मन भावन। आपके नगमे, आपकी फरमाइशें हम शामिल कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। और हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप का वो है 9868686853 और हमारा जो ईमेल का पता है वो है fmgoldaardelhi@gmail.com। आपके बहुत सारे पैगाम हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं और एक पैगाम हमारे सामने जो है, जो हमने इनकी पसंद का गाना भी ले लिया है, यह है मजनू का टीला दिल्ली से। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक ये जुड़े हुए हैं। इन्होंने शबनम फिल्म का जो गाना सुनना चाहा है वो हमने ले लिया है। और हमारे पास बिसाऊ राजस्थान से दिनेश राज कुमार, विजय कुमार और पंकज का ये संदेश आया हुआ है। इन्होंने फरमाइश तो नहीं भेजी मगर इनका संदेश जरूर हमारे पास था। धनौरा तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मोहम्मद यूनुस खत्री और सादिक खत्री, अयूब खत्री और यूसुफ खत्री भी जुड़े हुए हैं। चीपा कॉलोनी खांडवा से आप लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

और कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास मेल आई हुई है विष्णु गार्डन दिल्ली से, ये जुड़े हुए हैं नईम खान, अकरम, निसार, सारुन भाई, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकाश बोरगांवकर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से जुड़े हुए हैं, साथ इनके हैं सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम, सदा नंद, विराज, स्वीट अंशुमन, बेबी ओवी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही ये लिखते हैं जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी रूपेश जी। और अनिल मोहन का भी हमारे पास पैगाम आया हुआ है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही और भी कुछ पैगाम है लेकिन पहले नगमा रफी साहब की आवाज में आप सबके लिए।

0: शिखर।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, आप सुन रहे हैं मनभावन। और अगला जो नगमा हम ले लिया है हमने वो है नाइट इन लंदन का। जी हाँ, बहुत ही प्यारा ये नगमा है और इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी फरमाइशें हैं। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है। मॉडल टाउन करनाल से हमारे पास पंकज शर्मा जी का ये पैगाम आया है। उनके साथ सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, जग्गी दुआ, प्रेमलता दुआ भी शामिल हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और साथ ही हमारे पास एक पैगाम आया हुआ है मोताला बाजार से। सोहेल शेख, शेख वजीर, शेख शगीर और बबलू ठेकेदार भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरमीत सिंह मीता जुड़े हुए हैं साउथ एक्सटेंशन से। बहुत इनको कार्यक्रम पसंद आ रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे पैगाम

उनमें गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार, सारिका सुतार भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है, जरूर हम कोशिश करेंगे आप लोगों की फरमाइश आप तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और हरप्रीत कौर भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और साथ ही हमारे पास दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का रिंगणी छत्तीसगढ़ से भी ये पैगाम आया हुआ है। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो हम उनके पैगाम शामिल करना ज़रूर चाहेंगे। हमारे पास रागिनी तिवारी का भी छत्तीसगढ़ से ये पैगाम आया हुआ है और इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार और रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा जी, इन तमाम लोगों ने हमें संदेश भेजा है। और उत्तम नगर से जॉन सीना, बी आर टेलर, सुमन, सरिता भी जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है, जरूर हम कोशिश करेंगे। और गौरी शंकर जी जुड़े हुए हैं नांगलोई से और इनकी भी एक फरमाइश है, जरूर कोशिश होगी। और भी बहुत सारे पैगाम, अलीगढ़ से हमारे पास सलीम अख्तर, रेशमा बेगम का भी पैगाम आया हुआ है। चलिए तो नाइट इन लंदन का ये बहुत ही प्यारा सनगमा रफी साहब की आवाज में आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड पर।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों।

जुड़े हुए हैं, नीलोफर फातिमा भी जुड़ी हुई हैं, और नसरीन खान, वसीम खान और मुबीना खान तलवार गली खंडवा मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों के बहुत सारे पैगाम और भी हमारे पास हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, इनके साथ एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे पास मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई, चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला, सतीश अनेजा भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हमारे पास सुरेश नारंग जी का भी एक संदेश आया हुआ है, इनके साथ आशा नारंग भी हैं, सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। चलिए तो अब हम चलना चाहेंगे, और चलते चलते ये नगमा जो फिल्म धरती कहे पुकार के से है, और उसमें जो स्वर है वो मुकेश जी का है, और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आप अपना ख्याल रखें इस मौसम में, अपनों का भी ख्याल रखें। बने रहें आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। नमस्कार।

भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण से होगा। ये भाषण भारत की तेजी से बढ़ती वैश्विक डिजिटल उपस्थिति पर केंद्रित होगा। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप होगा। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा की 5 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले दिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति बैतूल में आध्यात्मिक

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने

0: के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और अगला जो गाना हम आपके लिए लेकर आए फिल्म आंधी से है वो, और स्वर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार का। जी हाँ, वो नगमा हम आप तक पहले ही पहुंचा चुके हैं। अगला नगमा है, फिल्म है आंसू बन गए फूल, स्वर है आशा भोसले और किशोर कुमार का।

0: जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। अनुसंधान अधिकारी यूनानी, कुल पद 16 हैं, जिनमें बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं। अनुसंधान अधिकारी पैथोलॉजी 2 पद, अनुसंधान अधिकारी फिजियोलॉजी 1 पद, सहायक अनुसंधान अधिकारी 1 पद, सहायक अनुसंधान अधिकारी वनस्पति विज्ञान 2 पद, स्टाफ नर्स 7 पद, जिसमें बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं। लेखाधिकारी मुख्यालय 1 पद, अनुसंधान सहायक रसायन विज्ञान 2 पद, बैकलॉग रिक्तियों समेत अनुसंधान सहायक वनस्पति विज्ञान 3 पद, अन्वेषक सांख्यिकी 3 पद, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट 12 पद, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक 3 पद, प्रूफ रीडर 1 पद, हिंदी सहायक 2 पद, फार्मासिस्ट 6 पद, सोशल वर्कर 2 पद, रेडियोग्राफर 1 पद, कंपाउंडर 3 पद, आशुलिपिक ग्रेड 3 7 पद, उच्च श्रेणी लिपिक UDC 31 पद, निम्न श्रेणी लिपिक LDC 26 पद, स्टाफ कार चालक 4 पद और मल्टीटास्किंग स्टाफ 43 पद, जिसमें बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद की वेबसाइट www.ccrum.res.in। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक रहेगी। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उप सलाहकार औषधीय पादप, सहायक सलाहकार वनस्पति विज्ञान, वित्त एवं प्रशासनिक अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी वनस्पति विज्ञान, सहायक अनुसंधान अधिकारी और लेखाकार, इन सभी पदों के लिए एक एक रिक्ति उपलब्ध है। पात्रता मानदंड प्रारूप आदि अन्य जानकारियों के लिए देखिए आयुष मंत्रालय की वेबसाइट ayush.gov.in। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026। कैंसर उपचार अनुसंधान एवं शिक्षा का उन्नत केंद्र टाटा मेमोरियल सेंटर नवी मुंबई इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रोफेसर रेडियो डायग्नोसिस, सहायक प्रोफेसर पैथोलॉजी, सहायक प्रोफेसर हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, सहायक प्रोफेसर पैलिएटिव मेडिसिन, सहायक प्रोफेसर एनेस्थीसियोलॉजी, सहायक प्रोफेसर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, सहायक प्रोफेसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सहायक प्रोफेसर इंटेंसिविस्ट क्रिटिकल केयर, सहायक प्रोफेसर प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, वैज्ञानिक अधिकारी ट्रांसलेशनल कैंसर रिसर्च, वैज्ञानिक अधिकारी कैंसर बायोलॉजी, मेडिकल फिजिसिस्ट ई, वैज्ञानिक अधिकारी डी बायोस्टेटिस्टिक्स, वैज्ञानिक अधिकारी डी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, वैज्ञानिक अधिकारी सी सेंटर फॉर कैंसर एपिडेमियोलॉजी, वैज्ञानिक अधिकारी बायोस्टेटिस्टिक्स, वैज्ञानिक अधिकारी बी न्यूक्लियर मेडिसिन, वैज्ञानिक सहायक बी CRI सुविधाएं, तकनीशियन ए CRI लैब्स। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए टाटा मेमोरियल सेंटर की वेबसाइट actrec.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार करिश्मा, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, करिश्मा हैज टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो। ऑफकोर्स, ताजा तरीन खबरों के साथ हम लोग देश की परिक्रमा पे निकलेंगे टू सी विच इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर देयर विद आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi is holding a series of high-level meetings with leading French president leaders in Paris today, also to attend Viva Tech Summit this evening.
0: केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी।
1: कैलकाटा हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे वेस्ट बंगाल स्पीकर्स डिसीजन टू अपॉइंट ऋतुव्रत बैनर्जी एज लीडर ऑफ अपोजिशन।
0: अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय।
1: एंड इन हॉकी, इंडिया बीट यूरुग्वाई 3-2, एडवांसेस टू सेमीफाइनल्स इन FIH वुमेन्स नेशंस कप इन न्यूजीलैंड। And now it's time for our very special segment, Dateline India, जिससे हम लोग परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। और आज तो इतना इंटरेस्टिंग और नॉस्टैल्जिक टॉपिक है। स्कूल में सबसे ज्यादा, इफ यू रिमेम्बर करिश्मा, व्हाट वाज दैट वन एनुअल इवेंट दैट वी ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू?
0: पिकनिक।
1: ऑफकोर्स, मतलब पिकनिक के नाम से ही, यू नो, जो अपने जहन में, यू कैन से द विजुअल्स दैट यू नो इट इवोक्स, यू नो, बास्केट्स विद लॉट्स ऑफ गुडीज एंड सैंडविचेस एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू ईट एंड अ प्लेस वेयर यू कैन जस्ट हैव फन।
0: मुझे आज भी याद है वो एक्साइटमेंट की अगले दिन पिकनिक में जाना होता था और मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी कि कब जल्दी सुबह हो जाए और मैं स्कूल जाऊं।
1: एब्सोल्युटली। और सब लोग जो है एक दो दिन पहले से जो है स्कूल में, यू नो, फ्रेंड्स हम लोग तैयारी शुरू कर देते, तुम क्या लाओगी, एवरीबडी विल डच, ओके यू विल गेट द नूडल्स, ओके यू विल गेट दिस, सो दैट व्हाट वंडरफुल डेज। एंड इवन टुडे व्हेन वी गो आउट फॉर पिकनिक, यू नो, विद आवर फैमिली, आई थिंक नॉट जस्ट द किड्स, एवरीबडी एंजॉयज पिकनिक्स। So it's very important to remember to have a day, at least if not at least, you know, every month, then at least 2-3 picnics should be there in a year, you can say. And why we are talking about picnics, because today is International Picnic Day.

समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार

0: And well, yes, we're celebrating something wonderfully simple, joyful, yet very heartwarming. इंटरनेशनल पिकनिक डे.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और हर साल 18 जून को यानी आज दुनिया भर में लोग अपनी व्यस्त दिनचर्या से ब्रेक लेते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ बाहर समय बिताने का आनंद लेते हैं. और सच कहूं तो पिकनिक किसे पसंद नहीं होती, हर किसी को.
0: एब्सोल्युटली. और जैसे कि अभी आप कह रही थी जब गाना बज रहा था कि दिल्ली वालों का पिकनिक कहां होता है,
1: इंडिया गेट. हम कैसे भूल सकते हैं.
0: एब्सोल्युटली. सो समटाइम्स व्हेन वी यू नो when we drive to office, sometimes I think that, you know, even din mein bhi aap dekhiye.

0: गेट हम कैसे भूल सकते हैं.
1: एब्सोल्युटली. सो समटाइम्स व्हेन वी यू नो व्हेन वी ड्राइव टू ऑफिस समटाइम्स आई थिंक दैट यू नो इवन दिन में भी आप देखिए
0: वहां पे लोग रहते हैं
1: इंडिया गेट पे जो पिकनिकर्स होते हैं या टूरिस्ट होते हैं मतलब शदीद धूप में भी
0: बैठे होते हैं. बिल्कुल सही कह रही हैं आप.
1: या सो वेल नो फैंसी प्लान्स नो एक्सपेंसिव टिकट्स ओनली सम डिलिशियस स्नैक्स गुड कंपनी एंड परहैप्स अ लिटिल सनशाइन ऑफकोर्स इन विंटर्स एंड यू नो इन टुडेज फास्ट based world we're always rushing from one task to another and sometimes all we need is a peaceful afternoon or an evening under a tree doing nothing but just relaxing with nature and then of course sharing stories and laughter with our loved ones.
0: और यह दिन लोगों को अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर परिवार मित्रों और प्रियजनों के साथ प्रकृति के बीच समय बिताने के लिए भी कहीं न कहीं प्रेरित करता है. वैसे तो हम घरों के अंदर ही ज्यादातर रहते हैं लेकिन ऐसे दिन होने भी जरूरी होते हैं जब आप अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ बाहर जाते हैं और आधुनिक जीवन की भागदौड़ बढ़ते तनाव और डिजिटल उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता के दौर में यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन का वास्तविक आनंद केवल काम और जिम्मेदारियों में नहीं है बल्कि अपनों के साथ बिताए गए उन सुखद पलों में छिपा हुआ है जो जीवन भर याद बन जाते हैं.
1: एब्सोल्युटली करिश्मा दैट इज सो ट्रू. इन फैक्ट आई एम श्योर दैट नाउ इवन आवर लिसनर्स वुड बी रिमेम्बरिंग देयर पिकनिक मेमोरीज यू नो एज वी आर टॉकिंग एंड जस्ट यू नो ask yourself was it a family outing in a park or school picnic a beach picnic with friends or maybe a spontaneous road trip what's the one food item that is a must be in your picnic basket aapki picnic basket mein karishma kya wo must item rehta hai khane ka
0: वैसे बहुत सारी चीजें होती है लेकिन मेरे लिए तो सैंडविच सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि इजी होता है बनाना और खाना भी
1: इजी होता है
0: तो ये आसान और स्वादिष्ट होते हैं और सबके साथ शेयर करने में भी एकदम सही रहते हैं.
1: दैट्स राइट बट दीज डेज यू नो चिल्ड्रन हैव सच ह्यूज डिमांड्स. ओ वी वांट पास्ता आल्सो एंड व्हाइट सॉस पास्ता नॉट द हम लोग तो मैकरोनी खा के जिसमें इंडियन स्टाइल से यू नो हल्दी भी डाल देते थे और प्याज भी डाल देते थे बट दीज डेज किड्स ओ माई गॉड दे वॉन्ट टिपिकल इटालियन पास्ता.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: सो येस ऑफ कोर्स फूड चॉइसेस हैव ऑल्सो चेंज बट नॉन द लेस वॉट इज नॉट चेंज इज द एक्साइटमेंट दैट कम्स विद पिकनिक एंड talking about sandwiches that's my favorite choice also because of course one reason is ki जल्दी बन जाते हैं एंड वहां पे खाने में कोई मेसीनेस नहीं होती है.
0: बिल्कुल
1: सूखी सूखी चीज से आप खा लीजिए. ऑफ कोर्स इट्स फिलिंग ऑल्सो but nothing you know say you know what we say is that you know we take a lot of drinks also many people who don't like to probably you know take carbonated drinks because there are kids also so we all remember ki hum log jo hai neebu ke sharbat lemonades bana ke le jate the you know fresh fruits le jate the and any seasonal fruit aur aaj kal to garmiyan hain agar aap sham ko kahin for example at least Delhi people we in the evenings for example go to either Lodhi gardens or Sundar nursery which is quite close to our place and you know just to take some you know a bowl of fresh mangoes I think that's the best.
0: बिल्कुल. और आजकल के टाइम में जहाँ बच्चों के लिए ज्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज भी नहीं होती हैं ऐसे में कहीं ना कहीं पिकनिक एक अच्छा टाइम उनके लिए हो सकता है और शायद सबको ही अपने बच्चों को कहीं जैसा आप कह रहे थे कि महीने में या दो महीने में एक दो बार तो ले जाना ही चाहिए. और अगर श्रोताओं देखा जाए तो पिकनिक की जो परंपरा है वो सदियों पुरानी मानी जाती है. माना जाता है कि पिकनिक शब्द फ्रांसीसी शब्द पीके निक से निकला है जिसका अर्थ होता है ऐसा सामूहिक भोजन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ योगदान देता है. और समय के साथ यह परंपरा विभिन्न देशों में लोकप्रिय होती गई और सामूहिक मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई.
1: दैट्स राइट. एंड यू नो पिकनिक के लिए हम लोग को कोई बहुत ग्रैंड प्लान्स बनाने की जरूरत नहीं होती है बिकॉज यू नो वी ऑल नो दैट समटाइम्स द things that we plan for they never really happen so even just you know on a weekend you can just randomly decide that we're going to spend the evening or the afternoon of in the winter sun outside and well as we celebrate international picnic day let's talk about why picnics are actually much more than just eating outdoors. Picnics are all about creating moments moments that bring people closer. And sometimes when, you know, the same family members, when we are in the within the walls of our house, to hum log sirf ghar ki zimmedariyon ki ek dusre se baat kar rahe hote hain. Aap notice kijiye, you know, khana pak gaya, khana kha liya, this and that, ye le aaye saman. But the moment you step out on a picnic, then you start talking about, you know, things that really

0: वी आर इन द विद इन द वॉल्स ऑफ अ हाउस, तो हम लोग सिर्फ घर की जिम्मेदारियों की एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं. आप नोटिस कीजिए,
1: बिल्कुल,
0: यू नो, खाना पक गया, खाना खा लिया, दिस एंड दैट, ये ले आए सामान, बट द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑन अ पिकनिक देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू नो थिंग्स दैट रियली गिव यू अ लॉट ऑफ यू कैन से एंजॉयमेंट. यू नो अपने स्पाउस से भी आप कई बार जो है घर की चार
1: और बहुत सारी चीजें ऐसी याद आती हैं जो आपने पहले की होती है और अपने फैमिली मेंबर के साथ वो टाइम स्पेंड किया होता है और जब आप वापस उससे शेयर करते हैं, बात करते हैं, वो मोमेंट तो शायद ही घर के अंदर कभी मिले.
0: एब्सोल्युटली. एंड दीस डेज आई डू रिमेम्बर एज अ चाइल्ड वी यूज्ड टू डू दैट एंड ऑल एवरी चाइल्ड डज दैट कहीं भी पिकनिक पे जहां पे भी ग्रास होती है और स्लोप्स होती है तो वो जो रोल

पोली होती है खिड़की. आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव डन दैट एंड यू वोंट लीव. इवन आई डू इट स्टिल, यू नो, द मोमेंट आई सी अ ग्रासी स्लोप आई फील टेम्प्टेड टू रोल डाउन. So those are small moments of joy, and whether it's family, friends, colleagues, just sharing a picnic helps strengthen, you know, the bonds that we have and also create memories that last a lifetime. Let's be honest, when was the last time that you actually sat under the open sky away from social media?

0: आदेशों का खुले तौर पर उल्लंघन किया और जिले के प्रशासक कैप्टन फोर्टुनातो मिरांडा को फटकार लगाई।
1: गोवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हुए लोहिया ने गोवा वासियों को एक खुला पत्र लिखा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन का उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता हासिल करना था, लेकिन जिन तरीकों का पालन किया जाना था वे जन जागरण के थे।
0: लोहिया ने भारतीयों का आह्वान किया कि वे स्वतंत्रता की लड़ाई में गोवा के भाइयों की मदद

इसके साथ ही आज महान धावक मिल्खा सिंह की भी पुण्यतिथि है और उन्हें पूरी दुनिया में फ्लाइंग स्टिक के नाम से जाना जाता था और वे कॉमनवेल्थ गेमों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने थे। इसके अलावा उन्होंने एशियाई खेलों में भी कई स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया था।

मिल्खा सिंह को उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। और श्रोताओं, इसी के साथ अब समय हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए हम दोनों को, करिश्मा और सायरा को। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए पेरिस में फ्रांस के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। श्री मोदी शाम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडल है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के सेंट गोबेन कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोएद वजीन से मुलाकात की। बैठक में विनिर्माण सामग्री और निर्माण क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत में सेंट गोबेन की मजबूत उपस्थिति और निवेश देश के युवाओं के लिए अवसर सृजित कर रहे हैं। श्री मोदी ने लॉजिस्टिक्स कंपनी सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोडल्फ सात से भी मुलाकात की। इस दौरान समुद्री परिवहन, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। श्री मोदी ने भारत में ग्रुप की मजबूत और बढ़ती उपस्थिति का उल्लेख किया। फ्रांस में भवन निर्माण की प्रमुख कंपनी सेंट गोबेन ने कहा है कि भारत उसके लिए महत्वपूर्ण विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बन रहा है। पेरिस में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोएद बजीन ने कहा कि चेन्नई के पास कंपनी की एक बड़ी विनिर्माण इकाई न केवल घरेलू मांग के साथ ही खाड़ी देशों, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया को भी निर्यात करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता से काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,317 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है। पिछले तीन दिनों में 47 नाविक वापस आए हैं।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 22 और 23 जून को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च प्रतिनिधियों की बैठक में शामिल होंगे। ये दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर हो रहा है। भारत 2026 में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय के अंतर्गत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 9:30 ग्रुप ए के मुकाबले में अमेरिका के अटलांटा में चेकिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। लॉस एंजलिस में रात्रि 12:30 से स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से होगा। आज सुबह कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान पर 3-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, यूं ही गाते गुनगुनाते ये सफर चलता रहे और आपका भी सफर चलता रहे और हमारा भी चलता रहे। और इस सफर पे एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं शिव प्रकाश। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। पहला नगमा जो हमने आपके लिए लिया है वो फिल्म है साजन, 1991 की एक बेहद सुपरहिट फिल्म। इस फिल्म में जो मुख्य किरदार था वो था संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सलमान खान का, और फिल्म के निर्देशक थे लॉरेंस डिसूजा। फिल्म में संगीत था नदीम श्रवण का और फिल्म बहुत ही, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक सुपरहिट फिल्म थी, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने खासा कमाल दिखाया था और एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, एक प्रेम त्रिकोण की ये कहानी थी और एक अच्छी फिल्म जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म का संगीत, फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे और उस दौर में काफी गाए गुनगुनाए गए और आज भी लोगों के दिलों पर इनकी एक अमिट छाप है। स्वर है SP बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक का।

और आज भी लोगों के दिलों पर इनकी एक अमिट छाप है। स्वर है SP बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक का।

चैनल 100.1 MHz पे और आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते, मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। अगला जो ट्रैक हमने लिया है वो फिल्म है आशिकी। 1990 की ये फिल्म बेहद सुपरहिट रही और बॉक्स ऑफिस का जलवा ये रहा कि लगभग 30 लाख रुपए में फिल्म बनी थी और 5 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाए। उस दौर में कितनी बड़ी राशि ये थी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। महेश भट्ट साहब इसके निर्देशक और

0: is one of the most sacred pilgrimages for Hindus, Buddhists, Jains, and followers of the Bon faith. Situated in Tibet, Mount Kailash is revered as the abode of Lord Shiva, while Lake Mansarovar is regarded as a holy site for spiritual purification. The pilgrimage involves a challenging high-altitude journey, including the revered Kailash Parikrama. The yatra is conducted through routes such as Nathula in Sikkim and Lipulekh Pass in Uttarakhand, requiring physical fitness, careful preparation and proper acclimatization. Our Gangtok correspondent Dili Ramdulal brings us the special report on the Kailash Mansarovar Yatra 2026.
1: The first batch of pilgrims undertaking the Kailash Mansarovar Yatra 2026 arrive in Gangtok ahead of their onward journey to Kailash Mansarovar via Nathula Pass on June 20. The pilgrims were accorded a warm welcome at a local hotel by Sikkim Tourism Development Corporation STDC Chairman Lukendra Rasaili and Deputy General Manager Amit Kapil Chetri. The first batch comprises 44 pilgrims, including 2 liaison officers and 1 medical officer. The group consists of 32 male and 12 female pilgrims from various states across country, including Bihar, Haryana, Rajasthan, Maharashtra, Delhi, Punjab, Tamil Nadu, Karnataka, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Odisha. Among the pilgrims is Sarvagya Mina from Jaipur, who expressed his happiness at being part of the Kailash Mansarovar Yatra 2026. Traveling with his mother, he lauded the Sikkim Tourism Development Corporation and the Government of India for the excellent arrangement and seamless coordination for the long-awaited spiritual journey.
2: My name is Sarvagya Mina, and by the grace of God, I this year Kailash Mansarovar Yatra 2026 is that I have come with my mother to this yatra. इस यात्रा पे मतलब जाने का मेरा विचार पिछले 5-6 साल से चल रहा था, बट परिस्थिति बस ये यात्रा रुकी हुई थी, और जैसे ही इसका लास्ट ईयर से वापस यात्रा शुरू हुई तो लास्ट ईयर अप्लाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया था. देन अगेन फिर मैंने इस साल फिर प्रयत्न किया और फाइनली भोलेनाथ की कृपा से इस बार यात्रा एमईए के थ्रू हमने अप्लाई किया था, और उसी के थ्रू हम दोनों का सिलेक्शन मेरी मदर का और मेरा एक साथ हुआ है. तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि एक ही बार में और इतना मतलब सिर्फ दूसरे ही अटेम्प्ट में मतलब हम दोनों को एक साथ जाने का मौका मिला, और उससे भी बेहतरीन बात यह थी कि हम लोगों ने एमईए के थ्रू जाने का विचार किया और जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ. क्योंकि जो अब तक की व्यवस्था रही है उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि इससे बेस्ट इस यात्रा के लिए और कोई भी अगर किसी और एजेंसी के थ्रू हम जाने का विचार करते हैं तो इससे बेहतर नहीं हो सकता जो भी अरेंजमेंट है. राइट फ्रॉम द डे वी चेक्ड इन कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद में, उस दिन से लेकर 5 दिन तक इसके बाद में जो भी फॉर्मेलिटीज हुई, मेडिकल हुआ, हम लोगों का स्टे था, वीजा वाला प्रोसीजर था, और भी जो इससे यात्रा से रिलेटेड जो पिछले मतलब 5 दिनों में जो प्रोसीजर हुआ है वो इतना स्ट्रीमलाइंड वे में हुआ है कि मैं समझता हूँ कि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता. कल भी हम लोग जब आके रुके तो जो मिनिस्ट्री की तरफ से जो सहयोग रहा, सिक्किम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो सहयोग रहा, तो वो बिल्कुल इम्पेकेबल और अनमैच्ड है. और मैं आशा करता हूँ कि आगे की यात्रा भी इसी तरीके से हम लोगों की बड़ी अच्छी रहेगी, और यात्रा करके हम लोग सब सकुशल वापसी. पूरा जो बैच है 48 लोगों का, जिसमें हमारे 2 लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं और 4 स्टाफ है, कुक्स एंड एक डॉक्टर, तो मैं आशा करता हूँ सभी लोग हम सकुशल वापस अच्छे से भोलेनाथ के दर्शन करके लौटेंगे.
1: एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, the pilgrims will undergo a 4-day acclimatization schedule in Gangtok 15 mile and Serthang to prepare for the high altitude condition of the pilgrims. Following the acclimatization period, the group will proceed on June 20 through Yansei, a key transit point for pilgrim traveling to Kailash Mansarovar via Nathula Pass. Officials of the Sikkim Tourism Development Corporation and personnel of the Indo-Tibetan Border Police were also present to welcome the pilgrims. With Moinak Chatterjee, Dili Ramdulal, Akashvani News, Gangtok for Northeast Diary.
0: And that brings us to the close of the edition of Northeast Diary. Join us again next week for more inspiring stories from this enchanting part of India. Until then, goodbye and take good care of yourself.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार,

मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
1: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
3: रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया।

0: है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संविदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi today held a series of high-level meetings with leading French business leaders in Paris as part of efforts to deepen India-France economic and industrial cooperation. Speaking to Akashvani after the meetings, top executives highlighted the growing opportunities in India and announced plans for deeper engagement with the country. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that discussions focusing on manufacturing, artificial intelligence, sustainability and maritime infrastructure.
3: Saint-Gobain chairman and CEO Benoît Bazin said India is emerging as a major manufacturing and export hub for the Asia-Pacific region. He highlighted the company's investment in low-carbon technologies and energy-efficient building solutions to support India's net zero goals. Mistral AI CEO Arthur Mensch said the company is keen to strengthen support for Indian languages, expand AI research partnerships and explore greater collaboration on sovereign AI. He also indicated plans to expand the company's presence in India. CMS CGM Chairman and CEO Rodolphe Sade said India is rapidly developing as a hub for green shipbuilding. He welcomed company's decision to build 6 LNG-powered vessels in partnership with Indian shipyards and said discussions with the Prime Minister also covered logistics, ship recycling and deep seaport development. The meetings underscored growing economic and technology cooperation between India and France. This is Mahesh Sopre, Akashvani News, Paris, France.
2: The Prime Minister also met CEO of Alstom, Martin Sean. In a social media post, the Ministry of External Affairs said that the discussions between them focused on opportunities in mobility and railway modernization. Prime Minister Narendra Modi is attending the Viva Tech 2026 alongside French President Emmanuel Macron this evening. He will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. We now go over live to listen to the Prime Minister's address.
4: For physical documents in India anymore, such as your driving license or vehicle registration certificate. Another example is the Gati Shakti platform. Thanks to technology, we have integrated more than 1,600 geographic data layers on a single GI-based map. We have created an integrated, data-driven, whole-of-government planning platform for infrastructure.
2: The Viva Tech Summit is Europe's largest technology and startup event, where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation ecosystem and technological advancements. The Prime Minister is also scheduled to address members of the Indian community.

वो गीत चाहे कितने भी पुराने हो जाएं, लेकिन सदा मन में समाए रहते हैं, यानी सदाबहार गीत। सदाबहार गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर और मैं हूं आपके साथ रजनी। शुरुआत करते हैं लाल पत्थर के गीत के साथ, आवाज है किशोर कुमार की।

इस लोकप्रिय गीत के साथ विराम देते हैं आज के सदाबहार गीत को। रजनी को दीजिए इजाजत, कुछ ही देर में सुन सकते हैं आप संस्कृत में समाचार।

रात्रौ सार्धद्वादशवादने ग्रुप बी क्रीडायां बोस्निया हर्जेगोविना दले सम्मुखी भवतः। फीफा विश्वचषक स्पर्धायां कोलंबिया देशस्य विजयः इति वार्ताः।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. रोज की तरह आज भी हम आपके लिए देश विदेश की खबरों को लेकर हाजिर हैं. प्रमुख समाचारों का हम विश्लेषण भी करेंगे. श्रोताओं, खास खास खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए जाने हेडलाइंस.
0: Prime Minister Narendra Modi addresses VivaTech 2026 summit in Paris, highlights India's rapid technology-driven transformation. Benchmark domestic stock market indices rise, Sensex adds over 250 points, Nifty settles above 24,100, and global crude oil prices decline.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में वीवा टेक 2026 को संबोधित करते हुए भारत में तेजी से हो रहे टेक्नोलॉजी आधारित बदलावों पर जोर दिया. घरेलू शेयर बाजार में लगातार पांचवें दिन बढ़त, सेंसेक्स 250 अंक से अधिक बढ़ा, निफ्टी 24,100 के ऊपर बंद हुआ, और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट.

0: pile. We generate maximum data here. Then we need energy, huge amount of energy for data centers. There also Prime Minister talked about renewable energy, nuclear energy, because the data centers are energy guzzlers. So we have an opportunity to participate in the entire AI revolution in terms of our contribution for data centers, for energy, and for generating the data. And but we must ensure that our data is not taken for granted. We need to protect our data and ensure that we get our due, because we can't have a situation where our data is used and then we are on the fringes. No, we don't want to do that.
1: Well, an easier way to explain how AI is driving decision-making is the example of healthcare, which the government has shown that from diagnosis onwards, the decision taken by doctors in terms of what treatment to give to their patients is the best example of how AI is benefiting patients and the citizens of the country. Healthcare is also another sector where there are real tangible benefits for people because of artificial intelligence.
0: Sure, sure. Healthcare is very important, but the entire governance architecture, the entire governance architecture, entire delivery system, and you name it. But we got to be right in the core of it. That's the message that the Prime Minister delivered.
2: Prakash, आपने बताया कि आपने कहा कि entire government structure में AI किस तरीके से reform लेकर के आएगा, और अर्जुन ने अभी healthcare को के क्षेत्र को छू करके सवाल भी पूछा. तो इस तरीके से विकसित भारत का जो हमारा स्वप्न है, जो हमारी परिकल्पना है, प्रधानमंत्री की जो परिकल्पना है, उसको हम किस तरीके से, कितने बेहतरीन होकर के हम उसे छू पाएंगे, कैसे हम उसे पा पाएंगे?
0: हमको AI के जो आर्किटेक्चर में टॉप पे रहना पड़ेगा. ठीक है, हम थोड़ा मॉडल डेवलप करने में इतना आगे नहीं बढ़े, होना जितना होना चाहिए था, लेकिन अभी हमारे को बहुत अपॉर्चुनिटी है और हमको उसको टॉप पे रहना पड़ेगा. AI पे हम ये नहीं चाहते कि खाली हम AI के यूजर बन के रह जाएं, हम AI की रेवोल्यूशन में एक्टिव भागीदार, चाहे वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, क्यों हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स जबरदस्त है, हमारे पास इंजीनियर टॉप क्लास है, सिलिकॉन वैली में हमने धूम मचा रखी है, तो उसका हमको फायदा होना चाहिए ना
2: जी.
1: लेट्स टेक महेश चौपाड़े लाइव फ्रॉम पेरिस एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम what are the key highlights from Prime Minister Narendra Modi's visit to France regarding the economic perspective. Mahesh, give us our listeners on Akashvani what the latest is. I'm afraid we lost Mahesh Chopade from Paris, but he will come back and give us the latest in terms of what's happening. Another area, since we are now referring to Prakash Chawla, our on-site guest on Market Mantra, another very important contribution has been digital payments. India is far ahead of most of the developed countries in this regard. There is tremendous transfer of funds and revenue to the government in the form of taxes and, of course, charges that has made a lot of these companies very profitable.
0: Well, the DPI, as it's called, Digital Payment Infrastructure, its most important contribution, to my mind, is the delivery system of the benefits that accrue to the person at the bottom of the pyramid. Today, if the government has to reach out to the people at the bottom of the pyramid,
2: Gee.
0: It can straight take 30 seconds to transfer, you know, all the subsidies, all the schemes that are aimed. And then obviously the digital infrastructure has improved and is continuing to improve our efficiency in terms of, even on Sunday or Monday or Saturday, in middle of night, you can transfer money. You don't have to go to bank. And then this naturally has led to tremendous improvement in the productivity, in the efficiency of the system. And we have been at the top of the table when it comes to DPI, Digital Payment Infrastructure. And but we need to now gel it with the AI. How do we do it? That very important critical area.
2: Prakash ji, aapne gelling with AI ki jo baat kahi, isse main aapka dhyan aakrishit karna chahungi shiksha ki taraf. कि शिक्षा में भी जो एआई का एक रिवॉल्यूशन है, हम अभी तक कन्वेंशनल तरीके से एक किताब पत्र के साथ पढ़ाई करते हुए आए हैं जो कि एक आधारभूत है, लेकिन एआई किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा शिक्षा के क्षेत्र में?
0: देखिए, किताब को आप रिप्लेस मत कीजिए एआई से. किताब तो किताब है, वो तो वो ग्रंथ,
2: लर्निंग एक
0: ग्रंथ है. तो आप टेक्नोलॉजी को, आप ई बुक्स भी तो होती है ना, तो आप ई बुक्स भी होती है ना, तो आप उस तरह से आप देखिए उसको. तो शिक्षा हो, एजुकेशन, शिक्षा हो, हेल्थ हो, इन सब सेक्टर्स में डिलीवरी सिस्टम है ना, कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है. एट अ स्प्लिट सेकंड आपको पूरा मालूम पड़ जाता है कि क्या कोई भी आपकी इंक्वायरी हो.
2: बिल्कुल.
1: वी वंस अगेन बैक विथ महेश चौपाड़े फ्रॉम पेरिस अबाउट द लेटेस्ट एज फार एज द G7 इज कंसर्न्ड. महेश, आई होप यू कैन हियर अस एट मार्केट मंत्र.
3: यस यस, प्लीज गो अहेड.
1: Mahesh, tell us, what are the key highlights from the PM visit to France as far as the economic perspective is concerned? Do give us the latest on the India-EU FTA as well, the India-European Union Free Trade Agreement.
3: The highlight of today's engagements of Honorable Prime Minister in Paris were his meetings with the top CEOs who met him today in Paris. They range from Saint-Gobain's company to Mistral AI, then CMS CGM chairman, and CEO also met Prime Minister. Technology, AI solutions, as well as investment in manufacturing sector were the key highlights today. Thereafter, just now, as we must have seen, PM addressed the Vivatex summit live, in which he talked about how this is going to be. This was a very special year of India. India and European Union partnership, how it is going ahead with many, FTA and other components, and how India and European Union especially share the common vision about development of AI, sovereign AI especially, where it is decentralized and can be put to public good, can be put for the betterment of the masses.
1: Well, thank you so much, Mahesh Chopade, speaking to us directly from Paris regarding what's happening at the G7 summit there. Thank you.
2: श्रोताओं, प्रकाश जी के पास हम वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले आइए सुनते हैं और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा व्यवहार किया. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद 0.3% की बढ़त के साथ बंद हुए. लगातार पांचवें दिन बाजार में आज तेजी देखी गई. सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 82 अंक की बढ़त के साथ 24,168 पर आ गया. विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 सूचकांकों में भी 0.4% की बढ़त दर्ज की गई. कच्चे तेल की कीमतों में कमी और अमरीका ईरान के बीच हुए समझौते के बाद रुपए में आई मजबूती से निवेशकों का उत्साह बना रहा.
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेज एंडेड टुडेज चॉपी ट्रेडिंग सेशन विद गेन्स ऑफ 0.3%, राइजिंग फॉर अ फिफ्थ कंजेक्यूटिव डे. सेंसेक्स गेन बाय 254 पॉइंट्स टू क्लोज एट 77,410, वाइल निफ्टी एडवांस्ड 82 पॉइंट्स टू सेटल एट 24,168. इन द ब्रॉडर मार्केट ऑन द एनएससी, the mid cap 100 as well as small cap 100 indices added 0.4%. Investor sentiment remained upbeat, supported by lower crude oil prices and a recovery in the rupee after signing of a memorandum of understanding between the US and Iran.
2: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंडिगो 2.7%, ट्रेंट 2.5% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में 2% से अधिक की बढ़त रही. वहीं दूसरी ओर खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इन्फोसिस 2.7%, टेक महिंद्रा 1% से अधिक और मारुति के शेयरों में 1% की गिरावट दर्ज की गई.
1: Among the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 22 out of the 25 sectors ended in the green. Utilities soared 1.8%, hospitals rose 1.6%, and services gained 1.5%. In contrast, IT slipped by 1.1%, focused

0: IT lost 0.9% and energy dipped 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,419 companies advanced, 1,814 companies declined and 186 companies remain unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 19 पैसे मजबूत होकर 94.34 रुपए पर बंद हुआ. उधर दुनिया की छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 100.79 पर चल रहा था. प्रकाश, आज हम बाजार की ट्रैजेक्टरी को अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि यूएस ईरान पीस अग्रीमेंट है, हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम घटे हैं, जिसका एक सीधा इम्पैक्ट बाजार पर देखने को मिल रहा है. आप इसे कैसे रेखांकित करते हैं, आप कैसा इसका अवलोकन करते हैं?
2: देखिए जी, जो ईरान और अमेरिका के बीच में डील हुई है, बड़ी महत्वपूर्ण डील हुई है, उससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ा है. और जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से पार्टी चल रही है मार्केट में, ऑलमोस्ट हफ्ता भर होने वाला है. तो पार्टी अब तो इनफैक्ट पार्टी के थोड़ा सा लास्ट फेज चल रहा है, पार्टी चल रही है. और आज देखें तो पिछले दो तीन दिन में तो खूब उसमें जम के उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिख रही थी, और अब थोड़ा सा उसमें टेक्निकल थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है
1: जी.
2: तो उसके चलते हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम लोग नेट इम्पोर्टर्स हैं एनर्जी के, और इतना ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं तो हमारे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी जब ये हॉर्मूज पूरा बंद पड़ा था, उधर से ब्लॉकेट लगा हुआ था, तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत थी. और ये देखिए कि वार जब शुरू हुई तो तकरीबन जो क्रूड ऑयल था 73 के आसपास था, $73 पर बैरल. अभी हम ऑलमोस्ट अभी डील आजकल में साइन हुई है
1: जी.
2: और अभी ऑलमोस्ट $5-6 ही ऊपर है. हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है और मार्केट इसको देख रही है. हमारे जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैक्रोज, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इतने अच्छे इम्पैक्ट होने वाले हैं. आपकी इन्फ्लेशन पे पॉजिटिव असर रहेगा, रूपी वैल्यू, जैसे आप अपने रीड आउट में पढ़ा
1: जी.
2: कि रूपी इम्प्रूव कर रहा है, स्टेबल हो गया है, इम्प्रूव कर रहा है, यही वजह है. हमारे मिडल ईस्ट में रेमिटेंस आती है, हमारे मिडल ईस्ट में जो हमारा डायस्पोरा है, इन सब में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. यही चीजें मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रही.
0: जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन, वी सॉ auto stocks lose some ground today. Information tech stocks lose ground also. Aviation stocks picked up because there is a greater possibility of travel, like the India-EU FTA is promising as well. How do you see the general uptick in the market? Do you see that in the next 30 to 60 days now?
2: Well, uptick, as I said earlier, the sentiment has improved for better. And the undercurrent, now it's an event based, it's a big event. The deal, signing of deal between US and America is a very important event for us. So as far as the sectoral shuffling is concerned, well, the auto had a good run in the last few days. Even IT had a reasonably okay. Now, you can call it, but IT, the anxiety around AI still is around IT. Well, that's how it works.
1: श्रोताओं, अब आइए रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. आज प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में मिलाजुला रुख रहा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2.2% बढ़कर 9064 के रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई पर बंद हुआ, जबकि जापान का निकेई 1.6% की बढ़त के साथ 71,053 अंकों के अब तक के सबसे ऊंचे क्लोजिंग स्तर पर पहुंचा. ताइवान का ताइएक्स 1.3% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% बढ़ा. वहीं हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 1.6% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.4% नीचे आया. बात करें यूरोपीय सूचकांकों की तो यहां गिरावट के साथ कारोबार करते ये सूचकांक नजर आए. लंदन का फुटसी 1% से अधिक नीचे आया, जबकि फ्रांस का कैक और जर्मनी का डैक्स अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक सपाट रहा.
0: मूविंग ऑन टू द यूएस स्टॉक मार्केट, यूएस इक्विटीज एंडेड लोअर यस्टरडे एज ट्रेजरी यील्ड्स क्लाइम्ड आफ्टर हॉकिश रिमार्क्स फ्रॉम द फेड रिजर्व. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index shed more than 1.3%, S&P 500 slipped 1.2%, and the Dow Jones Industrial Average lost 1%. Market participants turned cautious after the latest Fed Reserve projections showed that 9 of the 19 Fed Open Market Committee, FOMC members expect at least one interest rate hike this year. Let's hear what Fed Chair Kevin Warsh said in his first FOMC speech.
3: The committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate at 3.5% to 3.75% in support of the Fed's dual mandate. Economic activity is expanding at a solid pace, despite elevated uncertainty that owes in part to the conflict in the Middle East. Productivity growth and capital investment both strong. Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little. We recognize that inflation has been running well ahead of the Fed's long-stated inflation goal of 2%. That's been going on for more than 5 years. Persistently high prices are a burden for the American people, but the recent past need not be prologue. I am pleased to report that members of the FOMC are unambiguous and unanimous. This committee will deliver price stability.
0: Prakash Chawlaji, inflation was mentioned by the Fed Chair Kevin Warsh. It's at 3.8% for the month of April. The Fed rate is between 3.5 and 3.75% because the U.S. Bureau of Labor Statistics has also stated that energy prices uptick has led to inflation. Do you see Kevin Warsh's approach any different from his predecessor, Jerome Powell?
2: Well, he is acting contrary to the expectations. The expectation around him was that he would be a little soft on interest rates. But when you can't wish away the reality. He came in the middle of the war, and now, fortunately, as he was presiding over FOMC meeting, we had this deal. So even if he is delivering a message about price stability and concern about inflation, there is a great hope that the price stability will be brought in largely, significantly by this deal, and you see the impact already happening. So let's see how it pans out. But his priority is very clear. Price stability is his priority.
1: Prakash ji, iska asar Bharat jaise ubharti arthvyavastha aur ubharte bazaar par kaisa padega?
2: Aapka matlab ye jo deal hui hai ya aapka matlab federalism ke grant?
1: Ji.
2: Dono cheezon ka asar padta hai.
1: मिला जुला
2: सर. तो डील के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं. आपको फेड के बारे में बताता हूँ. फेड रिजर्व के जब रेट्स बढ़ते हैं, जब अमेरिका में रेट्स बढ़ते हैं, तो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स पे उसका असर होता है. ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका में, और क्योंकि फाइनेंशियल लार्जेस्ट मार्केट है, वहां रेट्स बढ़ जाए और जो फ्लो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का फिर उधर ही जाता है जहां भी यील्ड बढ़ जाते हैं, जहां भी इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है, तो उसका असर पड़ता है. अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट होंगे तो हमारे को भी ये फायदा कि हम उसके तरफ से, हमें भी वहां से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो इक्विटी में हो या बॉन्ड्स में हो, तो हमारी मार्केट अट्रैक्टिव हो जाती है. तो हमें इस चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आएगा अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे.
1: प्रकाश, जहां फेड रेट के बढ़ने की आशंका है, वहां कॉस्पी और निके अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बाजार को ये जो मेरा ये सवाल है कि जहां पर कॉस्पी और निके को हम देख रहे हैं अच्छा ऑल टाइम हाई प्रदर्शन करते हुए, तो अभी जो ग्लोबल एक जो ग्रोथ है उस तरफ निवेशकों का रुझान ज्यादा है, ना कि ये देखते हुए कि हो सकता है संभावित आने वाले समय में किसी तरीके के हाइक्स हों, रेट के हाइक्स हों?
2: देखिए जी, कॉस्पी मतलब कि साउथ कोरियन मार्केट.
1: जी,
2: साउथ कोरियन मार्केट में तो पार्टी हो रही है एआई को लेकर.
1: एआई को लेकर
2: पिछले दिनों से, महीनों से वहां तो एआई ने धूम मचा रखी. तो वो जो रैली चल रही थी उसमें अभी कुछ करेक्शन भी हुआ है, काफी करेक्शन हुआ है पिछले हफ्ते दो हफ्ते में. तो सारा एआई, बिकॉज वहां के जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो पूरी एआई स्टोरी जो है ना मार्केट को बड़ा डोमिनेट कर रही है. तो जो प्लेयर्स है एआई इन्वेस्टमेंट, जो एआई प्ले जिसको बोलते हैं, साउथ कोरिया उसके मिडल में आता है कोरिया. तो वो असर है. अभी एआई की स्टोरी अभी लिखी नहीं, किसी को मालूम नहीं है किस तरफ जा रहा है. तभी तो हमको भी ध्यान रखना है अपने, हमारे हमको भी ये, वी हैव टू बी इन द मिडल ऑफ इट, भाई किस तरफ जा रही है. तो कोरियन मार्केट जो है लार्जली ड्रिवन बाय द एआई स्टोरी.
0: द जापानीज निके 225 इज एट एन ऑल टाइम हाई. द येन टू द डॉलर इज एट 161, व्हिच इज क्वाइट फेवरेबल फॉर द यूएस currency, but we have also seen the Bank of Japan being very belligerent.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां पारंपरिक तरीके सीमित साबित होते हैं, वहां नवाचार प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्रों में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों के माध्यम से मानव क्षमता की नई सीमाओं का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। श्री मोदी ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा माल वाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
2: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहां पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था, थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
2: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडुंगा में

जो ये स्काई वॉक की आप चाहे बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो न केवल जो स्काई वॉक वहां पे तैयार हो रहा है, पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काई वॉक जा रहा है।

0: इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसा कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, न केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएं और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है और उस

0: बस बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 42 जनकल्याण शिविर आयोजित किए। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन सहित अन्य ग्रुप सी के खाली पदों पर भर्ती में 20% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालय QS रैंकिंग में IIT दिल्ली एक बार फिर देश का सर्वोच्च संस्थान बना। दिल्ली पुलिस ने शिशु तस्करी रैकेट का पर्दाफाश कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता कल से नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार द्वारा आज राष्ट्रीय राजधानी में 42 जनकल्याण शिविर आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 दिवसीय जनकल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के अभियान से प्रेरित है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले इन शिविरों में नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल सकेगा।
7: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
6: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इन शिविरों में पिंक कार्ड, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, लखपति बिटिया योजना और प्रधानमंत्री उदय योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा ने विश्वास नगर क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ओम प्रकाश शर्मा, अभय वर्मा और संजय गोयल भी शामिल रहे। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहेब सिंह ने आज दिल्ली सरकार द्वारा बंगाली मार्केट और एनडीएमसी सामुदायिक केंद्र में आयोजित जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि इन शिविरों में आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, विधवा और विवाह सहायता योजनाएं सहित अनेक जनहितकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविरों में आने वाले लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा ने 12 साल विश्वास के विकास के और जन कल्याण के अभियान के अंतर्गत आज भोलानाथ नगर से घर घर संपर्क अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश में हुए परिवर्तनकारी विकास कार्यों, जनहितकारी योजनाओं और सुशासन की उपलब्धियों के बारे में स्थानीय नागरिकों से संवाद किया।
8: प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2014 में 200 से अधिक योजनाएं जन कल्याण की बनाई, न केवल बनाई बल्कि उनको मूर्त रूप दिया। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने ये योजनाएं बनाई और कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिला है।
6: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने की रणनीति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के दौरान तरणजीत सिंह सिंधु ने पूर्व अग्निवीरों के

0: कौशल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड सहित ग्रुप सी के खाली पदों पर सीधी भर्ती में 20% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे बताया कि सभी को समान अवसर देने और देश के लिए उनकी सेवा को सम्मान देने के उद्देश्य से इस प्रावधान के अंतर्गत भर्ती योग्य पूर्व अग्निवीरों के लिए खुली रहेगी। श्री संधू ने आगे बताया कि सभी संबंधित विभागों के लिए भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव और प्रक्रियाएं पूरी करने की समय सीमा इस महीने की 30 तारीख तय की गई है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं ज्योत्सना पांडे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। आईआईटी दिल्ली को वैश्विक स्तर पे 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने 75 पायदान ऊपर चढ़कर 686वीं रैंक हासिल की है। इसके साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान वैश्विक रैंकिंग में 105वें स्थान पर शामिल है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में 52 भारतीय संस्थान शामिल हैं, जिनमें से 13 भारतीय विश्वविद्यालयों ने दुनिया के शीर्ष 550 संस्थानों में जगह बनाई है। आईआईटी बम्बई और आईआईटी मद्रास भी विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में देश के कुल 52 संस्थानों को स्थान मिला है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने एक संदेश जारी कर विद्यार्थियों को अपनी तैयारियों पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। एजेंसी ने कहा कि उम्मीदवारों ने साल भर कड़ी मेहनत की है और अब उनका पूरा ध्यान परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने पर होना चाहिए। एजेंसी ने छात्रों को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित गतिविधि के प्रयास में सख्ती से निपटा जाएगा। एजेंसी ने अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम जनता से अफवाहों पर विश्वास न करने तथा अपुष्ट जानकारी साझा न करने की सलाह दी है। केवल एजेंसी की आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करने को कहा गया है। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने इस वर्ष की शुरुआत में विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान और ई प्रतिज्ञा मंच के शुभारंभ का उल्लेख करते हुए छात्रों से नशा मुक्त भारत के राजदूत बनने और नशे की समस्या के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया। दिल्ली सरकार ने गेस्ट टीचर्स द्वारा जनगणना कार्यों में बिताई गई अवधि को आधिकारिक तौर पर नियमित कार्य दिवसों के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह निर्णय शिक्षकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय हजारों गेस्ट टीचर्स के पेशेवर हितों की रक्षा के लिए एक शिक्षक हितैषी कदम है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज द्वारका स्थित नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अटल इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सूद ने कहा कि यह केंद्र दिल्ली के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को नई दिशा देगा। नींव, दिल्ली एआई ग्राउंड और दिल्ली स्टार्ट

0: स्टार्टअप युवा फेस्टिवल जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: अटल जी के नाम से अटल इंक्यूबेशन सेंटर और नेताजी सुभाष चंद्र NSUT में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, इस प्रकार का एक इकोसिस्टम खड़ा किया जा रहा है जो अपने अपने तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स के आइडियाज को सोचकर आगे बढ़ाने वाले युवाओं को पैरों पर खड़ा होने का, जहां उन्हें फेलियर का डर ना हो, जहां उन्हें सक्सेस प्राप्त होने पर धोखे का डर ना हो, जहां उन्हें सही गाइडेंस ना मिलने का खौफ ना हो, ये प्रयास NSUT और AIC अटल इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा किया गया है। इससे दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बल मिले।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजौरी गार्डन स्थित राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। श्री सिरसा ने बताया कि इन शिविरों में कई केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम नागरिक तक सरल और सुगम तरीके से पहुंचाना है।
2: इन जन कल्याण शिविर के अंदर पिंक कार्ड बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, हमारी दिल्ली सरकार की स्कीमें हो या भारत सरकार की केंद्रीय स्कीमें हो जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, उनके 12 साल के उपलक्ष्य में ये कैंप लगाए गए हैं। इसके अंदर आज लोगों को आयुष्मान कार्ड भी बना के दिया जा रहा है, आज लोगों को हेल्थ कार्ड भी बना के दिया जा रहा है, लोगों को इनकम सर्टिफिकेट भी बना के दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक समूह बनाया गया जिसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की सारी स्कीमों का एक जगह शिविर कैंप लगाकर लोगों के लिए एक बड़ा काम करने का काम किया है।
0: ये शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा ने वर्ष 2026-27 के लिए सदन की विभिन्न समितियों का गठन कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: नवगठित समितियों के महत्व के बारे में श्री गुप्ता ने कहा कि ये समितियां जन कल्याण से जुड़े विषयों पर प्रभावी निगरानी, गहन निरीक्षण तथा सुव्यवस्थित विचार विमर्श सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नामित सदस्यों का सामूहिक अनुभव दिल्ली में लोकतांत्रिक जवाबदेही को और मजबूत करेगा। श्री गुप्ता ने कहा कि ये समितियां विधानसभा की कार्यकुशलता, जवाबदेही और जनहित से जुड़े विषयों पर प्रभावी निगरानी को और अधिक सुदृढ़ करेंगी। इन समितियों में कार्य मंत्रणा समिति, सरकारी आश्वासन समिति, नियम समिति, महिला और बाल कल्याण समिति, पर्यावरण समिति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति तथा अन्य शामिल हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय शिशु तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान 5 नवजात शिशु को भी बचाया गया। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 3 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी जब्त की है। एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता 2026 कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 19 से 24 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 34 देशों के 400 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। ओलंपियन भवानी देवी का इस प्रतियोगिता में 24 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व कर रही हैं। राजधानी में आज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा धूप रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 42 जन कल्याण शिविर आयोजित किए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन सहित अन्य ग्रुप सी के खाली पदों पर भर्ती में 20% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालय QS रैंकिंग में IIT दिल्ली एक बार फिर देश का सर्वोच्च संस्थान बना। और एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता कल से नई दिल्ली में शुरू। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Ni cam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जहां पारंपरिक तरीके सीमित साबित होते हैं वहां नवाचार प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों के माध्यम से मानव क्षमता की नई सीमाओं का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। श्री मोदी ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेल्कोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारिता मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्तावित भारतीय सहकारी बैंक और भविष्य में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को समर्थन देने पर विस्तृत चर्चा हुई। सहकारी बैंकों के लिए सहकार सारथी, प्रौद्योगिकी आधारित पहलू की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच हस्ताक्षरित नया समझौता ज्ञापन को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराया, साथ ही उसकी गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। मकाउ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चालिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अनमोल ने चोटिल होने के बाद क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिली, जबकि अस्मिता ने अमरीका की इशिका जायसवाल को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सांझ का समा, जब दिन और रात मिलते हैं, जिसे कहा जाता है संधि प्रकाश। संध्या के इस खूबसूरत माहौल में एक लोकप्रिय सांध्यकालीन राग लेकर आए हैं हम मधुरिमा में। आपके साथ मैं हूं रजनी। राग पूरिया धनश्री पर आधारित पहला गीत फिल्म बदलते रिश्ते से। आवाज है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
0: आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मधुरिमा और आज हम बात कर रहे हैं राग पूरिया धनश्री की। राग पूरिया धनश्री एक करुणा प्रधान गंभीर राग है जिसे गाने बजाने का समय दिन का चौथा पहर यानी संधि प्रकाश है और इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण वक्र है। अगला गीत सुनते हैं फिल्म आई मिलन की रात से, आवाज है अनुराधा पटवाल और मोहम्मद अजीज की।

राग पूर्या धनश्री में ऋषभ व धैवत कोमल होता है, मध्यम तीव्र और बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। इसका वादी स्वर है पंचम और संवादी स्वर है षडज। राग पूर्या धनश्री पर आधारित अगला गीत फिल्म 1947 अर्थ से, आवाज है सुखविंदर सिंह की।

इसी के साथ आज का मधुरिमा को समेटने की रजनी को इजाजत दीजिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। कुछ ही देर में आप सुन सकते हैं स्पोर्ट्स स्कैन।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट और हर मैदान की खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक आज के मुख्य समाचारों के साथ। भारत ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया। भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराया।

प्राची और निखिल विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में आज चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से, कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया।

0: तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के महासंग्राम से, जो कि इंग्लैंड और लीड्स में चल रहा है। भारत ने आईसीसी टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप में अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड्स पर 95 रन की विशाल जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही हरमनप्रीत कौर की विमेन इन ब्लू ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंच गई है।
1: Sprinting forward, what a spectacular catch from Jemmy Rodrigues to wrap up the affairs this afternoon. 50 over champions march ahead in their T20 campaign with another clinical showing.
2: Harmanpreet Kaur की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप में लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की। पहले मैच में पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए लीड्स के हेडिंगले में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया। यह महिला T20 विश्व कप में रनों के अंतर से भारत की सबसे बड़ी जीत है। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दी। दोनों खिलाड़ियों ने 115 रन की साझेदारी की। शेफाली 38 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुई, जबकि स्मृति ने पहले मैच की फॉर्म जारी रखते हुए 47 गेंदों में 74 रन बनाए। मैच के बाद उप कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि वह शेफाली के साथ बल्लेबाजी को काफी इंजॉय कर रही है।
3: वी एंजॉय बैटिंग विद ईच अदर क्वाइट अ लॉट। प्ले विद शिफू, यू नो, यू हैव टू बी ऑन टोज विद हर, यू हैव टू कीप टेलिंग हर दैट डोंट कॉम्प्लिकेट एनीथिंग, जस्ट वॉच द बॉल। विद द टैलेंट्स ऑफ वॉट रिचा एंड शेफाली, दे फील लाइक ट्राइंग टू हिट एवरी बॉल फॉर अ सिक्स, व्हिच इज वेरी फेयर।
2: इसके बाद अंत में दीप्ति शर्मा ने 2 गेंदों में 10 रन बनाए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आई। टीम के साथ खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। पूरी टीम 17.5 ओवर में 114 रन पर सिमट गई। कप्तान बैबेट डी लीडे ने सर्वाधिक 28 और हीतर सीगर्स ने 21 रन जोड़े। भारत के लिए श्रीचरणी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 19 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि शेफाली वर्मा ने 3 और नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट अपने नाम किए। मैच के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा, सुनते हैं।
3: आई थिंक वी वर रियली गुड विद द बैट, इट वाजंट दैट इजी विकेट, बट आई थिंक द वे स्मृति एंड शेफाली बैटेड, दे यू नो गिव अस अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम द वे दे बोथ बैटेड टुडे।
2: अब भारतीय टीम का अगला ग्रुप मुकाबला 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से खेला जाना है, जहां भारतीय टीम की नजर जीत दर्ज करते हुए अपनी सेमीफाइनल की राह आसान करने पर होगी। स्पोर्ट्स कैन प्राची वाजपेयी।
0: और अब विमेंस टीम के बाद बात की जाए शुभमन गिल एंड ब्रिगेड की। भारत ने कल अफगानिस्तान को 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में 170 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाकर यह सीरीज अपने नाम कर ली है। सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
4: बाय द बॉलर्स शुभमन गिल, 900 इन ओडीआई क्रिकेट, बीन फिनोमिनल विद द बैट। ईशान किशन, हिज सेकंड 100 इन ओडीआई क्रिकेट।
5: धर्मशाला में पहला एक दिवसीय जीतने के बाद शुभमन गिल की मैन इन ब्लू ने लखनऊ में भी अफगानिस्तान पर एक शानदार जीत दर्ज की। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में कल का दिन कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन के नाम रहा। भारत के इन दोनों बल्लेबाजों ने कल अपने बल्ले से न सिर्फ मैच में बल्कि सीरीज में भी भारत की जीत पक्की कर दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल का विकेट जल्द ही गिर जाने के बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मजबूत स्थिति में लाने में मदद की। हिटमैन रोहित शर्मा कल अपने रंग में नजर आए और उन्होंने 39 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मेहमान टीम के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। इन दोनों खिलाड़ियों ने शतक पूरा करते हुए 224 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की और भारत को 320 के स्कोर तक पहुंचा दिया। शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने अपने एक दिवसीय करियर का 9वां शतक पूरा किया। कप्तान गिल ने 110 गेंदों पर 2 छक्के और 22 चौकों की मदद से 154 रन बनाए। दूसरे छोर पर ईशान किशन ने 79 गेंदों पर 7 छक्कों और 14 चौकों की मदद से 125 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि इसके बाद आए भारतीय खिलाड़ी कुछ बहुत खास नहीं कर सके और टीम ने इस मजबूत शुरुआत की बदौलत 402 रन बनाए। ये 8वां मौका था जब भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट में 400 रन का आंकड़ा पार किया। भारत अब दक्षिण अफ्रीका के बराबर पहुंच गया है, जिसने सर्वाधिक 8 बार 400 रन का आंकड़ा पार किया है। इस

0: विशाल लक्ष्य के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम फिर एक बार भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती नजर आई और 45वें ओवर में 232 रन पर ही सिमट गई। मेहमान टीम के लिए रहमत शाह ने सर्वाधिक 79 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। अपना पहला मैच खेल रहे प्रिंस यादव के हाथों दो सफलता लगी। अपना डेब्यू करने पर प्रिंस ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है।
1: जब भी कोई क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है तो वो ड्रीम यही करता है कि इंडिया के लिए खेलूंगा, इंडिया की जर्सी पहनूंगा। डेब्यू किसी भी प्लेयर के लिए अच्छी बात है, बट ये है कि मैं अपनी टीम के लिए परफॉर्म करूं, अपनी टीम को जिताऊं।
0: शानदार शतकीय पारी के लिए शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: और अब बात हॉकी के मैदान की, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने देश का झंडा बुलंद किया है। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने हॉकी महिला नेशंस कप में अपने आखिरी पूल मैच में उरुग्वे पर 3-2 की जीत दर्ज की।
3: सबसे पहले बात FIH हॉकी प्रो लीग 2025-26 की, जहां भारतीय पुरुष टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराया। भारत के मनदीप सिंह मैच के साथ में शिलानंद लाकड़ा ने 13वें और नीलकांत शर्मा ने 35वें मिनट में गोल दागा। इस मुकाबले में भारतीय टीम का डिफेंस भी काफी मजबूत नजर आया। मिडफील्डर हार्दिक सिंह को मिडफील्ड में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने शुरुआत से ही जर्मनी पर दबाव बनाए रखा। इसका फायदा 7वें मिनट में मिला, जब मनदीप ने गोल के सामने एक तेज टर्न से गोल करके भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद लाकड़ा ने 13वें मिनट में एक शानदार स्ट्राइक से स्कोर 2-0 कर दिया। दूसरे हाफ में 35वें मिनट में नीलकांत शर्मा ने गेंद को गोल में डालकर भारत की बढ़त 3-0 कर दी। जर्मनी के राफेल हार्टकोफ ने 45वें मिनट में गोल करके स्कोर 3-1 कर दिया। आखिरी क्वार्टर में जर्मनी ने गोल करने के कई मौके बनाए, लेकिन भारत ने उन्हें नाकाम कर दिया और मुकाबला 3-1 से अपने नाम कर लिया। इस मैच के साथ ही मनप्रीत सिंह भारत की से सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने दिलीप तिर्की के 412 मैचों के रिकॉर्ड को तोड़ा। 413 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले मनप्रीत अब पुरुषों की ऑल टाइम इंटरनेशनल कैप में 5वें स्थान पर है। दूसरी तरफ भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी महिला नेशंस कप में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए आखिरी पूल मैच में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। शुरुआत में एक गोल खाने के बाद भारत ने जोश और संयम दिखाते हुए वापसी की। दीपिका ने 24वें और 56वें मिनट में 2 गोल किए, जबकि दीपिका सोरेंग ने गोल किया। इस जीत के साथ भारत ने लगातार 3 जीत हासिल करके पूल ए में शीर्ष स्थान पक्का कर लिया। ये मैच मिडफील्डर नेहा के लिए भी खास मौका था, जिन्होंने अपना 200वां सीनियर इंटरनेशनल मैच खेला। भारत अब पूरे आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में उतरेगा और FIH नेशंस कप का खिताब जीतने तथा FIH प्रो लीग में वापसी करने की अपनी कोशिश जारी रखेगा। 20 जून को होने वाले सेमीफाइनल में उनका मुकाबला चिली या कोरिया से होने की संभावना है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
2: और अब बात फीफा की, जहां फीफा फुटबॉल विश्वकप 2026 में कोलंबिया ने आज उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया, जबकि घाना ने पनामा को 1-0 से और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 से जीत दर्ज की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में मेक्सिको का सामना दक्षिण कोरिया से होगा।
4: कोलंबिया ने फीफा विश्व कप में अपनी वापसी का जश्न मैक्सिको सिटी स्टेडियम में डेब्यू कर रहे उज्बेकिस्तान पर 3-1 की रोमांचक जीत के साथ मनाया। मैच की शुरुआत में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। 32वें मिनट में लुइस डियाज के शानदार मूव को डेनियल मोनोज ने बेहतरीन गोल में बदलकर कोलंबिया को 1-0 की बढ़त दिला दी। पहले हाफ के अंत तक कोलंबिया का दबदबा बना रहा, वहीं दूसरे हाफ में उज्बेकिस्तान ने जोरदार वापसी की। अब्बोस बेग फैजुल्ला एव ने हेडर लगाकर शानदार गोल दागा। इस गोल के साथ ही स्कोर 1-1 से बराबर हो गया। कोलंबिया ने तुरंत पलटवार किया। स्टार खिलाड़ी लुइस डियाज ने नीचे की तरफ बेहतरीन शॉट लगाते हुए कोलंबिया को 2-1 से शानदार बढ़त दिला दी। मैच के अंतिम मिनटों में कैंपाज ने शानदार हेडर के जरिए तीसरा गोल कर कोलंबिया की जीत पक्की कर दी। एक अन्य मुकाबले में ग्रुप एल में घाना ने कालेब येरंकी के अंतिम क्षणों में किए गए गोल की बदौलत पनामा को 1-0 से पराजित किया। दोनों टीमों ने गोल के कई प्रयास किए, लेकिन वे नाकाम साबित हुए। मैच के अंतिम क्षणों में कालेब येरंकी ने अपने करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल करते हुए घाना को 1-0 से जीत दिलाई। वहीं तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने फीफा विश्व कप 2026 2020 का जीत के साथ आगाज किया। डलास स्टेडियम में हुए ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से शिकस्त दी। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया तो 12वें मिनट में ब्रिटेन को मिली पेनल्टी को हैरी केन ने गोल में तब्दील कर टीम की 1-0 की बढ़त पक्की की। इसके बाद क्रोएशिया ने मार्टिन बटुरिना के शानदार गोल की बदौलत वापसी करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। ब्रिटेन ने एक बार फिर पलटवार किया और कॉर्नर किक पर हैरी केन ने बेहतरीन हेडर लगाकर अपना दूसरा गोल किया और इंग्लैंड को 2-1 से आगे कर दिया। पहला हाफ खत्म होने से पहले मूसा ने गेंद को गोल पोस्ट में डालकर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में ब्रिटेन अलग ही अंदाज में मैदान पर उतरा और खेल शुरू होने के केवल 2 मिनट के अंदर जूड बेलिंगहैम ने शानदार व्यक्तिगत प्रयास करते हुए गोल दागा। इसके बाद मैच के अंतिम पलों में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड ने गोल करते हुए स्कोर 4-2 किया और ब्रिटेन की जीत पर मोहर लगा दी। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
2: और अब रुख करते हैं चीन का, जहां पर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही है। मीनाक्षी हुड्डा ने आज इस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने 51 किलोग्राम वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में पोलैंड की नतालिया कुचेस्क्वा को 5-0 से हराया। अब क्वार्टर फाइनल में कल 4 भारतीय खिलाड़ी अपना मुकाबला खेलेंगे, जिसमें 51 किलो में मीनाक्षी, 65 किलोग्राम वर्ग में स्नेह, 57 किलोग्राम वर्ग में प्राची रिंग में उतरेंगी। वहीं पुरुषों में निखिल 55 किलोग्राम वर्ग में चुनौती रखते नजर आएंगे। वहीं मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चाहिला महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और अब बात स्टार जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की, जो कि एक लंबे इंतजार के बाद कल से कतर में शुरू हो रहे दोहा डायमंड लीग 2026 में मैदान पर नजर आएंगे। ये नीरज का इस एथलेटिक सत्र में पहला मुकाबला है।
5: Okay, so this is my first competition for the season. So I will try my best. I feel really good. I feel fit and let's see tomorrow. I'm waiting for tomorrow.
6: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा कल रात डायमंड लीग के दोहा में मैदान पर उतरेंगे। इस स्टार खिलाड़ी ने 2023 में दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर के साथ खिताब अपने नाम किया था। 2024 में 88.36 मीटर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया था और पिछले वर्ष नीरज ने इसी मैदान पर 90 मीटर का आंकड़ा पार कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि उन्हें 90.23 की दूरी प्राप्त करने के बाद भी रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। नीरज चोपड़ा बीते कुछ समय से स्विट्जरलैंड में ऑफ सीजन प्रशिक्षण शिविर में पीठ की चोट से उबर रहे थे। भारत का यह स्टार भाला फेंक खिलाड़ी आखिरी बार पिछले वर्ष सितंबर में टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मैदान पर उतरा था। ऐसे में लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे नीरज के लिए मैदान पर कड़ी चुनौती इंतजार कर रही है। वर्तमान विश्व रिकॉर्ड धारक श्रीलंका के रमेश पथिरागे इस लीग के लिए तैयार हैं। पथिरागे ने इस महीने की शुरुआत में रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का शानदार थ्रो किया था। त्रिनिदाद और टोबैगो के मौजूदा विश्व चैंपियन केशॉर्न वॉलकॉट, ग्रेनाडा के पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स और केनिया के जूलियस योगो भी शामिल हैं। ऐसे में कल सभी को एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
2: तो सबको उम्मीद होगी कि कल दोहा में एक शानदार मुकाबला भारतीयों का इंतजार कर रहा हो। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह की आज पुण्यतिथि है। देश विदेश के लोग इस महान धावक को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की उम्र में 18 जून 2021 को निधन हो गया था। फ्लाइंग मिल्खा सिंह को भारत में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जाना जाता है। मिल्खा सिंह ने भारत का 3 ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व किया था और खासकर याद किया जाता है 1960 में 400 मीटर के ट्रैक पर दौड़ी गई उस दौड़ को, जहां 1 सेकंड से भी कम अंतर में ये खिलाड़ी भारत के लिए पदक लाने से चूक गया था, लेकिन भारत के लिए कई कीर्तिमान अर्जित किए इस खिलाड़ी ने। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव हमें sportscan@air.gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक

0: दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉ आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉ मुरुगन ने कहा कि डॉ श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉ श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: श्रोताओं, पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी थी। देश में रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये योजना महत्वपूर्ण योजना के तौर पर उभर कर सामने आई है। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ के माध्यम से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की थी, जिसे लगभग 1,00,000 रुपए के कुल बजट के परिव्यय से शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि देश भर में 2 साल के अंदर करीब 3.5 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएं। अगर कहा जाए कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें रोजगार देने पर या रोजगार प्राप्त होने पर एक तरह से प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इस संदर्भ में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इस योजना का तथ्य है। और हम आज कार्यक्रम में इस योजना के संदर्भ में एक विशेष चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें पहली बार इस योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की जा रही है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, और साथ में हम इस कार्यक्रम में ऐसे लाभार्थियों से जिन्होंने इस

0: योजना का लाभ लिया है, साथ ही जिन कंपनियों ने रोजगार दिया है उनके उन नियोक्ताओं से भी हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो आशुतोष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं, किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को, कि 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार को पैदा करने का जो इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है, कितनी महत्वाकांक्षी योजना है ये?
1: सच्चाई ये है, समाज में इसकी जरूरत थी कि सरकार की ओर से आप ऐसा कुछ करें कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसके लिए आगे बढ़े कि भाई हमें नौकरी देनी है लोगों को। तो उस दिशा में जब ये सरकार ने सोची और बजट में ही इसकी घोषणा हुई थी और उसके लिए फिर पूरी तैयारी हुई, कल पहली बार 2400 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी थी, ये पहली किस्त है क्योंकि अदरवाइज तो ये कुल बजट इसका करीब करीब 1 लाख करोड़ है, 99 लाख समथिंग कुछ इस तरीके से इसका है। तो वो चीजें पहली किस्त जा रही है। और आपने ये बात जो कही कि आप कुछ ऐसे लाभार्थियों से भी बात करेंगे और कंपनियों से भी बात करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कि जो औपचारिक नौकरी पाने वाले जो युवा हैं उसके इसमें जो है 2 किस्तों में 15,000 रुपीज तक की कोई प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो दी जाएगी। और इससे जाहिर तौर पर कंपनियों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलिए एक असिस्टेंट सरकार की ओर से मिला हम लें, उनको भी जरूरत है। देखिए आज के दिन क्या है, अब जब फिर से वर्ल्ड ओपन अप होने वाला है, बहुत अच्छी बात हो गई कि वेस्ट एशिया क्राइसिस भी खत्म हो गया, अभी देखिए एक बार भी बहुत तेजी से काम भी बढ़ेंगे, कंपनियों के लिए भी बहुत काम आने वाला है हर क्षेत्र में, उसमें सरकार की ओर से ये मदद भी जब जाएगी तो और एक अच्छा माहौल बनेगा
0: निश्चित तौर पर। और इससे पहले कि हम एक लाभार्थी को जोड़ें, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस योजना में जो रोजगार पाने वाले की मासिक अधिकतम जो सैलरी है वो 1 लाख तक रखी गई है, यानी हम देखें तो इस योजना के तहत रोजगार पाने वाला एक बड़ा मध्य वर्ग भी स्थापित होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से इसमें जो सैलरी का प्रावधान रखा गया है कि जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में 1 लाख रुपए तक की मासिक सैलरी या वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको ये लाभ मिलने वाला है,
1: कि 1 लाख तक के किसी को नौकरी मिल रही है, बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरी तरफ देखिए कि इस 1 लाख से जोड़ते हुए सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही बजट में 12 लाख रुपए तक के लिए जो है सो टैक्स फ्री
0: किया था। बिल्कुल।
1: ये देखिए ये दोनों चीजें जोड़ती हैं कि 1 लाख रुपए वेतन पाने वाला एक युवा जिसकी कि समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, लेकिन जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, जिस तरीके का आकांक्षी समाज है, उसमें 1 लाख रुपए में बहुत सारी चीजें उसे जुटानी होती है, तो उस पर सरकार की ओर से एक्स्ट्रा भार न पड़े तो उसको टैक्स फ्री किया गया। कंपनियों को ये राहत दी गई कि आपको हम मदद करते हैं इसमें, तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हुआ है आज के दिन।
0: बिल्कुल। जुड़े रहिए आशुतोष जी, एक लाभार्थी को हम शामिल करते हैं, अमन त्रिवेदी जो एक डेटा इंजीनियर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। अमन जी स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
0: अमन जी अपना अनुभव बताएं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आपको किस तरह से लाभ मिला है, और थोड़ा अपनी प्रोफाइल के बारे में भी बताएं, किस तरह से आप एक ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और कैसे आपको इस योजना का प्रोत्साहन मिला है?
2: तो अगर सबसे पहले बात करें कि मुझे लाभ कैसे मिला है, तो उसमें सबसे पहले बात करें तो कंपनीज जो है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको सबसे पहले तो इंसेंटिवाइज करा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप फ्रेशर्स जो होते हैं जिनका पहली बार ईपीएफओ का अकाउंट खुला है उन्हें हायर करिए।
0: बिल्कुल।
2: तो मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं इंजीनियरिंग करा हूँ, राइट, मैं और अभी मैं एज ए डेटा इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता था कि इंटरव्यू से पहले ही आपसे पूछते थे एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नहीं इंटरव्यू होगा, तो स्किल सेट पे बात ही नहीं आती थी। अब एज ए फ्रेशर भी मौका मिलेगा बहुत लाखों करोड़ों युवकों को कि एटलीस्ट इंटरव्यू तक जा तक इंटरव्यू में जाए और बता पाए कि उनकी प्रतिष्ठा कितनी है और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में। और बात करें तो जैसे कि जो 15,000 रुपए की राशि जो इम्प्लॉइज को भी दी जा रही है, वो दो टाइप, या तो वो कुछ 6 महीने बाद जो 7,500 और उसके 6 महीने बाद वापस 7,500। सो मेरा मानना है कि वो कुछ के लिए रिवॉर्ड है और कुछ के लिए मोटिवेशन है, वो कि कॉर्पोरेट में गए हैं जो इम्प्लॉय एज एन इम्प्लॉय 6 महीने में, उसके बाद जो राशि आती है वो एक रिवॉर्ड लगता है कि ये मेरे एक नया कदम था और इसके साथ एक रिवॉर्ड मिला है। तो और वर्कफोर्स में इसके बाद मैं जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज्यादा दिख रही है और ज्यादा दिखेंगी, तो आई थिंक जॉब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी ये योजना जो है ये बहुत मददगार साबित हुई है यंग जनरेशन के लिए, उस हिसाब से बहुत यंग एज के अंदर भी एक इस कॉर्पोरेट के अंदर घुसने में भी बहुत मदद की है इस योजना ने मेरी और लाखों युवाओं की।
0: आशुतोष जी आपको मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा, और कि इस योजना के तहत नए लोगों को सामने लाने का मौका मिलेगा जो रोजगार की तलाश में है, और इसमें जैसे

0: कंपनी और नियोक्ताओं के लिए भी ये शर्त है कि अगर 50 कर्मचारियों से कम संख्या की कंपनी है तो उन्हें 2 नए लोगों को हायर करना होगा, और अगर 50 से ज्यादा बड़ी कंपनी है तो 5 नए लोगों को हायर करना होगा। यानी जो नियोक्ता हैं उन पर फोकस है कि वो नए लोगों को रोजगार दें। किस तरह से इस दिशा में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि जो फ्रेशर्स हैं और जैसा कि अमन जी ने भी बात की, जो स्किलफुल लोग हैं वो सामने आए।
1: अब क्या है कि दो इसके पहलू देखिए इस योजना के। 1 लाख रुपए तक के लिए ये है जो किसी यूथ को मिलता है, उसमें सरकार इस योजना में लेकर के आई है। दूसरी तरफ जो फर्स्ट टाइम ईपीएफओ में एनरोल हो रहे हैं, अब आज के दिन आप थोड़ी सी अगर पीछे थोड़ा पीछे घूम कर देख लें तो आप देखेंगे इतनी कितनी संख्या है ऐसे लोगों की जो कि बिल्कुल फ्रेशर आ रहा हो और उसे सीधे 80,000 90,000 1 लाख रुपए मिल रहा नहीं। ये यहाँ पर आप जो है सो एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि कंपनियां जो हैं, और उसमें आपने ये बात भी कही कि 50 से कम है तो 2 और उससे ऊपर है तो कम से कम 5 की जो बात है वो एक लिमिट भी डाल करके, क्योंकि कंपनियां भी दोनों चीजों से चलती है, एनर्जी के साथ भी चलती है, अनुभव के साथ भी चलती है, तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन उस बीच में फ्रेशर्स के लिए जो नए युवा आ रहे हैं स्किल लेकर के, उनको कैसे एक मौका मिले उसके लिए माहौल बने।
0: बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं नीलेश वर्मा जी को भी शामिल करना चाहूंगा जिन्होंने रोजगार को लेकर एक अपनी कंपनी में भी इस योजना के तहत रोजगार देने में मदद की है। नीलेश जी स्वागत है आपका, अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें पूरा, और साथ ही इस योजना को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया अपने लिए इसके बारे में भी बताएं।
2: धन्यवाद, मेरा नाम नीलेश वर्मा है। आई एम वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ इंटेलीडीबी एंटरप्राइज। वी आर वन ऑफ द प्रीमियम स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन जो AI के तहत एंटरप्राइज डेटाबेस में काम कर रही है। हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी हायरिंग थी, और हायरिंग के साथ साथ लोगों को रिटेन करना था, बिकॉज हायरिंग वॉज वन पार्ट एंड रिटेंशन वॉज दी अनदर पार्ट। जितने भी न्यू ब्लड हैं आज की डेट में, नए लोग हैं जो कॉलेज पास आउट हैं, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स, द प्रॉब्लम विद दीज फ्रेशर्स वर देयर रिटेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे ऑलवेज लुक एट मनी ओवर दी करियर, मोस्ट ऑफ देम, आई वुड नॉट से ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम दे लुक एट हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लुकिंग एट देयर करियर मोर रादर देन स्टिकिंग टू वन ऑफ दी एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली जब से ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू हुई है, इससे हमारे जैसे एम्प्लॉयर्स को काफी बेनिफिट मिला है इन टर्म्स ऑफ यू नो हायरिंग द राइट सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है, और इसको मैं यू नो आई एम ग्रेटफुल टू द ईपीएफओ एंड द ईएम ऑर्गेनाइजेशन फॉर रोलिंग दिस आउट। हालांकि इस योजना के बारे में आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो आई बींग एन एम्प्लॉयर, आई गॉट टू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कपल ऑफ मंथ्स अगो, बट मैं इसके बारे में और डीप जानना चाहूंगा, अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, एंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी लेवरेज इट टूवर्ड्स द यंग जनरेशन एम्प्लॉयमेंट।
0: बिल्कुल, तो आपको क्या उम्मीद है इस योजना से? जैसे आप जैसे जो एक तरह से मैं कहूं कि देश के योग विकास में भी आप जैसे जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स, तो कैसे इस योजना से आगे आने वाले समय में एक बहुत स्किलफुल वर्कफोर्स आपको मिलने वाली है, और जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उससे भी कैसे अट्रैक्ट होंगे आजकल के जो यूथ हैं वो इस योजना के जरिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टैलेंटेड पूल हमारे सामने आ पाए?
2: जी जी, सो मेरे लिए इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना केवल एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है फॉर दी एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, यह एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड मैकेनिज्म है, एंड इट एक्चुअली इनकरेजेस कंपनीज टू क्रिएट मोर जॉब, एंड इट इनकरेजेस यंग प्रोफेशनल टू एंटर इनटू द फॉर्मल वर्कफोर्स विद कॉन्फिडेंस। जब सरकार रोजगार देने वाले संस्थानों को समर्थन देती है तो उसका प्रभाव केवल कंपनी तक सीमित नहीं रहता है, इट एक्चुअली क्रिएट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट अक्रॉस फैमिलीज communities and the broader economy. Every new employee supports a household, and every household contributes towards the consumption, and every successful business contributes towards the nation building. So basically, jitne bhi naye rozgar ko hum protsahan dete hain, alag-alag yojanaon ko ke tahat sarkar hume, you know, incentive deti hai as an employ as an

0: एम्प्लॉयर, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की, हमारी कंट्री की कंट्रीब्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है।
1: बिल्कुल आशुतोष जी, आपसे अब मैं जुड़ना चाहूंगा। कुछ आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस योजना से संबंधित, जैसे जो कुल रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत अब तक हुआ है कर्मचारियों का, जो नए कर्मचारी जुड़े हैं लगभग 60 लाख के करीब नए कर्मचारी इससे जुड़े हैं, और युवाओं की संख्या अगर हम देखें तो 71% के आसपास है इसमें। और साथ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य इस योजना के तहत निकल कर आया है कि महिलाएं भी 30% के आसपास जुड़ी हैं, यानी विमेन वर्कफोर्स भी इस योजना से बढ़ता हुआ देश भर में देखा जा रहा है। और कैसे आप देखते हैं जिस तरह से ये आंकड़े हैं कि इतनी कम समय में और इतना अच्छा उत्साह है रोजगार के सृजन में, और साथ ही जैसा कि मैंने युवाओं की और विमेन वर्कफोर्स की तो बात की ही, क्या आपका कहना है?
2: दोनों चीजें हैं, एक तो इसकी जरूरत थी और दूसरी बात कि सरकार की ओर से मदद तो कंपनियां भी आगे बढ़ी, तो ये रजिस्ट्रेशन तो आपको दिखना ही था, ये जो जोश है वो तो दिखना ही था। जैसे अभी निवेश जी ने बात कही ना, इनके ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल जो जाकर के इन्होंने कॉलेज से पिक किया, कैंपस से
1: बिल्कुल
2: उठाया और लेकर के आ गए। अब यही इस योजना की जो खूबी है वो यही है
1: तो
2: ये, और जाहिर तौर पर ये फोकस ही किया गया है उस एज ग्रुप पे, जो बात अभी शुरुआत में अमन जी ने भी कही ना कि 21 से 30 के बीच में जो सबसे ज्यादा फोकस भी वही है, क्योंकि वही जरूरत है, वही आने वाले दिनों में बदलेंगे विभाग को।
1: बिल्कुल
2: जी
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर, जैसा कि नाम में ही है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो विकसित भारत का
2: जी
1: एक रोडमैप ये योजना देती है, क्योंकि इसमें एक तरफ इंसेंटिव है नियोक्ताओं को और रोजगार पाने वालों को, दूसरी तरफ देश में एक स्किल्ड वर्कफोर्स को औपचारिक सेक्टर में लाने की इस योजना के तहत पूरी कवायद है, जिससे कि रोजगार बड़ी संख्या में बढ़े और एक पूरा स्किल सेट तैयार हो युवाओं का, जिससे कि देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकें। बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़े और इस योजना के जो फायदे हैं और आने वाले समय में जो एक बड़ा इसका आउटकम निकलकर सामने आएगा, इन सभी बातों पर आप सभी ने विस्तार से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: Countrywide,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख

0: राष्ट्रपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। इसी गति, इसी प्रगति का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। साथियों, आज भारत की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कहानी नहीं है, सिर्फ यहां अटक नहीं जाती है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की भी कहानी है।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूवेस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान पर रहा। यह भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों को एक ऐतिहासिक दस्तावेज और एक सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस की एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेन के ड्रोन को नष्ट कर दिया। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों की उड़ानें रोक दी गई। मीनाक्षी हुड्डा चीन के विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नातालिया कुचेस्क्वा को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुके हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the VivaTech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
1: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
2: The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology.
1: In the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms, we are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
2: Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. The discussions focused on investment opportunities and expansion plans in India. Union Minister Amit Shah today chaired a series of review meetings in New Delhi and reviewed national roadmap to strengthen cooperative banking, organic products and cooperative exports. During the review of major cooperative banking initiatives, Mr. Shah took stock of the progress of various measures being undertaken to strengthen the cooperative banking sector through technology adoption, improved governance, cybersecurity, digital payments, common service platforms, and enhanced service delivery. Minister of Corporate Affairs said in a statement that detailed discussions were held on the proposed Cooperative Bank of India and its role in supporting the cooperative banking sector in the coming year. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level review meeting to assess preparations for the NEET UG re-examination scheduled on Sunday. During the meeting, Minister stressed the need to maintain the highest standards of integrity, transparency and efficiency in the examination process. He directed all concerned authorities to remain vigilant and ensure all necessary arrangements for the free and fair conduct of the re-examination. Mr. Pradhan said officers designated by the Ministry will be deployed across states to coordinate examination-related activities and report to a central command center headed by the Director General of the National Testing Agency. The National Testing Agency, NTA, has released a message encouraging students to stay calm and trust their preparation with the NEET UG 2026 examination just 3 days away. The agency said that candidates have worked hard throughout the year and should now focus on resting well and giving their best in the examination. The testing agency also assured students that strong security arrangements have been made to ensure a safe, fair and transparent examination. Education Ministry today said that 52 Indian institutions are featured in the QS World University Rankings 2027. IIT Delhi remains India's highest ranked institution at 118th globally, while IIT Delhi, IIT Bombay and IIT Madras are among the world's top 200 universities. Education Minister Dharmendra Pradhan expressed happiness that India's global academic footprint continues to expand. Iranian President Masoud Pezeshkian has described the newly signed Memorandum of Understanding between Iran and the United States as a historic document and a message from a strong Iran. In a social media post, he said, "Peace can only be achieved through mutual respect and reaffirmed Iran's commitment to global peace while preserving its dignity, independence and regional cooperation." And that is the end of this news bulletin.
3: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा प्रौद्योगिकी से प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। पेरिस विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत में तेजी से हो रहे डिजिटल बदलाव में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर चर्चा की। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस में मॉस्को के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। संयुक्त अरब अमीरात ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित किया और हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराया। शनिवार को सेमीफाइनल में उसका सामना चिली से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान

0: प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया है जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस के पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: बड़े निवेश हो रहे हैं, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी पर तेजी से काम हो रहा है। आपने भारत के फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ी प्रोग्रेस के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये भारत के न्यूक्लियर एनर्जी लैंडस्केप में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे साइंटिस्टों ने किया है।
0: श्री मोदी ने आज पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। ये एक सप्ताह में ऐसा दूसरा हमला है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि शहर के दक्षिण पूर्वी बाहरी इलाके में स्थित मॉस्को तेल शोधन संयंत्र पर कई ड्रोन ने हमला किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस ने 555 यूक्रेनी ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया। रूस के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गई हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा कि मॉस्को पर हुआ ये हमला साल के सबसे बड़े हमलों में से एक था। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में इन हमलों को रूस द्वारा की जा रही सैन्य कार्रवाई का उचित जवाब बताया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस

0: शर्मा ने कहा कि 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंच सकता है। संयुक्त अरब अमीरात ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने वाले नए नियम को मंजूरी दे दी है। डिजिटल क्षेत्र में बाल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया ये व्यापक कदम है। ये निर्णय प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की अध्यक्षता में संयुक्त अरब अमीरात कैबिनेट द्वारा लिया गया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या संचालित करने की अनुमति नहीं होगी, न ही उन्हें पोस्ट करने, टिप्पणी करने, सामग्री साझा करने या सार्वजनिक समूहों में शामिल होने जैसी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी, जहां उसने सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर रखा है। अमरीका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी है। श्री नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल के लिए दक्षिणी लेबनान में एक सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसराइली प्रधानमंत्री पहले भी दक्षिणी लेबनान से पीछे न हटने की बात कहते रहे हैं। मध्य पूर्व ईस्ट में युद्ध समाप्त करने के लिए अमरीका ईरान के बीच हुए समझौते में लेबनान में भी युद्ध समाप्त करने की बात शामिल है। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। उरुग्वे की चियारा एम्पिनिनो और मैनुअला विलार ने गोल किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी से प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। पेरिस विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत में तेजी से हो रहे डिजिटल बदलाव में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर चर्चा की। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस में मॉस्को के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। संयुक्त अरब अमीरात ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Abhineet Shukla with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it is democratized, highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. UAE restricts social media for children aged under 15. And in hockey, India beat Uruguay in FIH's Women's Nations Cup in New Zealand to face Chile in semi-finals on Saturday. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, technology can lead to progress only when it is democratized. Mr. Modi urged the global innovators to work with India and deliver for all.
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at Viva Tech 2026 reflects this very vision.
1: The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. The discussions focused on investment opportunities and expansion plans in India. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
3: Addressing the VivaTech summit in Paris today, the Prime Minister said technology must deliver for all and highlight

कितना खूबसूरत एहसास है ना इस गीत में भी। कभी कभी जो है प्यार उसी चांद की तरह दिखने लगता है जो बादलों में छिप जाता है, लेकिन उसकी रोशनी फिर भी दिल तक पहुंच ही जाती है। जैसे आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ना, किसी ना किसी तरह से आपके लिए मीठे सुरीले गीतों का पिटारा लेकर आपके पास तक पहुंच ही जाता है। आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ रितिका। और ये जो गीत बादलों में छिप रहा है चांद क्यों, फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म से आपने ये सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज, और इस गीत को संगीत से सजाया अनु मलिक ने और इस गीत को लिखा कतिल शिफाई ने।

बिल्कुल सच ही कहा है किसी ने कि मोहब्बत की पहली निशानी ही यही होती है, नींद कम और ख्वाब ज्यादा। हर धड़कन जैसे किसी का नाम लेने लगती है, और जब प्यार अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है ना, तो सिर्फ दिल ही नहीं, चांद तारे भी उस रिश्ते के गवाह बन जाते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

फिल्म मैंने मैंने प्यार किया से आपने ये गीत सुना है एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, राम लक्ष्मण का संगीत और असद भोपाली का लिखा ये गीत।

तो दोस्तों, हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा

किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे, वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स

0: कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी ने राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
0: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पज से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
0: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहां पे तैयार हो रहा है, पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में, सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक

0: हम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा। इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पर लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृहमंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2043 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। आप बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मोबाइल फोन बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल

0: मैक्रों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। बाद में प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना हो गए। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। आज क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुके हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the VivaTech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, "Technology can lead to progress only when it is democratized." Mr. Modi urged the global innovators to work with India and deliver for all. The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. Prime Minister Modi has stated that India is not only preparing for the future, but is actively shaping it through innovation, technology and people-driven development. Addressing the Indian community at the Bonjour Modi program in Paris yesterday, which was the final event of his France visit, the Prime Minister highlighted that India's rapid transformation over the past 12 years.
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: रेफरिंग टू द भारत इनोवेट्स प्रोग्राम इन नीस एंड वीवाटेक इन पेरिस, ही सेड द वर्ल्ड इज विटनेसिंग इंडियाज ग्रोइंग इनोवेशन स्ट्रेंथ। अर्लियर French President Emmanuel Macron thanked Mr. Modi in Hindi through a social media post. Later, the Prime Minister departed for India. Ministry of External Affairs has highlighted the key outcomes of Prime Minister Narendra Modi's visit to France. Briefing the media in Paris yesterday, Foreign Secretary Vikram Misri said the visit was centered on 3 key pillars, trade, technology and regional and international security. He said India and France jointly launched the Bharat Innovates initiative in Nice, creating a global platform for Indian deep tech startups. At VivaTech 2026 in Paris, where India was the AI country of focus, the Prime Minister underscored the importance of a human-centric approach to artificial intelligence and the use of technology for inclusive development. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has approved large-scale procurement of pulses and oil seeds at the minimum support price, that is MSP, for 4 states through video conferencing. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said The procurement will be carried out under the price support scheme in Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. Uttar Pradesh has emerged as the biggest beneficiary under the approvals for the summer 2026 scheme. Procurement of 48,298 metric tons of moong, 97,970 metric tons of urad and 41,718 metric tons of groundnut has been approved for the state. In Gujarat, procurement of 18,250 metric tons of moong has been approved for the summer 2026 season. Minister Chauhan also approved an increase in the moong procurement limit for Tamil Nadu under the Rabi marketing season 2025-26 from 885 metric tons to 990 metric tons, enabling the purchase of an additional 105 metric tons. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has chaired a high-level review meeting to assess preparations for the NEET UG re-examination scheduled on Sunday. During the meeting yesterday, the minister stressed the need to maintain the highest standards of integrity, transparency and efficiency in the examination process. Meanwhile, National Testing Agency, that is NTA, has released a message encouraging students to stay calm and trust their preparation with the NEET UG 2026 examination just a couple of days away. The Delhi High Court has reserved its verdict on Telegram's plea challenging the center's decision to temporarily restrict access to messaging platform ahead of the NEET UG re-examination on Sunday. Government e-marketplace GEM has signed a Memorandum of Understanding, that is MOU, with Common Service Centre e-Governance Services India Limited, that is CSC SPV, in New Delhi. In the FIFA World Cup 2026, Czechia and South Africa played out a 1-1 draw in their Group A clash at Atlanta Stadium in the United States. Both the sides had lost their respective opening matches. Later, Switzerland will take on Bosnia and Herzegovina in a Group B encounter at Los Angeles Stadium. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार, मैं यानी नाज स्वागत करती हूं आपका आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे ट्यून किया हुआ है आपने 100.1 MHz पर। घड़ी में वक्त हो चला है 12:11:20 और ये वक्त है आपकी पसंदीदा पेशकश निशी गंधा का।

यूं टकराए राह में एक शख्स से, देखते ही देखते नैना दो चार हो गए। हम मोहब्बत को गुनाह कहते थे और देखो आज हम ही गुनहगार हो गए। था जुनून इस दुनिया को जीत लेने का, एक शख्स पे दिल हारे और बेजार हो गए। रख दिए सब उसूल जूते की नोक पर, हम अपने ही कायदे कानून के गद्दार हो गए। और सुनहले कपड़े थे जो शराफत के, इश्क का पान चबाया तो बस उनकी चाहत से दागदार हो गए।

दर्द ने सबसे पहले दस्तक दी और इस मन ने बिना पूछे दरवाजा खोल दिया। कुछ आंसू फर्श पर गिरे और कुछ यादों में रह गए। फिर प्रेम आया बिल्कुल धीमे कदमों से, जैसे डरता हो कि कहीं जख्म फिर से जाग न जाए। उसने कुछ कहा नहीं, बस पास बैठ गया और फिर उस चुप्पी में सुकून ने अपनी जगह बना ली।

उजाले में तो हर कोई हम कदम बनता है, मगर जो अंधेरों में हाथ थामे वो साया है। भीड़ में तो सब चेहरे बदल लेते हैं, यहां जो तन्हाई में भी साथ न छोड़े वो साया है। सूरज की तपिश में जो सुकून की छांव दे, जिंदगी के हर सफर में जो दुआ बन जाए, दुनिया चाहे रूठ जाए इस दीवाने से, मगर वो ताउम्र वफा निभाए, वो साया है।

ख्वाहिशें गिर गई थी मेरी सोने से दरवाजे पर, मैं उनको ढूंढ लाऊं तो तुम चले आना। तुम्हारे गीतों की धुन अब याद नहीं आती, मैं फिर से गुनगुनाऊं तो तुम चले आना। संभल गई हूं अब टूटे दरख्तों का सहारा लेकर, मैं फिर से मुस्कुराऊं तो तुम चले आना। और सहमी हुई हूं जरा सी अब भी कि थोड़ा इंतजार कर लो, मैं जीना सीख जाऊं तो तुम चले आना।

मैं कभी कभी सोचती हूं उन बातों के बारे में जो रह गई तुम्हारे और मेरे बीच। अगर हम साथ होते तो कितनी बातें करते। पता है मैं उन बातों को अब किसी और के साथ बांट भी नहीं पाती। लोग मिलते हैं मुझे पर मैं उनसे ठीक से मिल भी नहीं पाती। सुनो, तुम लौट आओ ना किसी बहाने से, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बांटना है तुम्हारे साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर

1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

तुम जब कहते हो अपना ख्याल रखना, तो ये दिल थोड़ा सा सुकून में भर जाता है। जो शोर रहता था अंदर हर वक्त, तुम्हारी आवाज सुनकर धीरे धीरे मर जाता है। मैं फिर खुद को इतना सताती नहीं, हर छोटी बात पर यूं टूट जाती नहीं। शायद यही असर है तेरी फिक्र का मुझ पर, कि एक छोटा सा जुमला भी मुझे फिर से घर सा लगता है।

0: कभी कभी
1: वो आएंगे तो कयामत भी टल जाएगी शायद, पर उनके ना आने से हर लम्हा कयामत है। जिंदगी गुजर रही है तन्हाई के साये में, अब तो मौत का आना भी एक इनायत है। दिल के टूटने की आवाज इस कदर खामोश थी कि जमाने को लगा सब कुछ सलामत है, मगर मेरे अंदर जो रोज एक तूफान उठता है वही तो मेरी जिंदगी की असली कयामत है।

खड़ी कर रही है इशारा कि वक्त होने वाला है 12:50 और आप सुन रही हैं निशिगंधा मेरे यानी नास के साथ FM गोल्ड पर। दो नावों में पांव पसारे ऐसे कैसे, वो भी प्यारा हम भी प्यारे ऐसे कैसे, और सूरज बोला बिन मेरे ये दुनिया अंधी है, तो हंसकर बोले चांद सितारे हजी ऐसे कैसे।

मुस्कुराहटों के पीछे का दर्द छुपाया नहीं जाता। ये रोता हुआ चेहरा हर बार हंसाया नहीं जाता। लाख कोशिशें कर ले कोई जमाने को छलाने की, मगर आंखों का पानी पलकों में दबाया नहीं जाता। उदास चेहरे भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, बिना अल्फाज के दिल के राज खोल जाते हैं। जो पढ़ सको इस खामोशी को ध्यान से, तो वो ही तन्हाई के सबसे गहरे जख्म टटोल जाते हैं।

देखिए, जिंदगी में हर किसी को बस दो ही चीजों की दरकार होती है, एक वक्त और दूसरा प्यार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी का नहीं होता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी

पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेस्का को 5-0 से हराया। आज क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुके हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर इस रात की महफिल में, जहां आप हैं मैं यानी नाज हूं आपके साथ। और एफएम गोल्ड पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। ऐसा करते हैं, एक मुलाकात रख लेते हैं, चाय की दो प्यालियां और कुछ सौगात रख लेते हैं। मैं भी उदास हूं तो तुम भी गुमसुम हो जाना। महफिले मुशायरा कुछ ऐसा इस रात रख लेते हैं। इस जिंदगी ने हम दोनों को बहुत गम दिए हैं। तुम रखो खुशियां, हम तजुर्बात रख लेते हैं।

वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें ये दिल रो जाए। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए। वो काम भला क्या काम हुआ जिसकी ना शक्ल इबादत हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसकी दरकार इजाजत हो।

बड़ा नुकसान हुआ इस दिल पर एतबार करने का कि फिर किसी को मौका मिल गया हमें तबाह करने का, जिसके लिए बंद आंखों से हर राह पर चल पड़े थे, उसी ने आखिरी मोड़ पर हाथ छोड़ दिया वफा करने का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

स्वागत है आपका एक बार फिर। प्रोग्राम चल रहा है गीत सुहाने, जहां आप हैं मेरे यानी नाज के साथ। ये रात है लंबी इतनी कि ख्वाब में कट जाएगी, दास्तानें बढ़ चलेंगी और ये नींद भी ना आएगी।

इश्क में मरने का मजा कुछ और ही होता है जब कातिल खुद अपनी बाहों में सुलाता है। आंखों में उनकी अक्स देखकर दम निकले मेरा, बस यही ख्वाब इस दिल को हर पल आता है।

इस रंग से सृष्टि बनी, इस रंग में सृष्टि ढली, इस रंग की ये अहमियत क्या तुमने जानी है कभी। इस रंग पे मीरा मरी, इस रंग पे राधा मिटी, फिर भी क्या जान पाई तुम्हारे रंग के माने कभी।

0: क्या बदल गईं या पिघल गईं, या गिरते गिरते संभल गईं, या संभल संभल कर गिरने का अंदाज पुराना वो ही है। क्या अब भी उतना हंसती हो, या हंसते हंसते रोती हो, या रोते रोते हंसने में एतराज पुराना वो ही है।
1: ए फूलों की रानी,

इस दुनिया नाम के सागर में एक सुंदर लड़की रहती थी, जो हंसती थोड़ा कम ही थी, बस अक्सर रोती रहती थी। मैं कहता, देखो बात सुनो। वो हिरनी नजर उठा देती। मैं कहता, ना कुछ खास नहीं। वो भीगी पलकें झुका देती।

ये आंखें भी अजीब सी गुफ्तगू करती हैं जमाने से, वो सब कह जाती हैं जो छुपाया जाता है बहाने से। जुबां तो अक्सर खामोश रह जाती है डरकर, मगर दिल का हाल बयां हो जाता है इन नैनों के पैमाने से। किताबों से ज्यादा गहरा राज छुपाए रखती हैं ये आंखें, हंसते हुए चेहरे के पीछे का दर्द दिखाई रहती हैं ये आंखें। जो पढ़ सके इसकी खामोशी को ध्यान से साहब, उसी के लिए अनमोल तोहफा सजाए रखती हैं ये आंखें।

सच है ना, जब महबूब का साथ हो तो कुछ भी आधा अधूरा नहीं लगता। एक सिर्फ उसके होने भर से सब कुछ पूरा हो जाता है और दिल से बस यही अल्फाज निकलते हैं। न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, बस हर पल तू मेरे साथ रहे, यही तो है मेरी ख्वाहिश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात कर विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा है कि सुदृढ़ नीतिगत ढांचे और सरकार की नवोन्मेषी पहल से भारत विश्व के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा देशों में से एक बन गया है। नई दिल्ली में 10वीं हरित और सतत विकास साझेदारी परिचर्चा श्रृंखला में नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए ऊर्जा सुरक्षा पर अपने संबोधन में श्री सारंगी ने ये बात कही। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकाबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य से

नमस्कार, रात सुरमई लेकर हाजिर हूं मैं एक बार फिर नाज। समय हो रहा है 2:11 और 11 सेकंड ही, और चूंकि सुबह होने में है काफी देर, तो चलिए छेड़ते हैं कुछ ऐसे जज्बात जो हैं तो सबके दिलों में, पर शायद हमने उन्हें कहीं किसी कोने में छिपा दिया है। और इस सफर में कुछ सदाबहार गीतों का रहेगा साथ, जिनके सहारे वो जज्बात यकीनन जुबान तक आ ही जाएंगे। दूरी ने और भी गहरा कर दिया मोहब्बत को, अब हर लम्हा सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रहता है। पास थे तो गुफ्तगू में वक्त गुजर जाया करता था, दूर हो तो दिल में बस एक ही सवाल रहता है। फासले तो जिस्मों के होते हैं, दिलों के नहीं। तुम तो धड़कन बनकर आज भी मुझ में धड़कते हो, और भले ही लाख पहरे लगा दे ये जमाना, तुम बंद आंखों में खाब बनकर चमकते हो।

दिन की रोशनी में तो दिल को बहला लेते हैं, मगर ये कमबख्त रात सारी हकीकत खोल देती है। जब खामोश हो जाता है सारा जमाना सोकर, तब उसकी यादें दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। रात का ये अंधेरा मुझसे अक्सर पूछता है, कहाँ गया वो जो तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ता था। मैं मुस्कुराकर तकिए में सिर छुपा लेती हूं और कहती हूं कि वो तो एक हसीन ख्वाब था, बस एक हसीन ख्वाब।

ऐ चांद जरा थम कर गुजरना इस रात को, आज मेरी तन्हाई को उनका साथ मिला है, मुद्दतों बाद आई है ये हसीन घड़ी, जब धड़कनों को धड़कनों का पैगाम मिला है।

ऐ दिले नादान, तू भी अजीब जिद पर अड़ा है, जो मुकद्दर में नहीं उसी के पीछे पड़ा है। लाख समझाया इसे कि राहें जुदा हैं अपनी, मगर ये है कि उनकी एक झलक के लिए चौखट पे खड़ा है।

देखिए, रिश्ते चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, एक समय के बाद आपसे बिछड़ ही जाते हैं और फिर धीरे धीरे दर्द भी जाता जाता है। क्या सच में? इसी पर कहा गया है कि अब उनसे मुलाकात नहीं होती। अरे मुलाकात छोड़िए, हमारी तो बात तलक नहीं होती। वो जो कहते थे कि हर दफा साथ निभाएंगे तुम्हारा, ये नजर लंबे अरसे से ढूंढ रही है उन्हें। अब तो यादों के अलावा उनसे कहीं बात नहीं होती।

तुम हाथ पकड़ो मेरा और पूछो कि क्या चाहिए, मैं हाथ छुड़ा कर कहूं कि साथ तुम्हारा चाहिए। मैं हाथ छुड़ा कर फिर से थाम लूं उसे और कहूं कि तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए, हर पल हर वक्त हर लम्हा सारी उम्र बस।

अच्छा, बांध कर तो नहीं रख सकता ना कोई भी कभी किसी को भी। जिसे जाना है वो तो कोई भी बहाना बनाकर चला ही जाएगा। तुम रोकते रहो अपनी बातों से, अपने आंसुओं से, उन्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो तय कर चुके हैं पहले से ही जाना, उन्हें तुम्हारा समझाना, तुम्हारा रोना कभी समझ नहीं आएगा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

जिसे हम कह सकें अपना, कोई ऐसा नहीं मिला। तेरे हम नाम मिलते हैं पर कोई तुझसा नहीं मिलता। मोहब्बत के सफर में मुसाफिर हम मुसाफिर तुम, हमें मंजिल नहीं मिलती, तुम्हें रास्ता नहीं मिलता। जिधर देखो उधर सच बोलने वाले ही मिलते हैं। ताज्जुब है इस दौर में कोई झूठा नहीं मिलता। और तलब है गर रोशनी की तुम्हें, तो जलाओ खुद दिया राही, बुझाने तिश्नगी प्यासे की दरिया नहीं मिलता।

कभी कभी रो देना अच्छा होता है। रोने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और जो लोग दिल की बातें बोल नहीं पाते, अपनी परेशानियां बयां नहीं कर पाते, उनके आंसुओं का निकलना तो बेहद जरूरी हो जाता है। ख्याल रखिएगा कि जो लोग रो नहीं पाते वो अपने मन से कभी जीत नहीं पाते, इसीलिए ये मन कभी उलझनों में हो तो रो लीजिएगा, क्योंकि रोने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता।

शायद उनके रास्ते में हमसे बेहतर लोग ही पड़ गए, क्योंकि वो बेवफा तो न थे, मगर हां आगे जरूर बढ़ गए। और हां, किसी रिश्ते की उम्र इससे पता नहीं चलती कि वो कितने साल कितने महीने रहा हमारे साथ, बल्कि रिश्ते की उम्र तो इस बात से पता चलती है कि उनका कितना सामान पड़ा है हमारे पास।

अब से कुछ देर में सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, उसके बाद इस रात की महफिल की मेजबान होंगी सुरभि। फिलहाल मुझे यानी नाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट भेजा, जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस आपसे प्यार करता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और इसे बेहद सफल बताया। उन्होंने फरवरी में उनसे दोबारा मिलने की उम्मीद भी जताई। श्री मैक्रों ने कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केन्द्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने नई दिल्ली में कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस साझेदारी का उद्देश्य देशभर में विशेष रूप से ग्रामीण और अल्प सुविधा वाले इलाकों में सरकारी खरीद अवसरों तक पहुंच बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चार राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद की जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमरीकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान के साथ शांति समझौते लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला एक

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूं सुरभि आपके साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत खूब कहा है किसी ने कि कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत बड़ा है सफर थोड़ी दूर साथ चलो। तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, मैं जानता हूं मगर थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत बड़ा है सफर थोड़ी दूर साथ चलो। ये शब भी एक मुलाकात भी गनीमत है, किसे है कल की खबर थोड़ी दूर साथ चलो, बड़ा दूर है सफर थोड़ी दूर साथ चलो। अभी तो जाग रहे हैं चराग राहों के, अभी है दूर सहर थोड़ी दूर साथ चलो, थोड़ी दूर साथ चलो।

हमराही सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, कि जन्नत मुबारक रहे आपको कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। भरी बज्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि चलो ये इश्क नहीं चाहने की आदत है, चलो ये इश्क नहीं चाहने की आदत है, कि क्या करें हमें एक दूसरे की आदत है। मैं क्या कहूं कि मुझे सब्र क्यों नहीं आता, मैं क्या कहूं कि मुझे सब्र क्यों नहीं आता, मैं क्या करूं कि तुझे देखने की आदत है। चलो ये इश्क नहीं चाहने की आदत है, कि क्या करें हमें एक दूसरे की आदत है।

जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है। उसकी बातें मुझे खुशबू की तरह लगती हैं, फूल जैसे कोई सहरा में खिला करता है। मेरे दोस्त की पहचान यही काफी है, वो हर शख्स को दानिश्ता खफा करता है। एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है, जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है। और तो कोई सबब उसकी मोहब्बत का नहीं, और तो कोई सबब उसकी मोहब्बत का नहीं, बात इतनी है कि वो मुझसे जफा करता है। तेरा दर्द जब मेरे साथ वफा करता है, फूल जैसे कोई सहरा में खिला करता है।

मेरे नाजुक सवाल में उतरो, एक हर्फ जमाल में उतरो, खूब चमकोगी आओ शमशीरो, मेरे जख्मों के जाल में उतरो। नक्शबंदी में भी आती है कोई सूरत ख्याल में उतरो, मेरे नाजुक सवाल में उतरो, एक हर्फ जमाल में उतरो।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और चलते चलते अंजाम की तरफ आखिरकार हम आ ही गए हैं। बहुत खूब कहा है किसी ने कि तू खुद भी नहीं और तेरा सानी भी नहीं मिलता, पैगाम तेरा तेरी जबानी भी नहीं मिलता, मैं बीच समंदर में हूँ और प्यास से बेताब, पीने को तो एक बूंद भी पानी नहीं मिलता, तू खुद भी नहीं और तेरा सानी भी नहीं मिलता, पैगाम तेरा तेरी जबानी भी नहीं मिलता।

और इसी गीत के साथ हमराही का ये सफर यहीं तक। 4:10 पर अरुणिमा में होगी हमारी और आपकी एक बार फिर मुलाकात। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम में पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट भेजा जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और इसे बेहद सफल बताया। उन्होंने फरवरी में श्री मोदी से दोबारा मिलने की उम्मीद भी जताई। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने नई दिल्ली में कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और अल्प सुविधा वाले इलाकों में सरकारी खरीद अवसरों तक पहुंच बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा चार राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खरीद की जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकाबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे ईरान के साथ शांति समझौता लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी आज ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has projected India

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं सुरभि एक बार फिर आपके साथ। आगाज कर रहे हैं प्रोग्राम का कुछ पंक्तियों के साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे। समझे न जिसे तुम आंखों से वो बात जबानी कह देंगे। जो प्यार करेंगे जानेंगे हर बात हमारी मानेंगे। जो खुद न जले हों उल्फत में वो आग को पानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे।

मैं जिंदगी का नक्शा तरतीब दे रहा हूँ, मैं जिंदगी का नक्शा तरतीब दे रहा हूँ, एक ताज़ा कार नगमा तरतीब दे रहा हूँ। लम्हों के सिलसिले में जीता रहा हूँ, लेकिन मैं अपना ख़ास लम्हा तरतीब दे रहा हूँ, मैं जिंदगी का नक्शा तरतीब दे रहा हूँ।

जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

कुछ गीत और कुछ इंसान हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान की जिंदगी एक कहानी है। कुछ पन्ने संघर्ष के होते हैं तो कुछ सफलता के, कुछ खुशियों के तो कुछ निराशा के। लेकिन अपने सफर पर मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की चुनौतियां ही कल आपकी भी प्रेरणादायक कहानी बनेंगी।

अरुणिमा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जिंदगी जब तक है तब तक मौके भी हैं। हालात कभी भी हमारे या आपके मुताबिक हो ऐसा जरूरी नहीं और कई बार होता भी नहीं है, लेकिन अगर हम हौसला बनाए रखते हैं ये हमारी जीवन की सबसे असली ताकत होती है। इसीलिए आप कुछ भी करें, कोई भी काम करें, किसी चीज की भी शुरुआत करें, चाहे वो आपके काम से जुड़ी हुई हो या फिर आपके इश्क मोहब्बत या प्यार से जुड़ी हुई हो, शुरुआत तो आपको

आदमी ही होगी हौसला बनाए रखते हुए। और इसके अलावा हर सुबह अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है, इसीलिए रुकिए बिल्कुल भी नहीं, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो मुश्किलों के बावजूद कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं, है ना।

सुनवाने जा रहे हैं कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत रफी साहब की आवाज में।

और इसी के साथ अरुणिमा का सफर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे होगी 5:10 पर भोर सुहानी में। अब सुरभि को दीजिए अनुमति, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। पेरिस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। उन्होंने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि एवियन में हुई G7 बैठक में उन्होंने विश्वास पर आधारित साझेदारियों के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व अनिश्चितता और व्यवधान के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में फ्रांस और भारत के बीच साझेदारी, विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन गई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट में भेजा, जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। श्री मैक्रॉन ने प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की यात्रा को बेहद सफल बताया। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों की आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों के आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इस बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है, पर होर्मुज जलडमरू मध्य अभी ईरानी सेना की निगरानी और नियंत्रण में है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। मैं हूं सुरभि आपके साथ। प्रोग्राम है भोर सुहानी। एक बार फिर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल पूछती है जिसके जवाब तुरंत नहीं मिलते, लेकिन हर कठिन दौर हमें मजबूत बनाकर जाता है। भरोसा रखिए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जिंदगी में आगे रास्ता मंजिल जरूर मिलती है, क्योंकि हर संघर्ष के पीछे एक नई सीख और एक बेहतर कल आपका इंतजार कर रहा होता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

भोर सुहानी प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जिंदगी सिर्फ बोलने में नहीं सुनने में भी खूबसूरत होनी चाहिए। जब हम दूसरों को समझना सीख जाते हैं तब रिश्ते मजबूत होने लगते हैं और दिलों के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। हर मुलाकात और हर बातचीत कुछ नया सिखा कर जाती है, इसीलिए जब भी किसी से मिलिए या बातें कीजिए, खुले दिल से उसे सुनिए भी और मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए।